खरिया, कई जन्म गर्भ हिर खरिया, कई जन्म साफ कर उपाया, लख 84 जोन परमाया, साध संग पयो जन्म परापत, कर सेवा पद हर हर गुरमत, त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरहे दर्दे परवा।

पंजवा करम पूम में बोहो नाम पूरन होए तुम्हारा काम फल पावे मिटे जम त्रास नित गावे हर हर गुण जास हर हर नाम अंतर उर्धार।

कुकत स्यानप सगली त्याग, संत जना की चरणी लाग। सर्व जी है जाके हाथ, कदे नभ चुड़े सबके साथ। उपाव छोड़ गहो तिसकी ओट, निमख माहे होवे तेरी छोट। सदा निकट कर तिसनो जान, प्रभ की आज्ञा।

का अविनाशी गुर के बचन कटि जम फांसी गुर का बचन जी के संग गुर के बचन रचे राम के रंग जो गुर दिया सो मन के काम संत का किया सत्कर्मान रहाओ गुर का बचन अटल अछेद गुर के बचन कटे परम पेद गुर का बचन कतो न जाए गुर के बचन हर के गुण गाए गुर का बचन जी के साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर के बचन नरक ना पवे गुर के बचन रसना अमृत रवे गुर का बचन प्रगट संसार गुर के बचन न आवे हार जिस जन हुए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ में राखिया जिन कर जतन जिन दीनी शोभा वड़ियाई किस प्रभ को आस पहरते आई रमैया रे

गुरु उपदेश मने महले हो, जाको राम नाम लिव लागी, कहो नानक सो तन वड पागी। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, सुन हर कथा उतारी मैल, महापुनीत पय सुख सैल, वदे पाग पाया साध संग, पार ब्रह्म सो लागो रंग, हर हर नाम।

सिमर सिमर सिमर गुण पास, एको मन एको सब ठाए, पूरन पूर रहो सब जाए, गुर पूरे सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौरी ग्वारे री महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे, जो उभरे से बंद लख थरे।

सिर ऊपर ठाडो तब नाए मीठी कर कर बिखिया खाए हौ बंदो हौ साधो बैर हमरी पूम कौन काले पैर हौ पंडित हौ चतुर सियाना करने हार न बुझे बिगाना अपनी गत मित आपे जाने क्या को कहे क्या आख वखाने जित जित लावे तित तित लगना अपना पला सब काहू मंगना।

पहला पंजवा अनेक जतन नहीं होत छुटारा बहुत सियाणत आगल पारा हर की सेवा निर्मल हेत प्रभु की दरगे शोभा सेत मन मेरे गहो हर नाम का ओला तुझे ना लागे ताता चोला रहाओ जो बोहित पै सागर माहे अंधकार दीपक दीपाहे अगन शीत का लाहस तूख नाम जपत मन होवत सुख उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होवे सगली आस डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जिस आप दिवावे हर हर नाम जाके हृदय वसे दुख दर्द ते नानक नसे गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा बहुत दर्ब कर मन ना अघाना अनेक रूप देख नहीं

त्रिग तन माया संग राते राव जो बिगारी कैसर दीजे दाम ओए खसमे के गृह उन दुख सहाम जो सुपने हुए बै

अखेर गिरत राजन की लीला, मन ना सुहेला पर पंच हीला, कर कृपा संतन सच कहा, सर्व सुख एहो आनंद लया, साध संग हर कीर्तन गाये, कहो नानक वड पा।

पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा, होन न पाये राम के दासा। कवन सो विद जित राम गुण गाए, कवन सो मत जित तरह ए माए राव। जो पलाई सो बुरा जाने, साच कहे सो बिखे समाने। जाने नाही जीत अर हार, इहो वलेवा साकत संसार। जो हला हल सो पीवे बौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा। साध संग कह नाही नेर, लख चौरासी परमता फेर। एक जाल पहाए पंखी, रस रस को

प्रब कृपा से नाम से आये, प्रब कृपा से बंधन छुटे, तो कृपा से हूँ मैं टूटे। तुम लावो तो लागे सेव, हमसे कछु न होवे देव। रहाओ खुद पावे ता गावा बाणी, खुद पावे ता सच वखाणी, खुद पावे ता सतगुरु मया, सर्व सुखा प्रभ तेरी दया। जो तुद पावे सो निर्मल कर्मा, जो तुद पावे सो सच धर्मा, सर्व निदान गुण तुम ही पास, तू साहिब सेवक अरदास, मन तन निर्मल होए हर रंग।

ओ प्यारी ए रस राती होए तृप्तारी रहाओ हे जेवे तू राम गुण गाओ निमक निमक हर हर हर त्याओ आन न सुनिए कतहु जाइए साध संगत वड़।

हर गुण दावत रसन अमोली बनस्पत मौली फल फूल के दे ए रस राती बोर न छोड़े आन न रस कस लवे न लाई कहो नानक गुर पे है सहाय गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा मन मंदर तन साजी बार इसी मदे बस्त अपार इसी पीतर सुनियत साओ कवन बपारी जाका उहा विसाओ नाम रतन को व्योहारी अमृत भोजन करे आहारी रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जय कवन सो जुगत जित कर पी जय पाई लगो तज मेरा तेरे कवन सो जन जो सौदा जो रे।

संगा ठाकुर नाम कियो उन्वर्तन त्रिपत अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरपुरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहार आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हरक सोग दो हूते मुक्ते सदा अलिपत जोग अर जुगते दीसे सब में सबते रहते पार ब्रह्म का ओए ध्यान करते संतन की महिमा कवन वखानो अगाध बोध किछ मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहि।

0: ते आया, मरम तुम्हारा गुरते पाया, सतगुर ते दृढ़िया इक एक है, नानक दास हर हर हर ते कै।
1: गौड़ी ग्वारेड़ी महला पंजवा, व्यापत हरख सोग विस्थार, व्यापत सुर्ग नरक अवतार, व्यापत तन निरतन पेक शोभा, मूल व्यादि व्यापस लोभा, माया व्यापत बहु प्रकारी, संत जीवे प्रभ ओट तुम्हारी, रहाओ व्यापत अंग बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्र संग्राता, व्यापत हस्त कोड़े अरबस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत पोम रंक अररंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महल सिगार, पंच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म करे हों फासा, व्यापत ग्रस्त व्यापत उदासा, आचार व्यवहार व्यापत ए जात, सब कुछ व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापे माए, कहो नानक जिन तूर संत पाई, ताके निकट न आवे माए। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा।

इस ग्रह में कोई जागत रहे साबत वक्त ओह अपनी लह रहाओ सगल सहेली अपने रस्माती ग्रह अपने की खबर न जाती मुसनहार पंच बटवारे सुने नगर परे ठगहारे उनते राखे बाप न माई उनते राखे मीत न पाई दर्ब स्यानप ना ओई रहते साध संग ओई दुष्ट वस होते कर कृपा मोय सारंग पान संतन

सगल भगत जा का नाम आधार, सर्व व्यापत पूरन तनी, जाकी शोभा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा कहे, जिस सिमरत जम किछु ना कहे, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन करे। संत सभा को सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण।

संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब कर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल से आवो, साध संग ता बैठन पावो, मोहे निर्गुण को प्रभु कीनी दया, साध संग नानक।

खैर अब मत बिन सी दुष्ट बिगानी जब के सुनिया हर जसानी रहाओ सहज सुख आनंद निधान राखना।

जाते है और ब्रह्म परमेश्वर क्या है गुरु पूरे ते मत पाए रहाओ करण करावन हार दयाल जी जन सगले प्रतपाल अगम अगोचर।

प्रभ सेवक साचा वेसा हो। गुरु पूरे रथ दे हाथ नानक पार ब्रह्म सम्राट गौड़ी द्वारे री महला पंजवा। गुरु प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण उचरे प्रभ बाणी पूरे गुरु की सुमत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कर बाहर सुख सह सबाए रहाओ सोई पछाता जिन्हें उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया बाँ पकड़ लीनो कर अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखद पुने चार हर हर नाम जी प्राण आधार साचा तन पायो हर रंग दुतर करे साध कै संग सुख बैसो संत सज्जन परवार हर तन खटियो जाका नहीं सुमार जिसे प्राप्त किस गुरु दे नानक बिरथा कोई नहे गौड़ी द्वारे री महला पंजवा हस्त पुनीत।

माया मगन न कछुए मोह है, उदरे आप करे संसार, राम नाम जप के कंकार, आप कमाओ अवरा उपदेश, राम नाम हृदय प्रवेश, जाके माथे एहो निदान, सोई पुरख जपे भगवान, आप पैर हर हर गुण गाओ, कहो नानक हो तिस

बिचर आ गया तिचर पोगे पोग जले न पाये राम स्नेही किरत संजोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हट जल जाये प्रिय संग न पावे बहु जोन को आये शील संजम प्रिय आज्ञा माने किस नारी को दुख न जमाने कौ नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया तन सती दरगे परवानिया गौरी द्वारे री महला पंजवा हम तनवंत

रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपतायो जाता तहया दर्गे चले सो किसको नजर ले आवे तले जाता सब किस

सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय, रहाओ जाके अचिंत वसे मन आए, ताको चिंता कतहु नाहे, जाके दिन स्यो मन से फरमा, ताके कछु नाही डर जमा, जाके हृदय दियो गुरु नामा, कहो नानक ताके सगल निधाना, गौड़ी महला पंजवा, अगम रूप का मन में थाना, गुरु प्रसाद किने विरले जाना, सहज कथा

तै सहज अथारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हरख अनंत सोग नहीं दिया सो कर गुरु नानक तो दिया। गौड़ी महला पंजवा कवन रूप तेरा।

आपन तन नहीं जाको गरबा, राज मिलख नहीं आपन दरबा, आपन नहीं काको लपटायो, आपन नाम सतगुर के पायो रहाओ, सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप ना माई, सोईना रूपा सुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम, कहो नानक जो गुरु बख्श मिलाया, किसका सब किस जिसका।

कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ आया, केवल नाम रिदमाए समाया। गौड़ी महला पंजवा, काकी माई काको बाप, नाम तारीख झूठे सब साथ, काहे को मूर्ख पकलाया।

राज योग हर कै मार्ग पतित पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हार सद वसै हदूरा कहु नानक मेरा सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा। संत की तूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण के छोट संत का दर्श पूरन स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत के संग मिटिया अंकार दृष्ट आवे सब एकंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय ले संचा कहो नानक जाका पूरा कर्म किस केते साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा। हर गुण जपत कमल प्रगास है हर सिमरत त्रास सब नास है सामत पूरी जित हर गुण गावे वडे पाग साधु संग पावे रहाओ साध संग पाये निज नामा साध संग पूरन सब कामा हर की भगत जन्म परवान गुर कृपा ते नाम बखान कहो नानक सो जन परवान जाके हृदय वसै भगवान गौड़ी महला पंजवा। एक सो जाका मन राता विसरी तिसे पराई पाता बिन गोविंद ना दिसे कोई करण करावन करता सोई रहाओ मने कमावे मुख हर हर बोले सो जन इत उत्कत है न डोले जाके हर तन सो सत्साओ गुरपूरे कर दीनो विसाओ जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा। नाम भगत के प्राण आधार नामो तन नामो व्योहार नाम वडाई जन शोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ नाम भगत के सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे सास सास जन नाम समारे कहो नानक जिस पूरा पाग नाम संग ताका मन लाग गौड़ी महला पंजवा। संत प्रसाद हर नाम से आया तब के तावत मन तृप्ताया सुख विश्राम पाया गुण गाए श्रम मिटिया मेरी हति बलाए रहाओ चरण कमल आराध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब तज अनाथ एक शरण आयो ऊंच स्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसिया करण हार नानक।

चरण ठाकुर के मार्ग कावो फलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम तय पार उतरिया रहाओ नेत्र संतन का।

आओ हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे इस जन दुख निकट नहीं आवे हर की टहल कर जन सो है ताको माया अगर न पो है मन तन मुख

दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुरपुरा पेटिया लिव लाए, रहाओ हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे सूरे उतरी चिंत, अनद पए गुर मिलत कृपाल, कर कृपा का तेजम जाल, कहो नानक गुर पूरा पाया, ताते बहुर न व्यापे माया। गौड़ी महला पंजवा, रास लिया गुर पूरे आप, मन मुख को लागो संताप, गुरु

हतै बलाए गुरका शब्द तेरे संग सहाई दयाल कहे सगले जी पाई गुर पूरे जब कृपा करी पंत नानक मेरी पूरी परी गौड़ी महला पंजवा अनक रसा खाए जैसे तोर मोह की जेवरी बांधियो चोर मृतक देह साध संग बिहुना आवत जात जोनी दुख छीना रहाओ अनेक वस्त्र सुंदर पहराया जो डरना खेत माहे डराया सगल शरीर आवत सब काम नेफल मानुक जपे नहीं नाम कहो नानक जा को कहे दयाला साध संग मिल पजे गोपाला गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारे आवन जान रहे सुख सारे तै दिन से निरपो हर के आया साध संग हर के गुण गाया रहाओ चरण कवल हृदय अंतर तारे अग्न सागर गुर पार उतारे बूढ़त जात पूरे गुर कांडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक किस गुर बलिहारी जिस पेतत गत पई हमारी गौड़ी महला पंजवा साध संग ताकी सरनी परो मंतन अपना आगे तरो अमृत नाम पीवो मेरे पाई सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ तद अभिमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो सास सास प्रभ मने संभाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसे प्राप्त जिस

अमृत दृष्ट संत जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव, रहाओ मिट गई चिंत पुनी मन आशा, करी दया सतगुरु गुण ताशा, दुख नाठे सुख आए समाए, हील न परी जा गुर फरमाए, इच पुनी पूरे गुर मिले, नानक के जन सफल फल।

सगल रोग का दिल सिया खाओ। सैंक सुभाए बोले हर बाणी, आठ पहर प्रभ सुनरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ ना आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा, पले दिन पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओ बेला को हों बल जाओ, जित मेरा मन जपे हर नाओ। रहाओ सफल मूरत सफल ओ परी, जित रसना उचरे हर हरी। सफल ओ माथा संत नमस्कार, चरण पुनीत चले हर मार्ग। कहो नानक पला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, गुरु का शब्द रास मन माहे। नाम सिमर चिंता सब जाहे, दिन भगवंत नाही अनकोए। मारे राखे को सोए, रहाओ गुरु के चरण हृदय उद्धार। अग्न सागर जब उतरे पार, गुरु मूरत सो लाए ध्यान। ईहा ऊहा

अंतरजामी गौरी महला पंजवा। तै मैं रचियो सब संसारा तिस पौ नाही जिस नाम अधारा। पौ ना व्यापे तेरी सरना जो तुझ पावे सोई करना। रहाओ सोग हरख में आवन जाना तिन सुख पाया जो प्रभु पाना। अगन सागर मह व्यापे माया से शीतल जिन सतगुरु पाया। राख ले

तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा से परम पौ पागे। पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी। करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सतरास। गौड़ी महला पंजवा, कण बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा। हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग दे बिगानी। रहाओ नाम बिना नाही मुख पाग।

जो कुछ वरतै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रभु दान, नानक सिमरै नाम निधान। गौड़ी मैला पंजवा ताका दर्श पाये वड पागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाके हर वसिया मन माही, ताको दुख सुखने भी नाही। राव सर्व निधान राखे जन माहे, ताके संग किलविक दुख जाहे, जन की महिमा कति न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाये, कर कृपा प्रभु दिनो सुनी जय, दास की सूर नानक को दी जय। गौरी महला पंजवा हर सिमरत तेरी जाए बनाए, सर्व कल्याण वसै मन आए।

निर्मल ममता सोड उपाव एक टेक रास महापदार्थ अमृत रस चाट दिखम सागर ते जन तरे नानक जाको नदर करे गौड़ी महला पंजवा हृदय चरण कमल प्रभ तारे पूरे सतगुर मिल निस्तारे गोविंद गुण गावो मेरे पाई मिल साधु हर नाम से आई रहाओ दुलभ दे होई परवान सतगुर ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया साध संग तय परम मिटाया जत तत देखो तत

चरण कमल हृदय उतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवे प्रवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाये वड पागी, नानक गुर पेटत हर सों लिव लागी। गौड़ी महला पंजवां। करे दुह कर्म दिखावे होर, राम की दरगे बांदा चोर, राम रमे सोई रामाना, जल सल मैयल एक समाना, रहाओ अंतर बिख मुख अमृत सुनावे, जमपुर बादा चोटा खावे, अनक पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रगट

हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूरन पुरुष विदाता रहाओ, संते संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरे जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया।

आनंद निवासे राम जना को राम परोसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा रहाओ साध संग कछ पौ ना पराती गुण गोपाल गाये दिन राती कर कृपा प्रभु बंदन छोट चरण कमल की दीनी ओट कहो नानक मन पई प्रतीत निर्मल जस की रे जननीत गौड़ी महला पंजवा हर चरणी जा का मन लागा दुख दर्द प्रमता।

आस आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिटे कलेश चरण कमल मन में प्रवेश उचरो राम नाम लख बारी अमृत रस पीवो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध के संग किलबिख सब टोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजे सागर वाला। गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए किस क्यों आलस क्यों बने माए खसम विसार आन कम लागे कौडी बदले रतन त्यागे रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोभा दास सलाम करत कत सोभा अमृत रस खावे खान पान जिन दिए तिसे न जाने स्वान कहो नानक हम लून हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतरगामी। गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माए ध्यान सगल तीर्थ मजन स्नान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोट जन्म की मल ले जाए रहाओ हर की कथा हृदय माहे बताए मन बाँचत सगले फल पाए जीवन मरण जन्म परवान जाके हृदय वसे भगवान कहो नानक से जन पूरे जिना प्राप्त साधु पूरे। गौड़ी महला पंजवा खादा पैन दा मुँह कर पाए किसनो जो है दूत धर्म राए किस त्यों बेमुख जिन जियो पिंड जीना कोट जन्म पर मैं बहुजूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो विसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उदर कृपा सागर पार ब्रह्म तेरी।

औखद मंत्र तंत्र सब सार करने हार हृदय में तार सब सब परम पजियो पार ब्रह्म कौ नानक अतल ए धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापे कोई राम रमन करण तै सागर करण सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम ए आसर पूरन पै काम जप तप संजम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पै सहाई मान मोह खोए गुर परम तेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौरी महला पंजवा दिखे राज के अंदुला पारी दुख लागे राम नाम सितारी तेरे दास को तुही वड्याई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त सितारे नाओ दिख माते का ठौर न ठाओ चरण कमल स्यो लागी प्रीत आम सुखा नहीं आवे चीत सदा सदा सिमरो प्रभु स्वामी मिल नानक हर अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा आठ पैर संगी बटवारे कर कृपा प्रभु ले निवारे ऐसा हर रस रमो सब कोए सर्व कला पूरन प्रभु सोए रहाओ महातपत सागर संसार प्रभु खिन में पार उतारन हार अनक बंधन तोरे नहीं जाहे सिमरत नाम मुक्त फल पाए उकत स्यान किसके कछ नाहे कर कृपा नानक गुण गाहे गौड़ी महला पंजवा थाती पाई हर को नाम विचर संसार पूरन सब काम वड पागी हर कीर्तन गाये पार ब्रह्म तू देहता पाये रहाओ हर के चरण हृदय उर्धार पाव सागर चढ़ उतरे पार साधु संग करो सब कोए सदा कल्याण फिर दुख ना होए प्रेम भगत पज गुणी निधान नानक दरगे पाये मान गौड़ी महला पंजवा जल थल मैयल पूरन हर मीत ब्रह्म बिन से गाए गुण गीत उठत सोवत हर संग पहरुआ जाके सिमरन जम नहीं डरुआ रहाओ चरण कमल प्रभ हृदय निवास सगल दुख का होया नास आशा मान तान तन एक साचे साकी मन में टेक महा गरीब जन साध अनाथ नानक प्रभ राखे देहात गौरी महला पंजवा हर हर नाम मजन कर तूके कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाओ हर के चरण हृदय में बसे जन्म जन्म के किल विख नसे साध संग कीर्तन फल पाया जम का मार्ग दृष्ट न आया मन बच क्रम गोविंद आधार ताते छुटियो भिक संसार कर कृपा प्रभु कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पौ शरणाई जिन हर जाते मन तन शीतल चरण हर गाते कै पंजन प्रभ मन ना बसाही दरपत दरपत जन्म बहुत जाही रहाओ जाके हृदय बसियो हर नाम सगल मनोरथ ताके पूरन काम जन्म जरा मृत जिस वास सो समरथ सिमर सास गिरास मीत साजन सखा प्रभ एक नाम स्वामी का नानक टेक गौड़ी महला पंजवा बार राख्यो हृदय समाल कर आए गोविंद ले नाल हर हर नाम संतन कै संग मन तन राता राम कै रंग रहाओ गुर प्रसादी सागर तरिया जन्म जन्म के किल विख सब हिरिया शोभा सुरत नाम भगवंत पूरे गुर का निर्मल मंत चरण कमल हृदय में जाप नानक पेख जीवे प्रताप गौड़ी महला पंजवा तन एहो थान गोविंद गुण गाए
कुशल खेम प्रभ आप बसाए रहाओ। विपत तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जह हर गुण गाही। हर विसरिय दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे न नेरे। सोवड पागी निचल खान, जह जपिय प्रभ केवल नाम। जह जाय तह नाल मेरा स्वामी, नानक को मिलिया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, जो प्राणी गोविंद से आवे, पढ़िया अनपढ़िया परम।

रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा, जग में आया सो परवान, कट कट अपना।

साध तूर कर सुध मंजाई, अनक जला जे तो वै देही, मैल न उतरे सुध न तेही। सतगुर पेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर कात्या पौकाल, मुकत पुगत जुगत हर नाम।

दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की कैद रखी कर तारे, बादशाह सा सब वस्त्र दीने, अमृत नाम मारस पीने, निरपो होए।

राते न जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुफल फला, सब कहते तुम्हारे नाए, एकत संग हर हर गुण गाए, रहाओ हर संग राते मिटे सब चिंता, हर सो सो रचे जिस साध का मनता, हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूरन आस, हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अंदिन जागे, हर संग राता सहज कर वसे, हर संग राते परम पौ नसे, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिनको बल जाए, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौरी मैला पन्नवा, उद्दम कर शीतल मन भये, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पये आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कार्य आए, एकत साध संग

अस्थिर पर बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौरी महला पंजवा, कोट मज्जन तीनो स्नान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिटे साधु शरण दयाल, रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे, अनेक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन आरादे, सिमरत सासत वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सो मन माने, अगाध बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय विचारे, नानक को प्रभ कृपा धारे, गौरी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरु हृदय बसाया, गुरु गोविंद

से माई प्रभु की शरण उभरे सब कोए करण कराव पूर्ण सच सोए रहाओ अब मन बसिया करने हारा कै दिन से आत्म सुख सारा कर कृपा अपने जन राखे जन्म जन्म के

राम को बल पूरन पाई, ताके बिरथा ना व्यापै काई। रहाओ जो जो चितवै दास हरमाई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पत गवाई, नानक हर गुण निरपो।

सुख सागर गर्त परत जह लिहो अंगुरिया रहाओ श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटत पिंगुरिया दीना नाथ अनाथ करुणा में साजन नीत पुता।

कौ संत मिले वडपाजी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोय सगल त्यागी जो प्रभु की हर कथा सुनावे आन दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेटियो पुरुष रसिक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौरी महला पंजवा निकसरे पंखी सिमर हर पांख मिल साधु शरण गहो पूरन।

हर तेतन को सिमरत मन मेरा, आस प्यासी चित वो दिल रहनी है, कोई संत मिला वे मेरा रहाओ। सेवा करो दास दासन की, अनक पांच किस करो निहोरा, तुला तार तोले सुख सगले, बिन हर दर्श सब वो ही थोरा। संत प्रसाद दाए गुण सागर, जन्म जन्म को जात बहोरा, आनंद सुख पेटत हर नानक, जन्म किरतार सफल।

कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा हूँ मैं पाई माया मो सबो जग सोया क्यों परम कहो क्यों जाई। एका संगत इकत गृह बसते मिल बात न करते पाई एक

कर कृपा संत मिले मोहतिन के तीरज पाया संती मंत दियो मोह निरपो गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महाविखादी सहज सुहेली बानी कहो नानक मन पाया परगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पंजवा ओ अविनाशी राया निरपो संग तुम्हारे बसते इहो धर्म कहाँ ते आया रहाओ एक महल तू होए असारो एक महल निवानो एक महल तू आपे

जाने जैसा पेट करावे बाजीगर ओ तैसो ही साज आने अनक कोठरी बहुत पाप करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राखे तैसे रहना क्या हो करे बिचारा जिन कुछ किया सोई जाने जिन ए सब विद साजी कहो नानक अपरा।

कदम सुहेले, सर्व सुखा में तुझते पाए मेरे ठाकुर अगे अतोले। बरन नासा को तुमरे रंगा गुण निधान सुख दाते, अगम अगोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते। प्रम्पो काट किए ने केवल जब के हूँ मैं मारी, जन मरण को

जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन संसार अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण पर सो तरया संत संग पूर्ण आशा।

जोवन अवध जो दिस है सब किछ जुग में तातिया नाम निधान सब नवतन निर्मल एहो नानक हर तन खातिया। गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुन आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो।

पंच चेले मिल पर इकतरा एक वस्तिये दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थी। कर्म जराए चराई विपूता पंच एक कर पेखिया सहज सुख सोकीनी पुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जय कहो नाही ता आसन बांधियो सिंगी अनहत बानी तत विचार डंडा कर राखियो जुगत नाम मन पानी। ऐसा जोगी वद पागी पेते माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूरत की नानक तिस पग चाटे। गौड़ी महला पंजवा। अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता हर औषध जाको गुर दिया ताके निर्मल चीता रहाओ अंधकार मिट्यो तिह तंते गुर शब्द दीपक पर दासा प्रम की जाली काकी काकी जाको साध संगत विश्वासा तारी ले पाव जले तारू बिखड़ा बोहित साधु संगा पूरन होई मन की आशा गुर के त्यो हर रंगा नाम खजाना पगती पाया मन तन तृप्त।

प्रवराते पोत पोत भगतन संग जोरी प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी राम संत में भेद किछ नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कहिय प्रगट प्रभु हुआ हम दिन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अत ऊंचे सुखदाते प्रप्राण अधोरी।

ईंट ऊंट प्रभ तुम समरथा, सब कुछ तुम रहे हाथे, ऐसा निधान देहो मोको, हर जने चले हमारे साथे, निर्गुण आरे को गुण की जय, हर नाम मेरा मन जाते, संत प्रसाद नान खर पेटे, मन तन शीतल त्राके, गौरी महला पंजवा, सह समायो देव, मोको सतगुरु।

मंद खंड हर ताको नाम जपी जय रे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बूझ सुख पाए रे जो प्रभ करे सोई फल मानो सुख दुख ओही त्याए रे कोट पतित उधारे खिन में करते बार न लागे रे दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे निवाजे रे।

सुख दाता सगल कथा प्रतिपारे रहाओ मां कष्ट काते खिन पीतरे रसना नाम चितारे शीतल सांत सुख हर सरणी जलती अग्नि निवारे गर्भ कुंड नरक के राख पव जल पार उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म नहारे काम क्रोध लोभ मोहे मन लीनो निर्गुण के दातारे कर कृपा।

जीरे ओला नाम का अवर जे कर्म करावनो तिन में पव है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाये वदे पाग हर क्या है।

लक्ष चौरासी जोल फिरे गोविंद लोक नहीं जन्म मरे बल बुद्ध सियान पहुँ में रही हर साध शरण नानक गही। गौरी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाये नीत नीत हर सेविये सास सास हर त्याये रहाओ संत संग हर मन वसे दुख दर्द अनेरा प्रम नसे संत प्रसाद हर जापिये सो जन दुख ना व्यापिये जा को गुर हर मंत्र दे सो उबरिया माया अगन के नानक को प्रभु।

तू गुरु प्रसाद कर राज योग हर रस जिन जन चाखिया ताकि कृष्णा लाखिया हर विश्राम निध पाया।

गौरी महला पंजवा जाको बिसरे राम नाम ताहू को पीर साध संगत मिल हर रवे से गुणी गहीर रहाओ जाको गुरमुख हृदय।

पान सब का खाना रहाओ ऐसे है रे खसम हमारा खिन में साज सवार नहारा काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभ के गुण।

अज्ञानी मानस पया जो नाही सो लोरे रैन अंधारी कारिया कवन जुगत जित पोरे प्रम तो हारिया।

सुख भय अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अग थे कृपा निज प्रभ मया तार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाए रहाओ एक रैन के पावन तुम आए बहु जुग आस बदाए गृह मंदिर संपै जो दिसे जो तरवर की छाए तन मेरा संपै सब मेरी बाग मिलख सब जाए देवनहारा बिसरियो ठाकुर चिन्मय होत पराए

रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलहरिया रहाओ, जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाइए, जो हो दयाल सतगुर अपना, ताके मत बुद पाइए, मेरे मन नाम ले जम बनते छूटे, सर्व सुखा सुख पाइए, शेर स्वामी सतगुर दाता, मन बंचत फल आइए, नाम इष्ट नीत सुत करता, मन संग तुहार

सुंदर नारी अनेक प्रकारी पर गृह बिकारी बुरा पला नहीं सुजिए, बुरा पला नहीं सुजिए। अनेक बंधन माया परमत परमाया गुंडित नहीं जाया मन बिछे ही मैं लुजिए। जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया।

आवै दुख न पंथ पयान रहाओ। सेवक सेवक सदा सेव तेरे संग बस्त है पाल। कर सेवा तू साध की हो कात जय जम जाल। होम जग तीरथ किए बुझ हो में बदे विकार। नरक सुरग दोए पुंचना हो।

0: मैं कैसो करा पुकार, नामक कहे सुन रे मना, कर कीर्तन होए उधार।
1: राग गौड़ी माला।

किया। सतगुरु सब समाया रहाओ, लाठी भूख तृष्ण सब लाठी, चिंता सगल बिसारी, कर्म मस्तक गुर पूरे तरयो, मन जीतो जग सारी। त्रिपद अधाए रहे रिद अंतर, दोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुरु दिया, तोट नहीं रे मुके। अचरज एक सुनो रे पाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाए परदा ठाकुर जो पेट्यो, तो बिसरी तात पर आई। कहो ना जाई एहो अचंबो, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच पै बिगाता, गुर निधान हृदय ले राखिया। गौड़ी माला महला पंजवा, उबरत राजा राम की सरणी, सर्व लोक माया के मंडल, गिर गिर परते तरणी रहाओ। शास्त्र सिमरत वेद विचारे, माँ पुरखन यो कहया, बिन हर भजन नाही निस्तारा, सूख न किन्हू लया। तीन पवन

रखनी जोरी बूझत नाही लहरे बिन हर भगत कहां चित पावे फिर तो पहरे पहरे अनक बिलास करत मन मोहन पूरन होत न कामा जल तो कभू न बूझत सगल बिरसे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता यह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारे नानक जन की।

पतित पवित लग गुर के पैरे जियो, प्रम को काट किए निर्वैरे जियो, गुर मन की आस पुराई जियो, जिन नाउ पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया

गौरी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस साथ साथ सितारे जियो, संत देव संदेशा पैचरण आरे जियो, खुद दिन कित बिर तरिये जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन तिन त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी यो मन बिग संदा जियो, पेट दर्शन

पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पह कहिए जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन देखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप करिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो। गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन विच प्यारे जियो, मन तन तेरा एहो जियो पेवारे जियो, विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी शरणाई जियो, जिस मिले मन जीवे पाई जियो, गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाए जियो, प्रभ को सद बल जाए जियो, एहो निधान जपै वट पागी जियो, नाम निरंजन एक निवलागी जियो, गुरपूरा पाया सब दुख मिटाया जियो, आठ पैर गुण गाया जियो, रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो, तू सच्चा साहु भगत मन जारा जियो, हर तन रास सच

माया मोहड़िया दे बुजार सारता से अखी जिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहा इकस दो चौ क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अद नाए रसियड़ा का विरली जाए उठी भगत सच्चे दर सोंदे अनद करे दिन रात रंग रते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात गौड़ी महला पंजवा माज दुख पंजन तेरा नाम जी दुख पंजन तेरा नाम आठ तह आराधी है पूरन सतगुरु ज्ञान रहाओ जित कट वसे पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाओ सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध ओठ तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम आगाज पाए किरपाल गुसाइया नखे सोग संताप तत्ती वाव न लगई सतगुर रखे आप गुर नारायण दय गुर गुर सच्चा सृजन हार गुर तुठे सब किस पाया जन नानक सद बलिहार गौड़ी माज महला पंजवा हर राम राम राम रामा जप पूरन होए कामा रहाओ राम गोविंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र हर जस सुनिए जिसते सोई पाई मित्र सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे क्यों गोविंद मनो विसारी है जिस सिमरत दुख जाहे जिस लड़ लगे है जीवी है पव जल पई है पार मिर साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रात नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबास गौड़ी माज महला पंजवा मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू मीठे हर गुण गाओ सच्चे सेती रतिया मिलिया निथावे थाओ रहाओ होर साध सब फिक्किया तन मन फिक्का होए बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोए अंचल गह के साथ।

तुम मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते ऐनस पागो रहाओ, सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना, हर शोक ते रह अतीता तिन जग तत पछाना, उस तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक एव खेल कथन है किन्हो गुरमुख जाना, गौड़ी महला नामा साधो रचना राम बनाई, एक दिन से एक अस्थिर माने।

शरणाई गौड़ी महला नावा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एन इस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ, पूत मीत माया ममता स्यों, ए विद आप बंधावे, मिर्ग तृष्णा ज्यो चूठो इव जग, देखता उठतावे, पुगत मुकत का

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी विमल मजार गुर की मत जिए आई कार। इन विद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पहे सुहा रंग माया नगर पई दिख ठाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर क्यों ला गया रस संग्रह बिख पर हर त्या गया पाए बसे जम का पौ पा गया साध रहे बादंग अंकारा चित हर क्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रात्यो हर नाए सिखिया दी क्या पूजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म त्याना जोत पई ज्योति माए समाना लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना न पंडित न चतर सियाना न फूलो न परम फुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमुख सहज समाना गौड़ी ग्वारे री महला पहला मन कुंचर काया उद्याने गुर अंकस सच शब्द निशाने राज द्वारे शोभ सुमाने चतुराई ने कीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर में अमृत पस कर ले नन्ना कार ना कोई करे राखे आप वड्याई दे नील अनिल अगन इक थाई जल निवरी गुर बूझ बुझाई मन दे लिया रहत गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा में आँखों कैसा सागर डूगर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन निडरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने कीने पौन जिन कहया तिन कहन वखानिया जिन बूझिया तिन सहज पछानिया देख विचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त इक नाई तही निरंजन रहा समाई निज कर व्याप रहा निज ठाई।

जनमे जय गुर शब्द ना जानिया, क्यों सुख पावे परम पुलानिया, इक तिल पूले बौर पछतानिया, कंस के चांडूर ना कोई, राम ना छीनिया अपनी पत खोई, बिन जगदीश ना राखे कोई, बिन गुर दर्ब ना मेटिया जाए, गुरमत धर्म तीरज हर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, सोआ चंदन अंक चढ़ावो, पाठ पटंबर पहर हटावो, दिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पहरों क्या ओढ़ दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोर सिगार करे अति प्यारी, बिन जगदीश पजे नित खुआरी, दर कर महला सेज खाली, एनक फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लक्कर नेब खवासी पाजे, बिन जगदीश चूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बुलावो, ताज कुल है सिर खतर बनावो, बिन जगदीश कहाँ सच पावो, खान मलूक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सवरस काजा, हो में ममता।

मिला। सेवा एक ना जानत अवरे, पर पंच ब्याज त्यागे कवरे, पायु मिले सत साचे फसरे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाय मिले मल तोई, रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत अग्न जगत पर जा रहे, सो उभरे गुर शब्द विचार है, प्रिंग पतंग कुंचर अर मीना, मृग मरे सह अपना कीना, तृष्णा रात तत नहीं दीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध विनाश है सगल विकारी, पत मत खोवे नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदे लपटाए, गुरमुख छूटस हर गुण गाए, जो तन विधवा पर को दे, काम दाम चित पर वसे, बिन फिर त्रिपत ना कभू होई, पल पल पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़े सुन साटा, बिन रस राते मन बौ नाटा, ज्यो चात्रिक जल प्रेम प्यासा, ज्यो मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी तृप्तासा, गौड़ी मैला पहला, हठ कर मरे ना देखे पावे, वेद करे बहु पसंद लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख, रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम विसारे सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तख सलाम, अद की तृष्णा व्यापे काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावे नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के

किसको वाह वाह जी शब्द सुनावे, किसको वाह वाह जी मेल मिलावे, वाह वाह किसको जिसका यो जियो, गुरु शब्द जी मत अमृत पियो।

नानक नाम रते पत पाए। कौड़ी मैला पहला हौ मैं करत देखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया। हौ हौ करत नहीं पत पाई है, हौ मैं जाए परम पद पाई है। रहाओ हौ मैं कर राजे बहुत आवे, हौ मैं खपे जन्म मर आवे। हौ मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्यागे पंच संगार है। अंतर साच सहज कर आवे, राजन जान परम गत पावे। सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो के कर तारी लावे। हौ हौ कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे। जेती है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही। हौ मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे। गौरी मैला पहला प्रथमे ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया। हम हर राखे गुर शब्द विचारिया। रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा। ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना। नामो पूले जम का दुख सहना, मैं पर नाम ज्यों राखो रहना। चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचे माया दाम। मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकदम सिकदार है। नेकल कोई न

ओ गुरमुख जापे तां पत होई, काजी सेख पेख फकीरा, वडे कहावे हो मैं तन पीरा, काल न छोड़े बिन सतगुर की तीरा, काल जाल जेवा अरनैनी, कानी काल सुने बिख बैनी, बिन सबदे मूठे दिन रैनी, हिरदे साच वसे हर नाए, काल न जो है सके गुण गाए, नानक गुरमुख सबद समाए, गौड़ी मैला पैला, बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुकम रजाई, रहे अतीत सच्चे शरणाई, सच कर बैसे काल न जो है, मनमुख को आवत जावत दुख मोह है, रहाओ, अप्यो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बैस सहज कर रही है, हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल नहीं चल नहीं डोले, गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत तत विरोले, सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पियो अंतर गत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी, ओजन नाम निरंजन सार, परम हंस सच ज्योत अपार, जह देखो तह एकंकार, रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुर चरणी, मन से मन मानिया चूकी अंग प्रमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर न पारिया, सात महल गुर अलख लखाया, नेचल महल नहीं छाया माया, सात संतोखे परम चुकाया, जिनके मन वसिया सत सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक सात नाम मल खोई, बौड़ी महला पहला, राम नाम चितरा पै जाका, उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपो अपार कुमारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा, रहाओ, गुरमत राम जपे जन पूरा, इत कट अनहत बाजे तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा तार, जिनके हृदय हर हर सोई, जिनका दर्प परश सुख होई, सर्व जिया में एको रवे, मन मुख अंकारी फिर जूनी पवे, सो बूझे जो सतगुर पाए, हों में मारे गुर सबदे पाए, अर्ग उर्ग की संग क्यों जाने, गुरमुख संग मिले मन माने, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, सोलें अष्टपदिया।

गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो सुने न कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंफ बहुत चतुराई, जो किछ कमावे सो थाए न पाई, आवे जावे ठौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग ज्यों लाए बहन सियाना, जम पकड़िया तभी पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुगचारे होई, गुरमुख जात पत नामे।

राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ। वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच लिवलाए। हो मैं मैला यो संसारा, नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुआरा। सो जन साचा जे हो मैं मारे, गुर के शब्द पंच संगारे, आप तरह सगले कुल तारे, माया मोह नट बाजी पाई, मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे अंकारी, आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, ग्रही अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेवे सेवड़ पागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया, अनदिन भगत हर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पर वाद वखाणे सिर मारे जमकाला, तत नाचीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए, हर नाम विसारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवजल डूबे दूजे पाए। माया का मोहताज पंडित कहावे, बिखिया राता बहुत दुख पावे, जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे, गुरुमुख जम काल नेड़ ना।

परम फुलाए, मनमुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई, सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्र, मन स्यों मन

बंधन ना टूटे मुक्त न पाए, मुक्त दाता सतगुरु जुगमाए, गुरुमुख प्राणी परम गवाए, सहज तुन उपजे हर लिव लाए, रहाओ। त्रै गुण काले की सिरकारा, नाम न चेते उपावन हारा, मर जमे फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते परम न जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिखा माता बिख माए समाई, माया कर मूल जंत्र परमाए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नजर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बार साच वर्ताए, साच न छपे जे को रखे छपाए, ज्ञानी बूझे सह सुबाए, गुरुमुख साच रहा लिवलाए, हों मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सतगुरु दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुरते सोजी पाए, आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई, नानक गुरमुख बूजे कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरमुख पावे, नामो सेवे नाम सहज समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे, अंधिन हृदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सुखा, रहाओ। हृदय सुख पया प्रगास, गुरमुख गावे सच गुण दास, दासन दास नित होवे दास, गृह कुटुंब मैं सदा उदास, जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए, जा हृदय वस्या सच सोए, गुरमुख मन बेदिया अस्थिर होए, हुकम पचाने बूझे सच सोए, तू करता मैं अवर न कोए, तुझ सेवी तुझ ते पत होए, कृपा करें गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग में लोए, गुरमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसे अंधिन लिव लागी, सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरे वड पागी, हों मैं ममता दुर्मत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास, गुरमुख बुद्ध प्रगति प्रभ जास, जब हृदय

शब्द मन रंगिया लिव लाए, निज कर वस्या प्रभ की रजाए, सतगुरु सेवे जाए अभिमान, गोविंद पाईए गुणी निधान रहाओ। मन बैरागी जा शब्द पौ खाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहा समाए, गुर कृपा ते मिले मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए, मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए, त्रिग पहु जीवन जित हर नाम न लगे प्यार, त्रिग से सुखाली कामन मोगवार, तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न होए, सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए, हर नाम बिना मैं अवर न कोए, सतगुर ते हम गत पत पाई, हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम ले विलाई, गुर मिलिए हमको शरीर।

मन करहला गुरु गोविंद समाल रहाओ, मन करहला विचारिया मन मुख फाथिया महाजाल, गुरुमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाल, मन करहला मेरे प्यारिया सत्संगत सतगुर पाल, सत्संगत लग हर त्याये हर हर चले तेरे नाल, मन करहला वड पादिया हर एक नजर निहाल, आप छाए छुट्टी है सतगुर चरण समाल, मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल, गुरु नौ निज नाम विखा लिया हर दात करी दयाल, मन करहला तू चंचला चतराई छड़ विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल, मन करहला बड पागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हत तारिया जम मारिया राजम काल, अंतर निधान मन करहले प्रम पवे बार पाल, गुर पुरख पूरा

जब यो मन में करत गुमाना तब यो बावर फिरत बिगाना जब यो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको यो

मुश्किल पारी, जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता। जब इन अपनो बांध्यो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किछ कर माने पेदा तब ते दुख दंड अरखेदा, जब इन एको एक ही बूझिया तब ते इसनो सब किछ सूझिया।

कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एक है, आपसे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना ने

पास जपत पाव अपदा जाए, सावत मनुआ आवे खाए, जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत ए हो मैं पागे, जास जपत वस आवे पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत ए तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगे सिजे, जास जपत कोट मिटे अपराध, जास जपत हर होवे साध, जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे, जास जपत रतन हर मिले, बहुर ना छोड़े हर संग हिले, जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सह निवास, जास जपत ए अग्न न पोहत, जास जपत एहो काल न जोहत, जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाता, जास जपत मुश्किल कछु न बने, जास जपत सुन अनहत तुने, जास जपत ए निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए, गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसके हृदय मंत्र दे हरी, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुरु पूरा, गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर तारे, पंच जना स्यों संग निवारे, दस इंद्री कर राखे वास, ताके आत्मे होए प्रगास, ऐसी दृढ़ता ताके होए, जाको दया मया प्रभ सोए, रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है, जेता बोलन तेता ज्ञान है, जेता सुनना तेता नाम, जेता पेखन तेता ध्यान, सहजे जागन सहजे सोए, सहजे होता जा

कहो नानक जिस कृपा करे नेचर थान साध संगतरे। गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसे वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाए ऐसा कोई जे दुबदा मार दवावे इसे मार राज जोग कमावे रहाओ जो इस मारे

सोतनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सोई जति, जो इस मारे तिस होवे गति, जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो नहीं चलतनी, जो इस मारे सोवड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन थाए न पड़े, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छूटे, इस मारी बिन ज्ञान न होई, इस मारी बिन झूठ ना तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला, जाको पै किरपाल कृपा निज, तिस पै खलासी होई।

हर हर का दास नीच कुल सुने तिसके संग खिन में उदरे कोट मजन जाके सुन नाम कोट पूजा जाके है ध्यान कोट पुन सुन हर की बाणी कोट फला गुरते विद जानी मन अपने में फिर चेत बिनस जाए माया के हेत हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम के रंग जाके काम उतरे सब भूख जाके काम ना जो है दूत जाके काम तेरा वड गमर जाके काम होवे तू अमर जाके

जाके ऊन नाही काहू बात, एक आप अनेक पात, जाकी दृष्ट होए सदा निहाल, मन मेरे कर्ता की काल, ना को चतुर नाही को मूढ़ा, ना को हीन नाही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस पागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीवें साकत नाम बिसारी, एक निमक जो

बोले पूर साकत मुखकारा, बिन सिमरन गर्दब की न्याई, साकत थान परिष्ट फिराई, बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंद न पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती, जिस पया कृपाल तिस सत्संग मिलाया, कहो नानक गुर जगत तराया, गौड़ी महला पंजवा, गुर के बचन मोह परम गत पाई, गुर पूरे मेरी पैज रखाई, गुर के बचन त्यायो मोह नाओ, गुर प्रसाद मोह मिलिया थाओ, रहाओ, गुर के बचन सुन रसन वखाणी, गुर कृपा ते अमृत मेरी बाणी, गुर के बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप, गुर के बचन मिटिया मेरा परम, गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म, गुर के बचन कीनो राज जोग, गुर के संग तरिया सब लोग, गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर के बचन पाया नाउ निद, जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा, तिसकी कटिये जम की फासा, गुर के बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर पेटिया पार ब्रह्म, गौड़ी महला पंजवा, किस गुर को सिमरों सास सास, गुर मेरे प्राण सतगुर।

खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया, से होए भगत जिना कृपारिया, हौ वारिया हर वारिया। रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया, मैं तक्की और संता लेहो उबारिया। मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया। मैं किए मित्र अनेक इक्कस बलिहारिया, सब गुण किसी नाहे हर पूर पंडारिया। चौ दिस जपिए नाउ सूख सवारिया, मैं आही और तुहार नानक बलिहारिया। गुर काढ़ियो पूजा प्रसार मोह कुपारिया, मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर नहारिया। मैं पायो सर्व निदान अकथ कथारिया, हर दरगे शोभावंत बाल उडारिया। जन नानक लगा रतन अमोल अपारिया।

नारायण हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, राव तज हो मैं गुर ज्ञान पजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दी सह सो संग न गयो, साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रव रहयो, कोट मदे किने गुरमुख लयो, हर संतन कर नमो नमो, नौ निद पावे अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो, हृदय गावो नाम निदो, काम क्रोध लोभ मोह तजो, जन्म मरण दो ते रहयो, दुख अंधेरा करते मिट्यो, गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेविया सो पार परयो, जन नानक गुरमुख जगत करयो। महला पंजवा गौड़ी, हर हर गुर गुर करत परम गए, मेरे मन सब सुख पायो, रहाओ बल तो जल तो तौ क्या, गुर चंदन शीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दी पायो, पावक सागर गहरो, चर संतन नाभ तरायो, ना हम कर्म ना कर्म सुच, प्रभ गह पूजा अपायो, पौ खंडन दुख पंजनो, भगत वचल हर नायो, अनाथ नाथ कृपाल दीन, समरथ संत ओटायो, निर्गुनी आरे की बेनती, देहो दर्श हर आयो, नानक शरण तुहारी ठाकुर, सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महला पंजवा, रंग संग बिखिया के पोगा, इन संग अंध ना जानी, हौ संचो हौ खाटता सगली अवध बिहानी, रहाओ हौ सूरा प्रधान हो, को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना, मन में होए गुमानी, जो उलझायो बाद बुद्ध का, मर्त्या नहीं बिसरानी, पाई मीत बंदव सके, पाछे तिन्हों को संपानी, जित लागो मन बासना, अंत साई प्रगटानी, आंग बुद्ध सुच कर्म कर, ए बंधन बंदानी, दयाल पुरख।

पहला पहला मुंद रहन दुहे लड़िया जियो नींद ना आवे सातन दुबलिया जियो पिर कह हावे तन थी दुबल कंक हावे केव नैनी देखे सिगार मिठ रस कोग भोजन सब झूठ किते ना लेखे मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी ना आवे नानक सातन।

बिन करवास नाही पुछो सखी सहेलिया, बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसे साथ सुहेलिया। सच मन सज्जन संतोख मेला, गुरमती सो जानिया, नानक नाम न छोड़े साथन नाम सहज समानिया। मिल सकी सहेलड़ियो हम फिर रावे हा, गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा। शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया, निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया। साच की मत सदा नौतन

हम कर साजने आया, मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहसी, मुंद मन उमा हो, साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो, कर जोड़ सातन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया, नानक पिर तन

रह न साके बिखम रहन कनेरिया, नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया। बाजो प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुर लाए, नानक सातन।

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे किसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोय न पावे हाथ निग्रह बे बाणे नानक सच कर सब।

तेरा मैल सच्चा जियो, नाम सच्चा वापारो, नाम का वापार मीठा, भगत लाहा अंदिनो, जिस बाज वखर कोई न सूजे, नाम लेवो खिन खिनो, परख लेखा नदर साची, कर्म पूरे पाया, नानक नाम।

सा तन बिनो करे जियो हर के गुण सारे खिन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न सके गुर बिन महल न पाई है जो गुर कहे सोई पर की जय तिसना अग्न बुझाई है हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए नानक सा तन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए तन रैन सुहेलड़िए जियो हर स्यो चित लाए सतगुर सेवे पाओ करे जियो विच्चों आप गवाए विच्चों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा पाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर के शब्द समाओ हर गुण सारी ताकंत प्यारी नामे तरी प्यारो नानक कामन ना प्यारी राम नाम गलहारो तन एक लड़ी जियो बिन ना प्यारे दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे बिन शब्द प्यारे कौन

नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मिलाए। ता मिली है हर मेले जियो हर बिन कौन मिलाए, बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए। गुर परम चुकाए यो मिली है माए तासा तन सुख पाए, गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए। कामन रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारे, नानक कामन हर वर पाया।

सदा सुहागन जा सतगुर सेवे गुर के अंक समाये गुर शब्द मेला ता फिर रावी लाहा नाम संसारे नानक कामन ना प्यारी जा हर के गुण सारे सा तन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे गुर शब्द विचारे हों मैं मारे इन बिद मिलो प्यारे सा तन सुहागन सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है दुबदा मार निवारे नानक कामन हर भर

अन ना पानी, पानी अन ना पावे मरिए हावे, बिन फिर क्यों सुख पाए। गुर आगे करो बिनंती जे गुर पावे, ज्यों मिले तिवे मिलाये, आपे मेल ले सुखदाता, आप मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागन, ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सह सुवाए, मन मोहन मोह लिया जियो, दुबदा सह समाए, दुबदा सह समाए, कामन वर पाए, गुरुमती रंग लाए, एहो शरीर पूर कुसत परिया, गल काई पाप कमाए, गुरुमुख भगत जित सहज तुन उपजे, बिन भगती मैल न जाए, नानक कामन पिरे प्यारी, विच्चों आप गवाए, कामन पिर पाया जियो, गुर के पाए प्यारे, रैन सुख सुती जियो, अंतर उर्धारे, अंतर उर्धारे मिलिए प्यारे, अंदिन दुख निवारे, अंतर महल फिर रावे कामन, गुरमती विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सुहागन, गुर कै हेत अपारे, आवो दया करे जियो प्रीतमत प्यारे, कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिगारे, सच शब्द सिगारे, हों मैं मारे, गुरमुख कार सवारे, जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझे गुर विचारे, मनमुख काम व्यापी मोह संतापी, किस आगे जाए पुकारे, नानक मनमुख थाउ न पाए, बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयानी पोली निगुनिया जियो, फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो, आपे बख्शनहारा, अवगुण बख्शनहारा, कामन कंत प्यारा, कट कट रहा समाई, प्रेम प्रीत पाए भगती पाई है, सतगुरु बूझ बुझाए, सदा आनंद रहे दिन राती, अंदिन रहे लिवलाई, नानक सहजे हर वर पाया, सातन नौनिद पाई, गौड़ी महला तीजा, माया सर सबल वरते जियो, क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहता जियो, शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए, हर आप लंगाए, इन विद दुत्तर तरिए, गुरुमुख भगत प्राप्त होवे, जीव त्या यो मरिए, खिन में दाम नाम किल विख काटे, पए पवित्र शरीरा, नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पए मनूरा, स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो, राम नाम की विद नहीं जानी, मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी, डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी, होमे ताप संसारे, जो आया सो सबको जासी, उबरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम वखाणे, आप तरह कुल तारे, नानक नाम वसे कट अंतर, गुरमत मिले प्यारे, राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा, दृढ़ भगत सच्ची जियो, राम नाम वा पारा, राम नाम वा पारा अगमा पारा, गुरमती तन पाईए, सेवा सुरत भगत के साची, विच्चों आप गवाईए, हम मत हीन मूरख मुगद अंधे, सतगुरु मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे, अंदिन हर गुण गाए, आप सराय करे आप जियो, आपे शब्द सवारे, आपे सतगुरु आप शब्द जियो, जुग जुग भगत प्यारे, जुग जुग भगत प्यारे, हर आप सवारे, आपे भगती लाए, आपे दाना आपे बीना, आपे सेव कराए, आपे गुण दाता अवगुण काटे, हृदय नाम वसाए, नानक सद बलिहार।

आग गवाए। सदा हर रस पाए जा हर पाए, रसना सबक सुहाए। नाम प्याए सदा सुख पाए, नाम रहे लिवलाए। नामे उपजै नामे बिनसै, नामे सच समाए। नानक नाम गुरमति पाईए, आपे ले लवाए। ए विदानी चाकरी पिया जियो, तन छोड़ परदेस सिधाए। दूजे किने सुख न पायो पिया जियो, बिख्या लोभ लुवाए। बिख्या लोभ लुभाए परम पुलाए, ओ क्यों कर सुख पाए। चाकरी विदानी खरी दुखाली, आप वेच धर्म गवाए। माया बंधन टिके नाही, छिन छिन दुख संताए। नानक माया का दुख तदे चूके, जा गुर सबदी चितलाए। मन मुख मुकुट गवार पिरा जियो, सबद मन ना वसाए। माया का परम अंग पिरा जियो, हर मार्ग क्यों पाए। क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु पाए, मन मुख आप गणाए। हर के चाकर सदा सुहेले, गुर चरणी चित लाए। जिसनो हर जियो कृपा करे, सदा हर के गुण गाए। नानक नाम

एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे, मेरा मन तन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे, चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों ती रहे, गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण पर पूरे, फिर दोष ना ही सुख दाते हो विछड़ी बुरे आरे, बिनवंत नानक दया तारो कर आवो नहा प्यारे, हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा, हो सिर अर्पी किसमी प्यारे जो प्रभ दे संदेसा, अर्पिया ता शीश सो पान गुर पे संग प्रभु दिखाया, खिन माहे सक

बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ते हम जैसा। मेरे मन आनंद भया जियो वजी वादाई, कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई। मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया, सब मीत बंदप हरख उपजिया दूध ठाउ गवाया। अनहत वाजे वजे कर में फिर संग सेज विछाई, बिनवंत नानक सहज रहे हर मिलिया कंत सुखदाई।

जपें दाना जमकाल तिन को लगे नाही जो एक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराधे से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर सो ज्ञाना बिन वंत नानक राज निचल पूरन पुरुष भगवाना मोहन तू सुफल फलिया।

बेअंत गुण तेरे कथे न जाहे, सतगुर पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारे। गौरी महला पंजवा श्लोक। पतित असंख

संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याए मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख पातो दुख हरण दीन शरण श्री तार चरण कमल आराध्य जम पंथ बिखरा अगन सागर निमक सिमरत साधिये कल मले दहता शुद्ध करता दिन सिरैन आरादो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया पगत वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाई है तम अंग कूप ते उधार है नाम मन वसाई है सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अंक भगती गाया बिनवंत नान

अगमा पारो शरण जोग समरथ मोहन सर्व दोख विदारो रोग सोग सब दोख बिन से जपत नाम मुरारी बिनवंत नाम।

प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसे काल कंटक लोभ मोह नाशे जी जाके प्रभु बसे सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूरन काला बिनवंत ना।

हर संत मान त्याग कर भगत खगौरी मोहे साधु मंत सखी वस आया फिर छोड़ न जाई ते रीत पली भगवंत नानक जरा मरण पे नरक निवार पुनीत कर किस जंत सुन सखिए ए पली बेनंती ए हो मतांत पकाई है सहज सुभाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाय कल कलेश मिटे क्रम नाशे मन चिंदिया फल पाये पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर नानक नाम ते आई है सखी इच्छ करी नित सुख मनाई प्रभु मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवड पागी माए सखी नाल वसा अपने ना प्यारे मेरा मन तन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं आप नड़ा फिर मिलिया प्रम खोयो सांत सह स्वामी परगास तया कौल खिलिया वर पाया प्रभु।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंधक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लग तरा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एको रव रहा दूसर हुआ न होग पौड़ी ओं सात सतगुर नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जासन आपन आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे

निरंकार आकार आप निर्गुण सरगुण एक एक एक बखान नो नानक एक अनेक पौड़ी। ओम गुरुमुख कियो अकारा एक सूत परोवन हारा तिन तिन त्रै गुण विस्तारं निर्गुण ते सरगुण दिष्टारं सगल पाक कर करें उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दोहू पाप ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा। श्लोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन के पास। पवड़ी सत्सा सत सत सत सो सत पुरख ते पिन न को सो शर्म परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संशय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप पाहु को जा।

ने ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो विषम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट न माए। श्लोक। किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रव्याप, पस आपन हो।

या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दिवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करे सो फुन हो एक के सगला विस्तारा नानक आप सवार नहारा श्लोक

0: पौड़ी
1: रे मन बिन हर जय रचो कहते बंधन पाहे जे विद कतहु ना छूटी है।

जोड़ा ते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी रारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रेरे दरगे कह न को आओ बैठ आदर सुख देव ओआ महली पावे तू बासा जन्म मरन न होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै।

कै रसराते अहं बुद्ध माया मधमाते या माया में जन्मे मरना जो जो हुक्म तिवे त्यों करना को ऊन न को पूरा को सुगर न को मूरा जित जित लावो।

गम्य जास रसन हर हर जस पन्य आए बसे साधु के संगे आम दिन नाम त्यावे रंगे आवत सो जल नामे राता जाको दया मया विदाता एक आवन फिर जोन ना आया नानक हर के दर्श समाया श्लोक यास जपत मन होए आनंद बिन से दूजा पाओ दुख दर्द किसना बुझे नानक नाम समाओ। पौड़ी जैया जारो दुर्मत दो किसे त्याग सुख सहजे सो यैया जाए परो संत सरना जे आसर एया पव जल तरना यैया जन्म न आवे सो एक नाम ले मने परो यैया जन्म न हारिये गुर पूरे की टेक नानक ते सुख पाया जाके ही रे एक। श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के बीत गुर पूरे उपदेशया नानक जपिये नीत। पौड़ी अंदिन सिमरो तास को जो अंत सहाय होए ए बिखिया दिन चार छे छार चलो सब कोए ताको मात।

अर्थ खजाना नाम तंग या भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास खेले बिगसे अनद स्यो जा को होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृह माल खेद ना दुख ना दान।

गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहू मस्तक पाग नानक आए सफल ते जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोठे शास्त्र देव सब आम न कस्तो कोए आप युगादि।

पुनः चरना काल काल अनेक पछतावे बिन हर भगत कहाँ थित पावे ओल महारस अमृत ते पिया नानक हर गुरु जाको दिया। श्लोक काले सब दिवस सास

काल ते जो साकत प्रवकीन अनक जोन जन्मे मरे आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जे आप दिवाए गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे सो जीवत जे जीवत जपया प्रगट पे नानक ने छपया श्लोक चित चित वो चरणार बिंद ऊद कवर बिग शांत प्रगट

सभागा चार कुंट देह दुष्कम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ।

पौड़ी। जजा जाने हो कछुआ बांध्यो जो नलनी प्रमसुआ, जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी। जो जाने मैं कथनी करता व्यापारी बसदा जो फिर

किया। चरह कसम मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ। चरह काम क्रोध दुष्टाई, नानक जाको कृपा गुसाई। श्लोक। यतन करो तुम अनक विद,

बिनस्तो कास्यो करिए संग ज्ञानो या विद सही चित झूठो माया रंग। ज्ञानत सोई संत सोए प्रमते की चत पिन अंधकूप ते तेह कढ़ो जे होवो सो प्रसन्न। ज्ञा कह

या डेरा को श्रम कर काले जा का तसू नहीं संग चाले। ओ आडेरा की सो मित जाने जा को दृष्ट पूरन भगवान डेरा ने चल सच।

इस मनुआ जी ते हर मिले ते सूरतन वेश ना को जाने आपनो एक टेक आधार रेण दिन सिमरत रहे सो प्रभु पुरुष अपार रेण सगल या मन करे एऊ कर्म कमाए हुक्मे बूझे सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पो तिसे प्रभु मिलावे मोहे नानक प्रम को काटिए चूके जमकी जो। पौड़ी तत्ता कांस्यो प्रीत कर गुण निध गोविंद राय फल पावे मन बाँचते तपत तुहारी जाए। त्रास मिटे जम पंथ की जास बसे मन नाओ गत पावे मत हुए परगास मैली पावे ठाओ। ताहू संग न तन चले गृह जोबन ने राज संत संग सिमरत रहो यह तुहारे काज। ताता कछु न होई है जो तात निवारे आप प्रतपाले नानक हमें आपे माई बाप। श्लोक था के बहु विध काल ते तृप्त ना तृष्णा लाथ संच संच साकत हुए नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनिक बंच बल छल करो माया एक यो पाव। थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार मन के कामना आवई अंते अवसर बार। हित पावो गोविंद पजो

नानक नाम ते आईए कारज आवे रास पौड़ी। तद्दा तावत तो मिटे संत संग होए बास तुरते किरपा।

जाके मन तन नाम बसाही, नाम निधान गुरुमुख जो जपते, बिख माया मैं ना ओए खपते। नन्ना कार ना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो। निध निधान हर अमृत पूरे, तह बाजे नानक अनहद तूरे। श्लोक

पौड़ी पप्पा परमित पार न पाया पथित पावन अगम हर राया होत पुनीत कोट अपराधु अमृत नाम जपै मिल साधु पर पच क्रोह मोह मिटनाई जाको राखो आप गुसाई पाप।

पौड़ी बब्बा परम मिटावो अपना या संसार सगल है सुखना परमेश्वर नर देवी देवा परमेश्वर सिद्ध साधिक ब्रह्मेवा परम परम मानुख डहकाए दुत्तर महा बिखम ए माए गुरमुख परम पै मोह मिटाया नानक ते परम सुख पाया। श्लोक माया डोले बहु विधि मन लपट्यो ते संग मांगन ते

मन मूर्ख कह करें पुकार। जो मांगे तो मांगे बिया, जाते कुशल न काहू थिया। मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते।

मम्मा जाहू मरम पछाना, पेटत साध संग पतियाना, दुख सुख उआ के समत बिचारा, नरक सुर्ग रहत अवतारा, ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख बिसेखा, उआ रस में उआहू सुख पाया, नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक। यार मीत सुन साजनो, बिन हर छूटन नाहे, नानक ते बंधन कटे, गुर की चरणी पाहे। पौड़ी। यैया जतन करत बहु विदिया, एक नाम बिन कह लोस दिया, याहू जतन कर होत

याहो तरन तारन समराथा, राख लेहो निर्गुण नरनाथा। मन बच कर्म जे आप जवनाई, नानक ते मत प्रगट।

राड करत साकत दावारा, जिन्ह ही है अहं बुद्ध विकारा, राड़ा गुरमुख राड मिटाए, निमख माही नानक समझाए। श्लोक साधु की मन ओट दहो, उकत सियानक त्याग, गुर दीख्या जे मन बस है, नानक मस्तक पाग। पौड़ी ससा सरन परे अभारे, शास्त्र सिमरत वेद पुकारे, सोदत सोदत सोद बिचारा, बिन हर पजन नहीं छुटकारा। सास सास हम पूलन हारे, तुम समरथ अगनत अपारे, शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे।

पावे खसमता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो अगनता असंख खते खिर बख्शन हारा नानक साहिब सदा दियारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे शरण परो हर राए उकत सियानक सगल त्याग नानक ले समाए। पौड़ी ससा सियानक छाड़ आना हिकमत हुकम ना प्रपति आना सहज पाठ करें चतुराई संग तुहारे एक ना जाई। सो सो जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख ना ब्या।

पौड़ी। हेरो काट काट सगल के पूर रहे भगवान, होवत आए सद सदीव दुख पंजन गुर ज्ञान। हों छुटके होए आनंद ते, हों नाही ते आप, हटे दुख जन्म मरन संत संग परताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला, संते संग होत कृपाला, पूरे कछु न किन्हू किया, नानक सब कछ प्रभु।

मत जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे न जानत तत। लाहा माया तारने दैव स्टूडन जाए देवन हार दा पार प्रभ निमख न मने बसाए। लालच झूठ विकार मोह या संपे मन माहे लंपट चोर निंदक महा तिन्हों संग बिहाए। खुद पावे ता बख्श ले खोटे संग खरे नानक पावे।

पाव जलते काडू प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी। खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत सतगुरु बचन समाए। खिमा गई सच संचयो।

आए मिले भगवंत। आपन किया करें आप आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे कट कट रहा ब्याप। श्लोक आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अक्षर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अक्षर में त्रिभवन प्रभ धारे, अक्षर कर कर वेद विचारे, अक्षर शास्त्र सिमरत पुराना, अक्षर नाद कथन वख्याना, अक्षर मुक्त जुगत पै परमा, अक्षर कर्म कीर्त सुच परमा, दृष्टमान अक्षर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, पुस्तक कह न जाए।

हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान, जा कै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है भी होवन हार, हे संत के सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हूँ दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दी जय।

गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत निरोधरा, गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा।

हैं अष्टपदी। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, पल पले स्तन माय मिटाओ। सिमरो जास विसंगर एक है नाम।

कै सिमरन दूख जंग नसे, प्रभ कै सिमरन काल पर हरे, प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरे, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागे, प्रभ कै सिमरन पौ न व्यापे, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापे, प्रभ कै सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी, प्रभ कै सिमरन होय सो भला, प्रभ कै सिमरन सो फल फला, से सिमरन जिन आप सिमराए, नानक का कैला गुपाए, प्रभ कै सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै, प्रभ कै सिमरन नाही जन त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आशा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहि सनाए, प्रभ जी बसे स्वाद की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरै से तनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते, प्रभ को सिमरै से जन प्रवान, प्रभ को सिमरै से पुरुष प्रदान, प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरै से स्वर्ग के राजे, प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभ को सिमरै से परोपकारी, प्रभ को सिमरै तिन सब बलिहारी, प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरै तिन अनंत घनेरे, प्रभ को सिमरै बसे हर नेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, प्रभ कै सिमरन कभो न झूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सह समानी, प्रभ कै सिमरन निचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल विगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद जुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरै से जन जिन को प्रभ नया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर पद प्रगटाए, हर सिमरन लग बेत उपाय, हर सिमरन तय सुध जति दाते, हर सिमरन नीच चौ कुंट जाते, हर सिमरन तारी सर करना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की ओ सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरुमुख हर सिमरन तिन पास लोक, दीन दर दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ, अष्टपदी, जय मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाय, जय मां प्यान दूत दम गले, तह केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माए उदारी, अंत पुने चरण कर्क नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख घनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोरी वंदना करे, हर का नाम जपत निस्तर, अनेक माया रंग सिखना बुझावे, हर का नाम जपत आभावे, जे मार के हो जाति के ला, ते हर नाम संगोत सोएला, ऐसा नाम मन सदा ते आई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत ते पार कराही, अनेक विघन जय आए संगारे, हर का नाम तत्काल उधार है, अनेक जोन जन्म मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हो मैला मल कभू न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नाम पाई है साध के संग, जे मार्ग के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा, जे पैंदे महा अंग गुबारा, हर का नाम संग जियारा, जहां पंख तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पहचानू,
जय मां प्याम सब बो काम तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम जहाँ त्रिखानन तुझ आकर खै तै नानक हर हर अमृत बरख है भगत जना की बरकर नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर दस पर संत दिन रात हर हर औसत साध कमाट हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक है हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भूत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत तब करे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत पछवाए वियोग जन वाता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप कर दीना हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रसमाते आठ पैर जन हर हर जपे हर का पगत प्रकट नहीं छपे हर की पगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जात हर को नाम।

नाम सुनत दर्द दुख लता, नाम की महिमा संत हृदय वसे, संत प्रताप दीर्घ सब नसे, संत का संगवड भागी पाये, संत की सेवा नाम ध्याये, नाम तुल कछ अगर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखे सर्व टंडोल, पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ज्ञान, खप शास्त्र स्मृत वख्यान, योग अभ्यास कर्म कर्म क्रिया, सगल त्याग बन मदे फिरिया, अनेक प्रकार की ये बहु जतना, पुन दान हो में बहु रतना, शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तुझ राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिरजीव, महा उदास कपि सरथीव, अगन माए हो मत प्राण, कनक अश्व है वर पूम दान, न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजम अच्छादन, निमख निमख कर शरीर कटावे, कौ भी हो मैं मेल न जावे, हर के नाम संसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गप पाहे, मन कामना तीरथ दे छुटे, गर्भ गुमान न मन ते हुटे, सोच करे दिन और रात, मन की मैल न तनते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन से कभू न भिख्या करे, जल तो वह बहु दे अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची वीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतित बहुमूच, बहुत श्यांत जम का पौ व्यापे, अनेक जतन कर प्रसन्ना धापे, पेट अनेक अगर नहीं बुझे, कोट उपार दर गैने सिजे, छूटत नाही ऊप बयाल, मोह व्यापे माया जाल, अगर करतूत सगली जमदाने, गोविंद पदन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सब गावे, जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ए हो मैं चोरे, जे को जन्म मरण से डरे, सात जना की सरनी परे, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा, सगल पुरुख में पुरुख प्रदान, साफ संग जाका मिटे अभिमान, आपस को जो जाने नीचा, सो गनिये सबसे ऊंचा, जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल सृष्टि साजना, सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा, निर्तन

कर जामे। अपनी गत मिट जानो आपे, आपन संग आप प्रवराते। तुमरी उस्तक तुमते होए, नानक अवर न जानस कोए। सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया।

सुत प्रात मीत बनता संग हसे। जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमूला। जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा। जीने हस्त पाव कर नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना। ऐसे दुख मूड अंग व्यापे नानक काज लेहो प्रव्यापे। आद अंत जो राखन हार तिस्यो प्रीत न करे गवार। जाकी सेवा नव निद पावे तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे। जो ठाकुर सब सदा हजूरे ताको अंदा जानत दूरे।

संग संवाई पिस्पारे चंदन लेप उतारे धोए दर्द प्रीत पसंद संग होए अंधकूप में पतित विकराल नानक काट लियो प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेट अंतर मल माया छप सुनाए कछ करे छिपाया बाहर ज्ञान त्याग स्नान अंतर व्यापे लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन सुहा गल पाथर कैसे करे अथाह जाके अंतर बसे प्रभ आप नानक तेजन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गए लिहो और निभावे कहां बुझारत बूझे डोरा निष्कैय तो समझे पोरा कहां बिशन पद गावे गुंग जतन करे तो भी सुरभंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत उहा उस गवन करतार करुणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा करे संग सहाई सो आवे ना चीत जो बैराई तासो प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसे अनंत केल माया रंग रसे देर कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह त्याहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास।

जाके मन लागा प्रभु मीठा सर्व सुख काहू मन बूठा जिस जन अपना हुकुम मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साओ अपनी देरास खात पीत बरते अनत उलास अपनी अमान कछ बहुर साहले अज्ञानी मनी रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोए।

गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरारख दाम, तन तन के जन जे कट बस्यो हर नाओ, नानक ता कह बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत, जानन हार प्रभु प्रवीन, बाहर पेख न काहू पीन, और उपदेश आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख करे संसार, जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक पुंजन चरण पर आता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने, आपे आप तर्क निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा, उपाव स्यान सगल ते रहते, सब कछ जाने आत्म की रहते।

ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी मन किस प्रभु को कभू ना बिसारी।

होत साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रवनेरा, साध संग सब होत निवेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस बुंचा, साध संग होए सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कथू धावे, साध संग अस्थित मन पावे, साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध के संग न कभू धावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस अगोचर लहे, साधु के संग अजर सहे। साध के संग बस है थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए।

साधु के संग सो तन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग सो बासुर देवा। साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। साध

साध संग बिछड़त हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावे, साध के संग ना बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उदरे साध सुन रसे, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुन गाओ, साध के संग ना मन ते बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे, साध के संग लगे प्रभु मीठा, साधु के संग कट कट जीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध के टेस।

सदा समदर्शी। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी

नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उर्दारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है।

अष्टपदी, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पय तीर्थवासी, कई कोट वन क्रमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आपम ध्यान तारे, कई कोट कब काब विचारे, कई कोट नरसन नाम ध्यावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिर है, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख मिट जाए।

छत्र सगल समग्री अपने सूत धारे, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे। कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत हर शास्त्र। कई

नानक आप अलिप्त रहा भरपूर। कई कोट पताल से वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बोजोनी फिरे, कई कोट बैठत ही खाए, कई कोट काले थक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय पाणा तय तय राचे, नानक सब किस प्रभु के हाथे। कई कोट पै बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभु को खोजनते, आत्म में पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रत्यास, तिनको मिलियो प्रभु अविनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हुए आप सो प्रसन्न, नानक के जन सदा तन तन। कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड,

हुक्मे तार अदर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे।

प्रभ पावे ता पतित उधार है, आप करे आपन विचार है। दोहा सिरिया का आप स्वामी, खेले बिजसे अंतर जामी। जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे। कहो मानस के क्या होए आवे, ज्योतिष पावे सोई करावे। इसके हाथ होए ता सब पिछले, ज्योतिष पावे सोई करे। अनजानत भिक्षा में रखे, जे जानत आपन आप बचे। परने पूला दे दिस्तावे, निमक माए चार कुंट फिर आवे। कर कृपा।

गुरु प्रसाद नानक सच कहे। कबू होए पंडित करे बखान, कबू मोन तारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वादी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे न चावे।

अष्टपदी जिसके अंतर राग अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने में जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत।

है त्रिन समान कछ संग न जावे। बौलस कर मानक ऊपर करे आस, पल पीतर कांता होए विनाश। सबके आप जाने बलवंत, छिन में होए जाए पसमंत। किसे न बदे आप अंकारी, तरम राय तिस करे खुआरी। गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगे परवान। कूट कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे। अनक तपस्या करे अंकार, नरक सुरग फिर अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगे को कैसे गवे।

जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहस खटे लख उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनेक भोग दुखिया के करे न तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोष नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे।

समाए आप उपदेश है समझे आपे रचिया सब के साथ आप तीनों आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार उसते तिन कहो किस होए स्थान समंतर एक कैसोए अपने चलित आप करने हार कौतुक करे रंग अपार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना पला पला।

और अष्टपदी संत के दुखन आर्जा कटे हैं, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन फान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जी करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन काग जो लवे, संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन जगत जोन किरमाए, संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सब को छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावे तो ओए भी दत पाहे, संत का निंदक महाअपताई, संत का निंदक खिंच करना पाई, संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजते हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होय मोख, संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किसे का नहीं मित, संत के दोखी को दान लागे, संत के दोखी को सब त्याग, संत

अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सना हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचे कोए किस दिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोहे प्रभ की जोत सगल कट सो है धनवंता होए क्या को गर्व है जा सब किस किसका दिया दरबै।

पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साफ से।

उनराव मनसा पूरन सन्ना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जा का नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर अनद रूप मंगल सज्जा के सब थोक सुनिए कर पाके राज में राज जोग में जोगी तप में तपी सरगस्त में भोगी चाहे चाहे पगते सुख पाया नानक किस पुरुख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मितना है सगल देव हारे अवगाहे पिता के जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान त्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यों गुण में जाको भरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जिन आवे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना तेख करे एक रंग नाना विद कीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एकंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर पूरन सब ठाए नाना विद करदंत बनाई अपनी कीमत आपे पाए सब कब तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नान खरनाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगाश पताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के खंग उदरे सुन श्रवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नाम चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जा का सत स्थान पुरुष सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरुष सब माए समानी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए किसे सब पली सत नाम प्रभता सुखदाई विश्वास सत नाम गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कह रे प्रवेश सत निरत बूझे जे कोए नाम जपता की गत होए आप सत की आसव सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्ट हो करने हार और न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पे बिस्माद जिन बूझिया किस आया स्वाद प्रभ के रंग रात जन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख का तनहार जाके संग करे संसार जन का सेवक सो वड पागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी बे सच असदी चरण सत सत प्रसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत त्यावनहार आप सत सत सबधारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा कह हृदय विश्वास प्रग आया सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया कहते निर्भो होए बसाना जिसते उपजा तिस माए समाना बस्त माए ले बस्त गदाई ताको पिन ना कहना जाई बूझे बूझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धारे नानक सो सेवक साथ साथ समारे अपने जन का पर्दा टाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रखे ताकि गतमित कोई न लाखे प्रभ के सेवक को ना पहुँचे प्रभ के सेवक ऊँचे ऊँचे
जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दैन इस प्रगटाया। नीकी कीरी महपल राख है, पसम करे लस्कर कोट लाख है, जिसका साफ ना काटत आप, ताको राखत दे कर हाथ। मानस जतन करत बो पाक, किसके करतब बिरते जात, मारे न राखे अवर न कोए, सर्व जिया का राखा सोए। काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडाणी। बारंबार बार प्रभ जपी है, पी अमृत इहु मन तंत्र पी है। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, किस किच अवर नाही दृष्टाया। नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग। नाम रस जो जंत्र स्थाने, मंत्र नामे नाम समाने। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सब काम। बोलो जस जे बै दिन रात, प्रभ अपने जन की नीदात। करे भगत आपन कह चाहे, प्रभ अपने सो रहे समाए। जो हुआ हो वत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक न जानो। आठ पैर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक से जन पूरे।

अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हाटे सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वड़ पागी है सतगुर सिख का हल्क पलक सवार नानक सतगुर सिख को जी नाल समार गुर के गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत होए ने कामी किसको हो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कच भरम सह श्यान लया न जाइए नानक ऐसा दुर्बड़ पागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेखत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर वचन करन आघाने मन सुन तो खातम पतियाने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जेबा एक पुस्तक अनेक सतपुर पूरन विवेक काहू बोल न पहुँच प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन मुक्त करे चरण कमल हृदय सिमरे सब बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जपने क्यों हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सोए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण पास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग न लेप मन में राखे हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख तैसे नासे तपत माए ठाट वरताई अंग भया दुख नाठे भाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पहुंचू का निरपो हो बसे सगल व्याध मनते खैन से जिसका साथ तिन कृपा भारी साध संग जप नाम मुरारी एक पाई चूके क्रम गवन सुन नानक हर हर दस्रवन निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाकार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर को सोए पोत पोत रव्या रूप रंग कहे परवा फाद के संग रच रचना अपनी कल तारी अनेक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक इहो दम सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपास सब मीत विसारो चरण कमल में उधार करण कारण सो प्रभ संगरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वत्स यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आसरा को मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ उठ भावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बांचे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनेक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर औखद लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगे परवान मंत्र बोधो हर कह नाए दैर्ज स्थावत आवे ठाए ताको बिघन ना लागे कोए जाके हृदय बसे हर सोए कल पाती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिन से पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जम फांसी
सत विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा। आवागमन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। त्यों रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनेक उपाव न छूटन हारे, सिमरत सासु देद विचारे। हर की पगत करो मन लाए, मन बंशत नानक फल पाए। संग ना चाल तेरे धना, तू क्या लगता है मूर्ख मना। सुत मीत कुटम अरबनता, इनसे कहो तुम कर्म सनाता। राज रंग माया विस्तार, इनसे कहो कर्म छुटकार। अहस्ती रथ असवारी, चूठा डंप चूट पासारी। जिन दिए तुझ बुझे ना बेगाना, नाम विसार नानक पछताना। गुर की मत तू ले आने, पगत बिना भो डूबे सियाने। हर की पगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारे चीत। चरण कमल वाको मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए। आप जपो अगरा नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ। सार भूत सत हर को नाओ, सह सुभाए नानक गुण गाओ। गुण गाव तेरी उतरस मैल, बिनस जाए हो मैं विख फैल। हो है अचिंत बसे सुखनाल, सास ग्रास सर नाम समाल। छाड़ स्यान सगली मना, सास संग पावे सत घना। हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगे जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख। एको जप एको सलाह, एको सिमर एको मनाह। एक के गुण गाव अनंत, मंथन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूरन पूर रहो प्रव्याप। अनेक विस्तार एक ते भये, एक अराज प्राशक गए। मंथन अंतर एक प्रवराता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभु आया।

अष्टपदे जाचक जन जाते प्रदान कर कृपा देवो हर नाम। साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा तूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो साथ साथ प्रभु तुम्हें ध्याव। चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार। प्रभु की दृष्टि मां सुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ता में पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुवर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाव साध के संग। परे शरण आम सब त्याग अंतर प्रगास आम दिन लिवलाग। बड़ पागी जपिया प्रभु सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभु होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख क्रम गया। इच्छुकुनी सरदा सब पूरी रव रया सब संग हजूरी। जिस पासा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे की आ जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे बिखते काडे जन्म जन्म का टूटा गांडे। गुरपुर है सत्य है बुझाया प्रभु अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो यो काम आम त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपाओ। भगत पाए तरी है संसार बिन भक्ति तन हो सी चार। सर्व कल्याण सुख निज नाम बूढ़त जाप पाए विश्राम। सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुण कास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एही सुआव। नेत्रों पेख दर्श सुख होए मन विकसे साध चरण तोए। भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग। एक बस दीजे कर माया गुरु प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समाए। प्रभु संत दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त प्रतपाल। आद पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो हुए पुनीत भगत पाए लावे मनहित। हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोक्ष पाए एक निमख हर के गुण गाए। अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन भाई। बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत। फली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत। साध संग प्रभु देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक सर्गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप। आपन किया नानका आपसे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार यो कचना दृष्टि ताप पाप पुन तब कहते होता। जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संग समात। जब इसका वरण चेन ना जापत तब हर्ष शोक कोक्ष व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम। आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभु केवल तनी तब बंद मुकत को किसको गनी। जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वरूप को कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभु सह सुवाए तब शिव सकट को कित ठाए। जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे। आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण को कहा विनाशन। जब पूरन करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभु एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे।
आपन आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरुष पुरुष पत होता, तै बिन मैल कहो क्या चोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तै कौन कौ मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तै छल छिद्र लगत कहो कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तै किसे पूख कवन तृप्तावे। करन करावन करने हार, नानक करते का नाहि कुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कौन माए बाप मित्र सुत भाई।

बेअंत उठते ऊंचा नानक आपस को आते पहुंचा। जय आप रचियो प्रपंच आकार त्यो गुण में कीनो विस्तार। पाप पुण्य तह पई कहावत कौ नरक कौ स्वर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम तय पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की व्याख्यान। आपन खेल आप कर देख है खेल संकोच है तो नानक एक है। जय अवगत भगत है आप जय पसरे पासा संत प्रताप। दो पाप का आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी। आपे कौतक करे अनंत चोज आपे रस को गन निर्जोग। जिस पावे तिस आपन ना इलावे जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथा अगणित अतोल जो बुलावो त्यों नानक दास बोले। श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार। नानक एको पसरिया दूजा कह विस्तार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार। आपे एक आप विस्तार जात स्थावे ता श्रेष्ठ उपाय। अपने भाणे ले समाये कुमते पिन नहीं किछ होए। आपन सूत सब जगत परोए। जाको प्रभु जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तप का देता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता। जी जंत्र सबका कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राख है तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे। तिस तज अगर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जा कह सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ। गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार। पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप। प्रतपाल जी अनुभव पात जो जो रचियो सोच से त्यात। जिस पावे तिस लय मिलाए पगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक इक जान्या। जन लागा हर एक कहनाए तिसकी आसना बिथी जाए। सेवक को सेवा बने आए हुकम बूझ परम पद पाए। किसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बस्या निरंकार। बंधन तोर पे निर्वैर अन दिन पूजे गुर के पैर। ए लोक सुखी ए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले। साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद। राम नाम तक करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार। अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहाओ। आठ पैर प्रत्ये को नेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसाओ मन इच्छे नानक फल पाओ। हलत पलत दोए लिहो सवार राम नाम अंतर उधार। पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसे तिस साज परीखिया। मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पहुँचाए। सच व्यापार करो व्यापारी दरगे निभे खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे नानक दौर न आवे जाए। तिस्ते दूर कहाँ को जाए उबरे राखन हार ध्याए। निरपो जपे सकल पौ मिटे प्रभ कृपा से प्राणी छुटे। जिस प्रभ राखे तिस माही दुख नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटे अंकार तिस जन को कोई न पहुँचन हार। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन।

लागामीठा सगल सामग्री एक स्पटमा है अनक रंग नाना दृष्टा है। नवनिद अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम सुन समाद अनहते नाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक किस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत करण माए आकाश दयाल सर्वलोक पूरन प्रताल बम तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा करम कौन पानी बह संतर माहे चार कुंट बह दिसे समाहे तिस्ते पिन नहीं को ठाओ गुरु प्रसाद नाम सुख पाओ वेद पुराण सिमृत में देख ससियर सूर नक्षत्र में एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कभू डोले सर्व कला कर खेले खेल मोल न पाये गुणे अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तार रहे हो स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद धर्म का नाश नानक तिन में यो विश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ वचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी यह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करण करावन हार तब जाने अंतर बसे बार भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस तब ते सगली उत्पत तिस पावे ता करे विस्तार तिस पावे ता एकंकार अनेक कला लखी न जाए जिस पावे तिस नहीं मिलाए कौन निकट कौन कही है दूर आपे आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्वभूत आप वर्तारा सर्व नैन आप देखनहारा सगल समग्री जा का तना आपन जस आप ही सुना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सब कह मद अलिप्त तो रहे जो किस कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता ले समाए इसते हो सो नाही बुरा ओरे कहो किने कछ करा आप भला करतूत अतने की आपे जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोत आपन संगराच ताकी गतमित कहीं न जाए दूसर होए तासो जी पाए तिसका किया सब परवान गुरु प्रसाद नानक हो जान जो जाने तिस सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रसोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जाने आया जिस पर साथ सब जगत तराया जन आवन का यह सुहाओ जन के संचित आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक किस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभु आराध्या पूरा जा का नाम नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर देख साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित्या गोतरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद नरक

प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए, सबते ऊंच पाए अस्थान, बहु न हो वे आवन जान, हर तन काट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिद्ध नव निध, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध, विद्या तप योग प्रभ ध्यान,

पास सुंदर चतुर तत्व का बेता सुंदर सी एक दृष्टेता ए फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा ते जमते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तिस दन आवे हर प्रभ चीत

जानी, दुख रोग बिनसे पे परम, साध नाम निर्मलता के कर्म, सबते ऊंचता की शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुखमनी, सबते ऊंचता की शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुखमनी।

देश। लाभ मिले तो ताहिर है हर दरगे पतवंत, राम नाम तन संचवे साच सा भगवंत। उठत बैठत हर पजो साधु संग परीत, नानक दुर्म

नानक संत निर्मल पए, जिन मन वसया सोए पौड़ी। तृतीया त्रै गुण बिखै फल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग प्रम तो कणो, सदा संगारे मीच। हरख सोग सहसा संसार, हौ हौ करत बिहाए, जिनकी ये तिसे न जाननी, चित में अनक उपाय। आद ब्याद उपाद रस, कभो न टूटे ताप, पार ब्रह्म पूरन तनी, नह बूझे परताप। मोह परम बूढ़त कणो, महानरक में वास, कर कृपा प्रभु राम।

चार पदार्थ अष्ट सिद्ध पज नानक हर नाम पौड़ी चतुर्थ चारे वेद सुन सोध्यो तत विचार सर्व

पौ बिन से अमृत रसे रंग रते निरंकार दुख दारद अपवित्रता नासे नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला।

नारद मुन जन सुख व्यास जस गावत गोबिंद रस गी दे हर्षो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान प्रम बिन सियो पाई शरण दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तो ताहिरे साध संग निवलाए खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम त्याए। श्लोक संत मंडल हर जस कथे बोले सत सुभाए नानक मन संतोखी है एक स्यों लिवलाए। पौड़ी सप्तम संचो नाम तन टूट न जाए पंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार। आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राय दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए। आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म परवान।

जम कंकर जोए न सकई, नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नवनिद, सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, कवल प्रगास सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत, सगल धर्म पवित्र स्नान, सब में ऊंच विशेष ज्ञान, हर हर भजन पूरे गुरसंग, जप करिए नानक नाम हर रंग।

प्रीत हर नाम न जपै करत विपरीत पर त्रै रमै बकै साध निंद करन न सुनही हर जस बिंद हिरै पर दर्ब उदर कह ताई अगन न निवरै तृष्णा न बुझाई हर सेवा बिन ए फल लागे नानक प्रभु बिसरत मर जमै अपागे। श्लोक दस दिस खोजत मैं फिरियो जत देखूं तत सोए मन बस आवे।

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इकठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एव धर्म। श्लोक। दुर्मत हरि सेवा करी, तेते साध किरपाल, नानक प्रभु से मिल रहे बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी। द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंचकू आत्मा हर नाम रस कोख है, गुर पूरे ते ए नेचो पाये, नानक राम रमत फिर जोन न आईए। श्लोक। तीन गुणा में व्याप्या, पूरन होत न काम, अतित उदारण मन बसे, नानक छूटे नाम। पौड़ी। त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन नाम मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो, हरख सोग का देह कर बांधियो, दीर्घ रोग माया आसादियो, दिने विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर विसरत होवत ए हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दे।

कुंट प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दसे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ एक जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसें दयाल सूक्ष्म स्थूल सगल भगवान।

नाम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरे आप कुटुंब स्यों गुण गोविंद प्रभ रमन।

हर राय मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाए पौड़ी। कोई गावे को सुने कोई करे विचार, को उपदेश है को दृढ़ है तिसका होए उदार। किलबिख काटे होई निर्मला, जन्म जन्म मल जाए, हलत पलत मुख ऊज।

सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर त्याय है गुरमुख पावे कोए। महला चौथा, हौ मैं माया सब बिख है नित जग तोटा संसार, लाहा हर तन खटिया गुरमुख शब्द विचार। हौ मैं मैल बिख उतरे हर अमृत हर उधार।

रंग स्यों गुरुमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुर साबास। पौड़ी तू करता पुरख अगम है किस नाल तू वड़ी है तुद जेवड होए सो आखी है तुद जेहा तू है पड़ी है तू कट कट एक वर्तदा गुरुमुख पर गड़ी है तू सच्चा सब

जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है, जिसनों दया सदा होए, सतगुर अंदरों निर्वै

करे कनेरियां, जे कारवत होवे साई खाए, बिन सतगुर सोजी ना पवे, अंकार न विचों जाए, अंकारियां नो दुख भुख है, हाथ तड्डे कर कर मंगाए, कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे, मुलम्मा पाज ले जाए, जिस होवे पूरब लिखिया, तिस सतगुर मिले प्रभ आए, ज्यों लोहा पारस पेटी है, मिर संगत सुवरन होए जाए, जन नानक के प्रभ तू तनी, ज्यो पावे तिवे चलाए, पौड़ी जिन हर हृदय सेविया, तिन हर आप मिलाए, गुण की साध तिन स्यो करी, सब अवगुण शब्द जलाए, अवगुण विकण पलरी, जिस देह सो सच्चे पाए, बलिहारी गुरे आपने, जिन अवगुण मेट गुण प्रगति आए, वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए। श्लोक महला चौथा। सतगुर विच वड्डी वड्याई, जो अंदिन हर हर नाम ते आवे, हर हर नाम रमत सुत संजम, हर नामे ही तृप्तावे, हर नाम तान हर नाम दीबाण, हर नामो रख करावे, जो चित लाए पूजे गुरमूरत, सो मन इच्छे फल पावे, जो निंदा करे सतगुर पूरे की, तिस करता मार दिवावे, फेर ओ वेला ओ हथ ना आवे, ओ अपना बीजिया आपे खावे, नरक कोर मुह काले खड़िया, ज्यो तस्कर पाए गलावे, फिर सतगुर की सरणी पवे, ता उबरे जा हर हर नाम से आवे, हर बाता आख सुनाए, नानक हर करते एवे पावे। महला चौथा। पूरे गुर का हुक्म ना मन्ने, ओ मनमुख अज्ञान मुठा बिख माया, उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे, अनहोंदे झगड़े दे उस दे गल पाया, ओ गल परोसी करे बहु तेरी, उस दा बोलिया किसे न पाया, ओ कर कर हंडे जो रन दुहागन, उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया, गुरमुख होए सो अलिप सो वरते, उस दा पाक छड गुर पाक बह जाया, जो गुरगो पे अपना सो परा नाही पंचो, उन लाहा मूल सब गवाया, पहला आगम निगम नानक आख सुनाए, पूरे गुर का बचन ऊपर आया, गुर सिखा वड्याई।

सब पाप जगते का तिन सिर लया, उस अगे पिछे टोई नाही, जिस अंदर निंदा मोह अंब पया, जे सोयने नो ओ हाथ पाए ता खेहू से तीर अल गया, जे गुर की सरनी फिर ओह आवे ता पिछले अवगण बख्श लिया, जन नानक अंदिन नाम से आया, हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब दू ऊपर तू दीवान, जो तुद सच त्याए दे सच सेवन सच्चे तेरा मान, ओना अंदर सच मुख उजरे सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाया।

कोई पुत्र सिख सेवा करे सतगुरु की तिस कार्य सब सवारे जो इच्छे सो फल पाए सी पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे जन नानक मांगे तूर तिन जो गुरसिख मित प्यारे। महला चौथा जिनको आप दे वड्याई जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए दरिये ता जे किछ आप दू कीचे सब करता अपनी कला वधाए देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का जिन अपने जोर सब आने वाए अपने आप भगता की रख करे हर स्वामी निंदका दुष्टा के मौका ले कराए सतगुरु की वड्याई नित चढ़े सवाई हर कीरत भगत नित आप कराए अन दिन नाम जपो गुर सिखो हर करता सत

गुर सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार सबत कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए पौड़ी। तू सच्चा साहिब आप है सच हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे, सच सेवे सच वणंजले गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे। श्लोक महला चौथा, जिस अंदर ताप पराई होवे किसदा कदे न होवी पला, उस दे आखे कोई न लगे नित ओजारी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई मोह कड न सके उसदा काला भया, कर्म तरती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए, गला ऊपर तपावस न होई विच खादी तत्काल मर जाए, पाई वेखो न्याओ सच करते का जेहा कोई करे तेहा कोई पाए, जन नानक को सब सोजी पाई हर दर किया बाता आप सुनाए। महला चौथा, होंदे प्रतख गुरु जो विछड़े तिनको दर टोई नाहीं, कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाही, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित पंबल पूसे खाई, जिन गुरु गोपिया अपना से लेंदे तहा फिराई, तिनकी पुख कदे ना उतरे नित पुखा पुख कुकाही, ओना दा आखिया को ना सुने नित हौले हौल मराही, सच गुर की वड्याई वेख न सकनी ओना अगे पिछे थाओ नाही, जो सतगुर मारे तिन जाय मिले रेंदी खोंदी सब पत गवाई, ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही, हर तिन का दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, कुर करते आप लिख पाया तिस नाल क्यो चारा नाही, जन नानक नाम अराध तू तिस अपड़ को ना सकाही, नावे की वड्या

तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई, तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करें, जिसके मस्तक हाथ करया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपर को नास कोई, जन नानक हर करते आप बैठ क्या आपे पैज रखे प्रभु सोई। पौड़ी काया कोट अपार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले, नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले, विण काया जे होर से तन खोज दे से मूर बेताले, से उजड़ परम पवाये ज्यो चार मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया, नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ को टोया, कूक पुकार को ना सुने ओ औखा होय होय रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया, ओ तेली संदा बलद कर नित पल के उठ प्रभ जोया, हर वेखे सुने नित सब किछ सिद्धू किछ गुज्जा ना हो।

सिख सतगुर के चरण तोया, गुर सतगुर पिछे तर गया, जो लोहा काट संगोया, जन नानक नाम से आए तू, जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा, वड पागिया सोहागनी, जिना गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर जोत प्रगासिया, नानक नाम समाए। पौड़ी, एवो शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गुहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत, सब आत्म राम पछाणिया, ता इक रविया इको ओत पोत, इक देखिया इक मन्या, इको सुनिया श्रवण स्रोत। जन नानक नाम सलाहे तू, सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा, सब रस तिन कह रिदे है, जिन हर वस्या मन माहे, हर दरगे ते मुख उजले, तिनको सब देखन जाहे, जिन निरपो नाम से आया, तिनको को कोई नाहे, हर उत्तम तिनी सरेविया, जिनको तुर लिखिया आहे। ते हर दरगे पहनाई है, जिन हर उठा मन माहे, कोई आप करे सब कुटम स्यो, तिन पिछे सब जगत छदाहे, जन नानक को हर वेल जन, तिन वेख वेख।

से जंत भय हरि आवले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी दिठा तिना ले छाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक तो वह पाए। पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उधारिया। सच सच्चा सतगुरु पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया। जान दिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया। बलिहारी गुर आपने सदा सदा कुंवारिया। गुरमुख जिता मनमुख हारिया, गुरमुख जिता मनमुख हारिया। श्लोक महला चौथा। कर कृपा सतगुर मेले उन, मुख गुरमुख नाम ते आए सी। सो करे जी सतगुर पावसी, गुर पूरा करी वसाए सी। जिन अंदर नाम निदान है तिनका पौ सब गवाए सी। जिन रखन को हर आप होए, होर केती चक चक जाए सी। जन नानक नाम ते आए तू, हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा। गुर सिखा के मन पाव दी, गुर सतगुर की वड्याई। हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़े सवाई। गुर सतगुर के मन पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म छड़ाई। गुर सतगुर तान दीवान हर तिन सब आन निभाई। जिन्नी दिखा मेरा सतगुर पाव कर, तिनके सब पाप गवाई। हर दरगे ते मुख उजले, बहु शोभा पाई। जन नानक मंगे तूर तिन, जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी हौ आख सलाही सिर्फ सच, सच सच्चे की वड्याई। सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किने न पाई। सच सच्चा रस जिन्नी चखिया, से तृप्त रहे आघाई। इहो हर रस से ही जान दे, जो गूंगे मिठाई खाई। गुर पूरे हर प्रभ सेविया, मन वजी वधाई। श्लोक महला चौथा। जिना अंदर उमर थल से ही जानन सूलिया। हर जाने से ही बिरहो हौ तिन विट्टों सद कुम कोलिया। हर मेलो सज

सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे। ज्यो उबली मजी ठह रंग गह गा त्यों सच्चे नो जियो दे। रंग चलू लै अतरती

सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया। ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया। हर नाम दृढ़ावे, हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया। गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया। तुद आपे आप रखिया, सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया। तू आपे पूजे पूज करावे, सतगुर को सिरजन हारिया। कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो, तिस काला मोह जम मारिया। तिस अग्गे पिछे टोई नाही, गुर सिखी मन विचारिया। सतगुरु नो मिले सही जन उबरे, जिन हृदय नाम समारिया। जन नानक के गुर सिख पुतो, हर जप्यो हर निस्तारिया। महला तीजा, हौ मैं जगत पुलाया, दुर्मत बिखिया बिकार। सतगुर मिले ता नदर होए, मनमुख अंध अंधियार। नानक आपे मेल ले, जिसनो शब्द लाए प्यार। पौड़ी, सच सच्चे की सिफत सलाह है, सो करे जिस अंदर पिजे। जिन्नी इक मन इक अरादिया, तिनका कंध ना कबहू छिजे। तन तन पुरख सवास है, जिन सच रसना अमृत पिजे। सच सच्चा जिन मन पामदा, से मन सच्ची दरगह लिजे। तन तन जन्म सचियारिया, मुख उज्जल सच करिजे। श्लोक महला चौथा, साकत जाए निवे गुर आ गए, मन खोटे कूड़ कूड़ यारे। जा गुर कहे उठो मेरे पाई, बह जाहे कुसर बगुलारे। गुर सिखा अंदर सत

जन नानक अगम विचारिया पौड़ी। सच सुत्या जिनी आराध्या जा उठे ता सच चवे से विरले जुग में जानिए जो गुरमुख सच रवे। हौ बलिहारी तिन कहो जे अंदिन सच लवे जिन मंतन सच्चा पामदा से सच्ची दरगे गवे। जन नानक बोले सच नाम सच सच्चा सदा नवे। श्लोक महला चौथा। क्या सवना क्या जागना

पौजल डुबदिया कड ले हर दात करे दातार। तन तन से सहा है जे नाम करें व्यापार वन जारे सिख

जन भगत है सच सच्चा जिनी अरादिया, जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच ला दिया। सच साहिब सच जिनी सेविया, काल कंटक मार तिनी साधिया। सच सच्चा सबदू वड़ा है, सच सेवन से सच रला दिया। सच सच्चे नू

बिन गुर मनुआ नाटके फिर जूनी पाए। हर प्रभ आप दयाल होए ता सतगुर मिलिया आए। जन नानक नाम।

रंग सुभाए, सतगुर सेती मन रता रखिया बणत बनाए, जिहवा सालाहे ना रजई हर प्रीतम चित लाए, नानक नावे की मन पुख है मन तृप्त है हर रस खाए। पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया, सो सच सालाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याया, सालाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया, जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजिर नदरी आईया, सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना पुखा सब गवाईया। श्लोक महला चौथा, मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़,

गुरमुख जापै शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, ज्योतिष पावे सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी, तू करता सब किछ जानदा, जो जिया अंदर वरते, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणत है, सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनते, तू कट कट एक वरत

था। एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है, गुरमुख लाई है चित, क्यों सास गिरास विसारी है, बहंदियां उठदियां नित, मरण जीवन की चिंता गई, एहो जीड़ा हर प्रभु वस, ज्यों पावे त्यों रख।

जिन गुर गोपिया अपना तिस ठौर न ठाओ, हालत पलत दो वै गए दरगे नाही ताओ। ओह वेला हथ न आवई फिर सतगुर लगे पाए, सतगुर की गणते कुसी है दुखे दुख विहाए। सतगुर पुरख निर्वैर है आपे लए जिस लाए, नानक दर्शन जिना विखा लियोन तिना दरगे ले छड़ाए। महला तीजा, मनमुख अज्ञान दुर्मत अंकारी, अंतर क्रोध जुए।

0: नानक पूरब लिखिया कमाए पौड़ी।
1: जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कट दे फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड्डे मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाय रले सच्चार सिख बैठे सतगुर पास। श्लोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर, संत सहाई नानका

मनमुख मूलों पुल्या विच लब लोभ अहंकार झगड़ा करद्या अंदिन गुदरै शब्द ना करें विचार शुद्ध मत करते सब हिरलई बोलन सब विकार दित्ते किते ना संतोखिए अंतर तिसना बहु अज्ञान अंध्यार नानक मन मुखान।

खांदे सुख ना पाएन मुगद नर संत नाल खांदे ओए लोचन ओना गुणा नो ओए अहंकार सड़न दे ओए बेचारे क्या करें जा पाग तुर मंदे जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे न संदे वैर करन निर्वैर ना।

सतगुरु पावे गुर सिखा अंदर सतगुरु वरते जो सिखा नो लोचे सो गुर खुशी आवे सतगुर आखे सो कार कमावन सो जप कमावे गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावे वीर सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासों कम कराया लोड़े तिस गुर सिख फिर नेड़ ना आवे गुर सतगुर अगे को जियो।

जे बिन सतगुर के मन मने कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुह जेवड़ तू वड वड्डे जिस तू मेले सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मिलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों पावे त्यों रख।

हर हर नाम जो जन जपै सो आया परवान, तिस जन के बलिहारण जिन पजिया प्रभ निर्वाण, जन्म मरण दुख कटिया हर पेटिया पुरुष।

मन तन नित पावो, नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो, गृह तन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर नाम

तू सब में एक वर्तदा सब माहे समाना थान थनंतर रव रहा जी अंदर जाना साध संग मिल पाये मन सच्चे पाना नानक प्रभ सरणा।

जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊन न काई जाए, नानक लद्दा तिन सुआओ जिना सतगुर भेटिया। महला पंजवा। दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग के, वत्स सुहावी साए नानक नाउ जपंदो तिस्तणी पौड़ी। सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीव न जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी, सच नाम करता पुरख ए रतना खानी, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर पराणी, तोसा दिच्चे सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा। अंतर चिंता नैनी सुखी मूल न उतरे पुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथो दुख। महला पंजवा। मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच न लद्या, नानक से साबास जिन्नी गुरमिल इक पछाणिया पौड़ी। जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, ओए सेवन समरत अपना बिनसे सब मंदा, पतित उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा, भगत वचल तेरा बिरद है जुग जुग वर्तंदा, नानक जा

नानक सह सह गंत। महला पंजवा विसारे दे मर गए मर भी न सके मूल। वेमुख होए राम ते जो तस्कर उपर सूल। पौड़ी सुख निधान प्रभ एक है अविनाशी सुनिया। जल थल मैयल पूरिया कट कट हर पणिया। ऊंच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया। मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया। तुस नानक देवै।

नित चितारिया निखुट ना जाई मूल अतुल पंडारिया नानक शब्द अपार तिन सब किच सारिया महला पंजवा सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी ओथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम के पंथ न पाये फिर ना ही मरने जिसनो आया प्रेम रस से ही जरने बाणी उचरे साध जन अम्यो चले चरने पेक दर्शन नानक जीव्या मन अंदर तरने श्लोक महला पंजवा सतगुरु पूरे सेवे दुखा का होए नास नानक नाम आराध्य कारज आवे रास महला पंजवा जिस सिमरत संकट छुटे अनद मंगल विश्राम नानक जपिए सदा।

चित गाली अल पला लिया कम न आवे मित। महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूरन अगम विस्माद नानक राम नाम तन कीता पूरे गुर प्रसाद। पौड़ी तो वो ना चली खसम नाल लब मोहे विगुते करतब करन पलेरिया मद माया सुते फिर जून पवायन।

लालच अटिया नित फिरे स्वार्थ करे न कोए जिस गुर पेटे नानका तिस मन वसिया सोए पौड़ी सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाऊ मिठा साध आया तिन हर जना चक साधी डिठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसे उठा एक निरंजन रव रहा पाव दोया कुठा हर नानक मंगे जोड़ कर प्रभ देवे तुठा। श्लोक महला पंजवां।

पंजवां वत लगी सच्चे नाम की जो बीजे सो खाए तिसे प्राप्त नानका जिसनो लिखिया आए। महला पंजवां मंगना ता सच एक जिस तुस देवे आप जित खादे मन तृप्ति है नानक साहिब दात। पौड़ी लाहा जग में से खटे जिन हर तन रास दुतिया पाओ ना जाननी सच्चे दी आस। नेचल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरे तिस

जन रंग रूप रस बाद के करें प्राणिया, जिस पुलाए आप तिस कल नहीं जानिया, रंग रते निर्वाण सच्चा गावही, नानक शरण द्वार जे तुद पावही पौड़ी। जम्मन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे, जीवत से परवान।

पौड़ी। प्रभ बेअंत किछ अंत ना है, सब तिसह करना, अगम अगोचर साहेबो जिया का परना, हस्त दे प्रतपालदा परण पोखण करना, मेहरवान बख्शिंद आप जप सच्चे तरना, जो तुद पावै सो फला नानक दास सरना। श्लोक महला पंजवां।

14 अब मोहे जलत राम जल पाया राम उदक तन जलत बुझाया रहाओ मन मारन कारण बन जाये सो जल बिन भगवंत न पाये जे पावक सुर

तू सतगुर हौ नौ तन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। गौरी कबीर जी, जब हम एको एक कर जानिया, तब लोगे काहे दुख मानिया। हम अपत्ते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई। रहाओ हम मंदे मंदे मन माही, साज पात काहू स्यो नाही। पत अपत ता की नहीं लाज, तब जानोगे जब उगरे गोपाज। कहो कबीर पत हर परवान, सर्व त्याग पज केवल राम। गौरी कबीर जी, नगन फिरत जो पाये जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिये पाई, खुश रे क्यों ना परमगत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौरी कबीर जी, संध्या प्रात

मिल पाथर की कर ही सेव, कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती, कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया, तुम कत ब्राह्मण।

इस पर चाहे परच रहोस गौड़ी कबीर जी। जो जन परमित परमन जाना, बातन ही बैकुंठ समाना, ना जाना।

लाज न मरो कहो कर मेरा, अंक की बार नहीं कच तेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, चोआ चंदन।

पंच पनिहारी टूटी लाज परे मतहारी कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी ना ओ कूटा ना पनिहारी गौड़ी कबीर जी। अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनित जन्म किए बहुरंगा ऐसे कर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए। रहाओ जोगी जति तपि ब्रह्मचारी कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी साकत मरे संत सब जीवे राम रसायन रसना पीवे। कहो कबीर प्रभु कृपा की जय हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा। ऐसो अचरज देखो कबीर दद के पोले बिरोले नीर रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे नित उठ हासे ही गय मरे माता पैसा अमुहा जाए कुद कुद चरे रसा चल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड ले ले को चूगे नित पेड़ राम रमत मत प्रगति आई कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यो जल छोड़ बाहर पयो मीना पूरब जन्म हो तप का ही ना अब कहो राम कवन गत मोरी सजीले बनारस मत पई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत वर्ष तप किया काशी मरन पया मगहर की बासी काशी मगहर संबिचारी ओछी पगत कैसे उतरस पारी कहो गुर गज शिव सब को जाने मुआ कबीर रमत श्री राम। गौड़ी कबीर जी चोआ चंदन मर्दन अंगा सो तन जले काठ के संगा इस तन तन की कवन बढ़ाई तरन परे उर्वार न जाई। रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम एक खिन लेह ना हर को नाम हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर मरती बार कस बांध्यो चोर गुरमत रस रस हर गुण गावे रामे राम रमत सुख पावे। कृपा करके नाम दृढ़ाई हर हर बात सुगंध बसाई।

रुके। जम से उलट पए हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उल्ट पए हैं मीता, साकत उल्ट सुजन पए चीता। अब मोहे सर्व कुशल कर माने।

कोट उपाद उलट पाई सुख सह समाद आप पछाने आपे आप रोग न व्यापे तीनों ताप अब मन

जिन राम जानिया तिने पछानिया, ज्यो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुखमन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रवो जे बहुर न रवना, सो ध्यान करो जे बहुर न तरना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना, उल्टी गंगा जमुन मिलावो, बिन जल संगम मन में नावो, लोचा समसर इहो व्यवहारा, तत विचार क्या और विचारा, अब तेज बाय पृथ्वी अक

मोल। अब मोहे राम अपना कर जानिया, सह सुभाए मेरा मन मानिया। रहाओ ब्रह्मे कथ कथ अंत न पाया, राम भगत बैठे कर आया। कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज पागी। गौड़ी कबीर जी जिह मरने सब जगत तरासिया, सो मरना गुर शब्द प्रगासिया। अब कैसे मरो मरना।

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर।

कवन सो मुन जो मन मारे हैं, मन को मार कहो किस तारे रहाओ। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत न होई। कहो कबीर जो जाने पेओ, मन मधुसूदन त्रिभुवन देओ। गौरी कबीर जी, ओए जो दिसे अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे। कहो रे पंडित अंबर कास्यों लागा, बूजे बूजन हार सवागा रहाओ। सूरज चंद करहें उजियारा, सब में पसरे।

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया पावे। विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पे हो, ए मन लीन।

सो सम्राट निज पत है दाता, कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवरना कोई। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो, हर ठग जग को

कह कबीर ठग स्यों मन मानिया, गई ठगोरी ठग पहचानिया। अब मोको पै राजा राम सहाय, जन्म मरण कट परम गत पाई। रहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छड़ाए। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर उपकार, काड लीन सागर संसार। चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गोविंद बसे निता नित चीत। माया तपत बुझिया अंग्यार, मन संतोख नाम आधार। जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी। अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई। जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओपत होई। जन्मे सूतक मुए फुन सूतक।

कोई, कुशल कुशल करते जग बिन से कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा तिस आ गए जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे।

रात दिन सते नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुर तहां समाही। अगम अगोचर रहे निरंतर, गुर कृपा ते लहिए, कहो कबीर बल जाओ गुर अपने, सत्संगत मिल रही है। गौड़ी पाप पुन दोए बैल बिसाहे, पवन पूजी प्रगास्यो, तृष्णा गुण परी कट पीतर, इन विद टांड बिसाहो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बनजारा, रहाओ काम क्रोध दोए पै जगाती, मन तरंग बटवा।

पंडित गुणी सूर हम दाते एक हैं बड हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुरु मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने विकारा हर पद दृढ़ कर।

ए संसा मोको अनदिन व्यापै, मोको को ना कहे समझाई। रहाओ जह बर पंड पिंड तह नाही, रचन हार तह नाही, जोड़न हारो सदा अतीता, ए कहिए किस माही। जोड़ी जुड़े

सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा सुन गुफा में आसन बैसन कल्प विवर्जत पंथा मेरे राजन में बैरागी जोगी मर्त न सोग वियोगी रहाओ खंड ब्रह्मांड में सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा तारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे होए पसारी मन पवन दोए तूंबा करी है

गज नव गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बेहतर पाठ लगो अधिकाई गई बुनावन माहो कर छोड़े जाए जुलाहो रहाओ गजी न मिनिये तोल न तुलिये पाचन शेर अढ़ाई जो कर पाचन बेग न पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस ए बेला कत आई।

होए महोए जित कट नाम ना उपजै फूट मरे जन सोए सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोहे रहाओ साध मिले सिद्ध पाई।

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहे रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो विसारे रे हीरा लाल अमो

उनमत मान हिरियो मन माही, गुर का शब्द न तारियो रे। स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो, मदरस लैत बिकारियो रे। कर्म पाग संतन संगाने, कासट लोह उधारियो रे। तावत जोन जन्म प्रम थाके, अब दुख कर हम हारियो रे। कह कबीर गुर मिल।

राम नाम तन कर संचौने सो तन कथि न जावे। हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर यह सार तन कही है। जो सुख प्रभ गोविंद।

تم کر لاکھ کوٹ اسو ہستی، ہم کر ایک مراری گوڑی۔ ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुबद ना त्याग दयो، जो जो कर्म किए लालस्यों ते फिर ग्रह परयो، भगत बिन बिरथे जन्म गयो، साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहो रहाओ۔ ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुल्लत किन्हें ना कराओ लयो، तैसे प्रमत अनेक जून में फिर काल हयो۔ या तन जोबन अर सुतदारा पेखन को जो दयो، तिन ही माए अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो۔ औद अनल तन तिन को मंदर चौदिस

तोरा तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ। इस माटी में पवन समाया झूठा परपंच

दास रमैया गुण गाये जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए ज्यों संपै

पासा पूर्ण पीजे पग न खिसे हर दर्शन की आशा उड़ो न कागा कारे बेग मिली जय अपने राम प्यारे रहाओ कह कबीर जीवन पद कारण हर की

तो परम प्रकट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रंगते डरपे सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बहुरा अब तो जरे मरे।

नाम तेरा आधार मेरा जो फूल गई है नार, कह कबीर गुलाम कर का जी आए पावे मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन में प्रमत नंद बहु ठाकोरे, भगत हेत अवतार लियो है पाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दिस नाही तब यो नंद कहाँ थोरे। रहाओ संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे, कबीर को स्वामी।

दिखे रोग पै बंधन पागे मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मने ना अनाना। चंदन बास पे मन बासन त्याग कट्यो अभिमाना ना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है थाना ना। ते बड़ पाग बस्यो मन जाके कर्म प्रदान मथाना ना। काट सकत

अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें नाहे। जहाँ बोलते अक्षर आवा, जह अबोलते मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लख न कोई। अल्लह लहो तो क्या कहूं, कहूं ता को उपकार, बटक बीज में रव रहो जाको तीन लोक विस्तार। अल्लह लहंता पेद छे कछ कछ पायो पेद, उलट पेद मन भेदियो पायो अपंग अछेद।

लिख अर मेटे तहे न माना, ओंकार लखे जो कोई सोई लख मेटना ना होई। कक्का किरण कमल में पावा, सस बिगास संपट नहीं आवा। अर जे तहां कुसुम रस पावा, अकह कहां कह का समझावा। खखा एह खोड़ मन आवा, थोड़े छाड़ ना दह दितावा। खसमे जान खिमा कर रह, तो होए निखे ओ अखे।

जोत्रे भवन तन माहे समावा तो तत्ते तत मिलिया सच पावा थथा अथा था नहीं पावा ओ अथा एहो थिर ना रहावा थोड़े थल थानक आरंभे बिन ही थांबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सनहारा जस अदेख तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन की जय तद्दा अर्दे उर्द निवेरा अर्दे उर्दे मंज बसेरा अर्दे छाड़ उर्द जो आवा तो अर्दे उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रहे रतवाई निरखत निरखत

अब पौ पान परोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया पेद पूपत पहचानिया। मम्मा मूल गया मन माने, मरमी होए सो मन को जाने, मत कोई मन

निवारे, अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ए त्रिय ओ कंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना, जब ही होए तब है मन माना।

लक्ष्मी बरस्यों जो लियो लावे है, सोग मिटे सभी सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत।

अंग माया ब्रह्म रमे सब संग ना ओ बढ़े न कटता जाए अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे अनद मूल परम पद पावे साध संगत उपजे विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो काम क्रोध संग कबहो न बहो।

देख्या त्यों लोक का पियो, अचरज पया जीव ते सियो। तेरस तेरे अगम बखान, अर्द उर्द बिच सम पहचान, नीच ऊच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरार।

सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारिय शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै कौन हिरै अभिमान। बाहर उदक पखारिय कट पीतर विविध विकार, शुद्ध कमन पर होए वो सुच कुन।

गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पड़े रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोणिया।

हर त्या में तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पे जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो तिनका पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाम तुझी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझ जेवड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई तुझ आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करें सो होई तुझ आपे श्रेष्ठ सब उपाय जी तुझ आपे

सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाई तेरी तिलवड़ियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा।

हित रंग नाचो रख रख पाओ। सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ। नानक आखन वेरा वेर, हित रंग नाचो रख रख पैर। आसा मैला पैला पौन उपाय तरी सब तरती, जल अग्नि का बंद किया। अंधुले दे दिस मुंड कटाया, रावण मार क्या वड़ा भया। क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्वे पूर रहा लिवलाए। रहाओ जी उपाय जुगत।

आगै अंत न पायो ताका कंस छेद क्या वड़ा भया। रतन उपाए तरे खीर मथया होर पखलाए जे असी किया

पनत नानक सबना का फिर एको सोए, जिसनो नजर करे सा सुहागण होए, आसा मैला पहला ग्रियो बन समतर तय सुबाए, दुर्मत गत पई कीरत ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ, सतगुर सेव पाए निज थाओ, मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व ज्योत पूरन भगवान, रहाओ अधिक त्यास पेख बहु करे, दुख बिखिया सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा छोड़ ना।

जिंद तन मन हर पै आ गए जिंद झूठ विकार महा दुख दे देख वरन दिसे सबके जो उपजे सो आवे जाए नानक अस्थिर नाम रजाए आसा मेला पहला एको सर्वर कमल अनूप सदा विगासे पर

एहनस भगत करे लिवलाए, नानक तिन कह लागे पाए। आसा मैला पहला गुरमत साची हुज्जत दूर, बहुत सियाणप लागे तूर। लागी मैल मिटे सचनाए, गुर प्रसाद रहे लिवलाए। है हजूर हाजर अरदास, दुख सुख साच करते।

जो हर राते से जन परवान, तिनकी संगत परम निधान, हर बार जिन पाया तन नारी, हर स्यों राती शब्द विचारी, आप तरह संगत कुल तारे, सतगुरु सेव तत विचारे, हमरी जात पथ सच नाओ, कर्म तर्म संयम सत भाओ, नानक बस

एक तरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाई, इहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यों जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला तो किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरुमुख सच लही है, अकथ कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठसठ मज्जन।

आए। हर हर नाम भगत प्रे प्रीतम सुख सागर उर्धारे, भगत वछल जग जीवन दाता मत गुरमत हर निस्तारे। मन स्यो जूझ मरे प्रभ पाए, मनसा मने समाए, नानक कृपा कर।

हर पज मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ, अनत तरंग भगत हर रंगा, अंदिन सूचे हर गुण संगा, मिथ्या जन्म साकत संसारा, राम भगत जन रहे निरारा, सूची काया हर गुण गाया, आत्म चीन रहे लिवलाया, आद अपार।

ऐनक अंधले दीपक दे, पौजल डूबत चिंत करे, कहे सुने जो माने ना हो, हों बलिहार है ताके जाओ, नानक एक।

अंध जीव रस नाही, तन्नी पवन न वाजे, चरनी चले पजूता आ गए, बिन सेवा फल लागे, अखर बिरख बाग पोए।

कीमत पाए, हस्त दसी चौ भेद न पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया, आसा मैला पहला, सेवक दास भगत जन सोई, ठाकुर का दास गुरुमुख।

मन्ने हुकुम सो प्रगट जाए, सत निशाने ठाक न पाए। पंडित पढ़े वखाने वेद, अंतर वस्त न जाने तेद, गुरबिन सो

चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी जन पंच राशि ता तीर्थ वासी कुंगुरु वाजे जी मन लागे तो जम कहा करे मोसो आ गए रहाओ आस निरासी तो सन्यासी जहाँ जत जोगी ता काया पोगी दया दिगंबर दी बिचारी आप मरे अवरा ने मारी एक

तुम्हारी माई, हर दर्शन बिन रह न जाई राव, प्रेम न चाखिया मेरी तिस न बुझानी, दया सो जोबन तन पछतानी।

सिर जानिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे ता कामन कंते मन भावे कहत नानक पै पाव का करे सिदार सधी से जैर।

है कोई जाति स्थावे बख्शे सोई गुर प्रसादी दुर्मत कोई जय देखा तह को सोई कहत नानक ऐसी मत आवे ताको सच्चे सच समावे आसा मैला पहला दुख दे तित सर्वरण भई ले निवासा पानी पावक तिने किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मन एक न चेतस मूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हो जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म तया प्रणवत नानक तिनकी।

एक जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए रहाओ विश्वे चस्या करिया पैरा सिप्पी वारी माओ भया सूरजे को रुत अनेक नानक करते के केते वेश इको अंकार सतगुरु प्रसाद आशा करती जा मैला पहला लख

लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जा पत लेखे ना पवे ताजी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार एनस हृदय जे वसे नानक नदरी पार आसा मेला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया चूका जमस्यो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मरिया कर एकटे एक रसीले पाए रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाछे इहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राहो सच्चा नावन कासी है जा एनस लागे पाओ इक लोकी होर छमिछरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीश का कभू निकूटस नाहे।

कर कर पगवे पेख पए, तौ कारण साहिबा रंग रते, तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े, छोड़ विलायत देश गए, पीर पैगंबर सालिक साधक छोड़ी दुनिया खाए पए, साध सहज सुख रस कष्ट जियले, काकड़ छोड़े।

कैसी आसा कर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पीतर पंच गुप्त मनवासे फिर न रहे जैसे पवे उदासे मन मेरा दयाल सेती फिर न रहे लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ फूल माला गल पहरोगी हारो मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिंगारो पंच सखी हम एक पतारो पेड़ लगी है जीड़ा चालन हारो पंच सखी मिल उदन करे हार साहो कजूता कणवत नानक ले।

सिगार कामन तन तहरे रावे लाल प्यारी। लाल बहु गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंद्री पहरे परमेश्वर पटले तीरज कड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेजे आवे ता नानक भोग करे। आसा मैला पहला चीता होवे करे कराया तिस क्या कही है भाई। जो किछ करना सो कर रहया कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला कुद पावे नानक ताको मिले वडाई। साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बाउड हुकुम न होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट न सके कोई। जे क्यों दरगे बहुता बोले नौ पवे बजारी सतरंज बाजी पक्के नहीं कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर।

आपके मां हंडावो, जो किच करे पला कर मानो, सहज जोग निध पावो। बाबा जुगता जियो जुग है जुग जोगी, परम तंत में जोगं, अमृत नाम निरंजन पाया, ज्ञान काया रस कोगं। रहाओ शिव नगरी में आसन बैठो, कल्प त्यागी बादं, सिंगी शब्द सदा तुम सो है, एन स्तूर नादं। पक विचार ज्ञान मत दंडा, वर्तमान विपूतं, हर कीरत रह रास हमारी, गुरुमुख पंथ अतीतं। सगली जोत हमारी समया, नाना वर्ण अनेकं, कहो नानक सुन परथर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। ऐसा मेला पहला, गुर कर ज्ञान ध्यान कर पावे, कर करनी कस पाई है,

परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त वैकुंठ करे क्या सिख तीरथा सद बैरागी जुए जन्म न हारे कहो नानक सुन कर कर जोगी खीवा अमृत धारे आशा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने की दर्द न आया करता तू सगना का सोई जे थकता सकते को मारे काम रोस न होई रहा सकता सिंह मारे पै वगै खसने सा पुरसा।

गुर कै दर्शन सदा सुख होए। गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवे परवार साधार। निगुरे को गत पाई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाई। गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुख तां को लगे नकीर। जम काल किस नीड़ ना आवे, नानक गुरमुख साथ।

जो मन गाते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुगाए रहाओ, शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभु सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर, आखण आखे बके सब कोए, आपे बक्स मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार, आसा मैला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया।

पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत्सर हर जल नाया, दुर्मत महल सब दुर्त गवाया, आसा महला तीजा, मन मरे मर मरण बिगाड़े, दूजे पाए आत्म संगारे, मेरा मेरा कर कर विगूता, आत्म ना चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, उस तक निंदा गुर समझन आई, इस जुग में लहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाए, मन चंचल बहु चोटा खाए, एकठो छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाए, गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल वाणी निज कर वासा।

तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हिरदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई। सो लाला जीवत मरे, सोग हरक दोय सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदरे रहाओ, करणी कार तुरो फुरमाई, बिन शब्दै को थाए न पाई, करणी कीरत नाम वसाए, आपे देवे टिल न पाए। मन मुख परम पुले संसार, बिन राशि कूड़ा करे वकार।

दुहागणी का मन देख सिंगार पुत्र कलत तन माया चितलाए चूत मोह पाखंड विकार राव सदा सुहागन जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अंदिन हर रावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागन साथी।

अंतर निर्मल अमृत सरनाए, सदा सूचे साथ समाए। हर सब वेखे सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर, जहां जाओ तह वेखा सोए, गुर बिन दाता वरना कोए। गुर सागर पूरा पंडार, उत्तम रतन जवाहर अपार, गुर प्रसादी देवन हार, नानक बख्शे बख्शन हार। आसा मैला तीजा, गुर सायर सतगुर।

गुर प्रसाद अज्ञान विनाश है, अंधन जागे वेखे सच सोए रहाओ, मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुर ते सो जी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाने, आवन जान रहे फिर नाम समाने, जम्मा मरना है संसार, मन मुख अचेत माया मोह गुबार, पर निंदा बहुकूर कमावे, विष्टा का कीड़ा विष्टा माए समावे, सत संगत मिल सब सो जी पाए, गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए, पाणा मन्ने सदा सुख होए, नानक सच समावे सोए, आशा मेला तीजा पंच पदे, शब्द मरे तिस सदा आनंद, सतगुर पेटे गुर गोविंद, ना फिर मरे न आवे जाए, पूरे गुर ते साच समाए, जिनको नाम लिखिया तुरलेख, ते अंदिन नाम सदा त्यावे, गुर पूरे ते भगत विशेख, रहाओ जिनको हर प्रबले मिलाए, तिनकी गहन गत कहीं न जाए, पूरे सतगुर दित्ती वड्याई, उत्तम पदवी हर नाम समाई, जो किछ करे सो आपे आप, एक कड़ी में थाप थाप, कह कह कहना आप सुनाए, जे सो काले थाए न पाए, जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए, जहाँ शब्द वसे तहाँ दुख जाए, ज्ञान रतन साचे सह सुनाए, नावे जेवड होर पर नाही कोए, जिसनो बक्से साचा सोए, पूरे शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए, आसा मेला तीजा नृत करे बहु वाजे बजाए, यो मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए, अंतर लोभ परम अनल वाओ, दीवा बले न सो जी पाए, गुरमुख भगत कट चानन होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए रहाओ, गुरमुख नृत हर लागे पाओ, पूरे ताल विच्चों आप गवाए, मेरा प्रभु साचा आपे जान, गुर के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण, गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार, गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत नृत दुख होए, एहा भगत जन जीवत मरे, गुर प्रसादी पव जल तरे, गुर के वचन भगत खाए पाए, हर जीव आप वसे मन आए, हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, नेचल भगत हर स्यों चित लाए, भगत रते तिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए, आसा कर अठवा काफी मेला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर के पाने सतगुर मिले सत सोजी होई, गुर प्रसादी मन वसे हर बूझे सोई, मैं सहुदाता एक है और नाही कोई, गुर कृपा ते मन वसे ता सदा सुख होई, रहाओ इस जुग में निरपो हर नाम है, पाये गुर विचार, बिन नामे जम के वस है, मन मुख अंध द्वार, हर के पाने जन सेवा करे, बूझे सच सोई, हर के पाने सालाही है, पाने मने सुख होई, हर के पाने जन्म पदार्थ पाया, मत उत्तम होई, नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई, आसा महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, तू करता सच्चार में दासाई,

विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सब ही आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिंदु जावर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए। इको ओंकार सतगुर प्रसाद, रागा साथ हर दूजा मेला चौथा, किस ही तरह किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तरह किया कुरुम सके नाल जवाई, किस ही तरह किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई, हमारा तरह हर व्या समाई, हम हर स्यो तरह किया मेरी हर केक, मैं हर बिन पक तरा और न कोई, हूँ हर गुण गावा असंख अनेक, रहाओ जिन स्यो तड़े करें से जाहे, झूठ कड़े कर पछोताहे, फिर न रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यो तरा किया जिसका कोई समर्थ ना है, ये सब कड़े माया मोह पसारी, माया को लूजे गवारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तरह जे हलत पलत सब सवारी, कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तरह जिन ए तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे, पराया छिद्र अटकले अपना अंकार वधावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तरह धर्म सब श्रेष्ठ जिने आवे, आसा मेला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर अलख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना, एको रव रया कट अंतर मुख बोलो, गुर अमृत बहना रहाओ, मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड़ पाग, दूजे पाए पवे बिख माया, पाग हीन नहीं सतगुर पाया, अमृत हर रस हर आप पियाया, गुर पूरे नानक हर पाया, गुर पूरे नानक हर पाया, आसा मेला चौथा।

जाए वडे पाग गुरु मुखर पाए नाम हीन कालख मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया वड़ा वड़ा हर पाप कर पाया नानक गुरमुख नाम दिवाया आसा मेला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरमुख हर गुण आंख वखाणी जप जप नाम मन पया आनंदा सत सत सत गुरु नाम दृढ़ाया रस गाए गुण परमा।

शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मत कट कडिए। आसा मैला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वडे पाग गुरमुख हर पावे। नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं तर नहीं काई। नाम रविया सब सांस ग्यासा, रहाओ नाम में सुरत सुनी मन भाई। जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई, नाम हीन गए मूड नंगा। पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उठापे, नानक नाम देवे हर आपे। आसा मेला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस रसाई। हर हर नाम जप अनत तरंगा, जप जप नाम गुरमुख सालाही। मारिया काल जम कंकर पुयंगा, रहाओ हर हर गुर में भगत रखाई। गुर सुखा सिख देवे मेरे भाई, हो मैं कर्म किस विद नहीं जाने। जो कुंचर नाए खाक सिर छाने, जे वड पाग होवे वड ऊंचे, नानक नाम जपे सच सूचे। आसा मेला चौथा, हर हर नाम की मन भूख लगाई। नाम सुने मन तृप्त है मेरे भाई, नाम जपो मेरे गुरु सिख मीता। नाम जपो नाम में सुख पावो, नाम रखो गुरमुख मन चीता। रहाओ नामो नाम सुनी मन सरसा, नाम लाहा ले गुरमुख बिकता। नाम बिना पुष्टि मोह अंधा, सब ने फल कर्म किए दुख तंदा। हर हर हर जस जपे वड पागे, नानक गुरमुख नाम लिव लागे।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यो मनुआ हर रंग पेन। जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वर्त है तिस आगे हम आदेश राओ। गावे राग पास बो बोले एहो मनुआ खेले खेल जो वे कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए चरबेल। पाया नगर में कर्म हर बोवो हर जा में हरिया खेत मनुआ सिर बैल मन जोवो हर सिंचो गुरमत जेत। जोगी जंगम सृष्ट सब तुमरी जो देहो मति तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लागो मनुआ पेल। आसा मैला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हों कब लग समारो नाम। मेरे मन ऐसी पगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा। कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे कब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाव पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे तब लग मेरा मन राम सुमारे। कब को लोगन को पति आवे लोक पति ने ना पत होए जन नानक हर हृदय सद त्यावो ता जय जय करे सब कोए। आसा मैला चौथा सत संगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे पाई हम जन के तो मैं पाए रहाओ। हर हर नाम जपो मन मेरे अन दिन हर लिव लाए जो इच्छो सोई फल पाओ फिर भूख न लागे आए। आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए से संत पले तुद पावे जिनकी पत पावे खाए। नानक आत्मा राजे हर गुण जो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हर अपने गुण गाहक वनज ले जाए।

हर अठवां के काफी महला चौथा आया मरण पुरा हो मैं रोई है गुरमुख नाम ते आए अस्थिर होई है गुर पूरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार सब सुनाने आ रहा पूरब लिखे।

जीवन मरण सुख होए जिना गुर पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। आसा मैला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुर प्रसादी बुझ सच समाया। जिन तुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया, दर्श कैश्चार मैल बुलाया रहा। अंतर नाम निधान गुरमुख पाइए, अंजन नाम से आए हर गुण गाइए। अंतर वक्त अनेक मनमुख नहीं पाइए, हूँ मैं गर्भ है गर्भ आप खुआइए। नानक आपे आप खुआइए, गुरमत मन पर गास सच्चा।

सतगुरु प्रसाद। हम कौन दिन हर नाम कीर्तन करो, सतगुरु मोको हर नाम बताया। हम हर दिन खिन पल रह ना सको रहा, हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन। हम हर दिन रह न सको हम एक खिन, जैसे हंस सरवर बिन रह न सके तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। किन्हू प्रीत लाई दूजा पाओ रिज तार, किन्हू प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद, नानक सिमरत हर हर भगवान। आसावरी मैला चौथा, माई मेरो प्रीतम राम बताओ री माई। हम हर बिन खिन पल रह न सको, जैसे करहल बेल दी जाई राव। हमरा मन बैराग बिरकत कहो, हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह न सके तैसे मोए हर दिन रह न जाई। राज करण जगदी सुर प्यारे, मोए सरदा पूर हर गुसाई। जन नानक के मन अंध होत है, हर दर्शन निमक दिखा।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस पौ बहुत दिखाया, पाई मीत कुटुम्ब देख विवादे, हम आई वसगत गुरु प्रसादे, ऐसा देख विमोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा, बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे, रहाओ एक फिरे उदासी तिन काम व्यापे, एक संचय गिरही तिन हुए नापे, एक सती कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुरु पावे, तप करते तपसी फूलाए, पंडित मोहे लोग सुनाए, त्रैगुण मोहे मोहा आकाश, हम सतगुरु राखे दे कर हाथ, ज्ञानी की होए वर्ती दास, कर जोड़े सेवा करे अरदास, जो तू कहे सो कार कमावा, जन नानक गुरुमुख नेड़ ना आवा, आसा मैला पंजवा, ससू ते पिरकी नीवाक, देर जिठानी मोई दुख संताप।

प्रीत दुखिया त्यागी लोगारीत त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने तुरिया गुण मिल साध पछाने सहज गुफा में आसन बांधया ज्योत स्वरूप अनाद वाजया महा आनंद गुर शब्द विचार त्रै सो राति तन सुहागना।

चार जित गृह वसै सो गृह सो बावंता गुरमुख पाई किन विरले जनता सो करणी कामन गुरमिल हम पाई जज काज परथाए सुहाई रहाओ जिचर वसी पिता के साथ टिचर कंक बहु फिरे उदास कर सेवा सतपुरुष मनाया गुर आनी कर मैं तां सर्व सुख पाया बत्ती सुलखणी सत संतत पूत आज्ञाकारी सुगड़ स्वरूप इच पूरे मन कंत स्वामी सगल संतोखी देर जेठानी सब परवार माए श्रेष्ठ मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ तन सो गृह जित प्रगति आए जन नानक सुखे सुख विहाए।

तीरथ न छोड़े जोग सन्यास, पढ़ थाके सिमरत वेद व्यास। जै बैसो तै नाले बैसे, सगल कौन में सबल प्रवेश है। होछी शरण पया रह न पाई, कौमी ताहो कह कह जाई। सुनो उपदेश सतगुर पे आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। निज कर वस्या गुण गाए अनंता, प्रभ मिलियो नानक कहे अचिंता। पर मेरा ए नायक हमारी, ए आमर हम गुर किए दरबारी।

नानक दास तेरी शरण आई, प्रभ राखी पैज वजी वधाई। आसा मैला पंजवा परदेश चाग सौदे को आया, वक्त अनूप सुनी लभाया, गुण रास बन पल्ले आनी, देख रतन यो मन।

अमोल रत्न अमोलारास विष्ट सुभाई पाया मीत सौदा मिलिया ने चल चीत पौ नहीं तस्कर पौ न पानी सहज विहाजी सहज ले जानी हट के खटे दुख नहीं पाया सही सलामत कर ले आया मिलिया लाहा पै आनंद तन सहा पूरे बक्सिंद सौदा गुरमुख किने।

तावत रहे एक एक बूझिया, आए बसे अब ने चल खाए, जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अघाए, जन्म दोख परे मेरे पाछे, अब फकरे ने चल साधु पाए, शायद तुन गावे मंगल मनुआ, अब तांतो फुनकाल न खाए, करण कारण समर्थ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय, नाम तेरा जब जीवे नानक, पोत पोत मेरे संग सहाय, आशा मैला पंजवा, अरड़ावे बिललावे निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया, अपना कीता पावे निंदक रहाओ, जे कोई उसका संगी होवे, नाले ले सिदावे, अनहोंदा अजगर पार उठाए, निंदक अग्नि माहे जलावे, परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीते, सो नानक आप सुनावे, भगत जना को सदा आनंद है, हर कीर्तन गाए बिकसावे, आसा मेला पंजवा, जो मैं कियो सगल सिगारा, तो भी मेरा मन ना पतियारा,

बस्तर भी पोखन सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कितने न लेखे, पथ शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल, प्रभु का वासा सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार, रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक अर बहुत फुरमाइस, मन नहीं त्रापे तृष्णा ना जायस, बिन मिल बे यो दिन ना बिहावे, मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोजत खोजत सुनी ए सोए, साध संगत बिन तरयो न कोए, जिस मस्तक पाग तिन सब गुरु पाया, पूरी आशा मन तृप्त आया, प्रभु मिलिया ता चूकी डंजा, नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला पंजवा पंच पदे

तुझ पर दाम, सील बिगाड़ो तेरा काम। जा को दृष्ट मया हर राय, साबंदी ते ले चढ़ाए, साध संग मिल हर रस पाया, कहो नानक सफल ओ काया। सब रूप सब सुख बने सुहागन।

बिचता अस्त्र रटक परे ते चाम इस ऊपर ले राख्यो गुमान एक वस्त बूझे ता हो वै पाक बिन बूझे तू सदा न पाक कहो नानक गुर को कुर्बान जिससे पाये हर पुरुष सुजान आस्था महला पंजवा एक तुके चौपदे।

सब अंत न जाने पंच दूत मिल फिर हो विछोड़ी क्रम क्रम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया।

दूद जन बकरा मोको कहां डवाई रहाओ हर मेरी ओट में हर कातान हर मेरा सखा मन माहे दीवान हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो गुरमुख तन छट्टी हर मेरा साहो गुर कृपा से ए मत आवे जन नानक हर कै अंक समावे आसा मैला पंजवा प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई सतगुर सेव सब फल पाई मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा मनसा का दाता सब सुख निधान है अमृत सर सब ही पर पूरा रहाओ चरण कमल हृदय अंतर धारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे संत

तिन हर तन पाया जिस कोग लिखे का लेना जन नानक अंतवार नाम गहना आसा मेला कन्या जैसे किसान बोवे किसानी काची पाकी बाड परानी जो जन मैं सो जानो मुआ गोविंद भगत अस्थिर।

कर में वस्त बाहर उठ जाता, सुनी न जाई सच अमृत का था, वार करते चूठी लग जाता रहा, वजो साहिब का सेव बिरानी, कैसे गुने अच्छा दियो प्राणी, तिस्यो लोक जो सद ही संगी, कामना आवे सो फिर मंगी, कहो नानक प्रभ दीन दयाला, जो पावे त्यों कर कृतपाला, आसा मेला पंजवा, जी प्राण तन हर को नाम, इहा उहा उन संकाम, बिन हर नाम अवर सब छोरा, कृत अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ, भगत पंडार गुरबाणी लाल, दावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल सो लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान, नानक को गुर दीक्षा दीन, प्रभ अविनाशी कट कट चीन, आसा महला पंजवा, अनद विनोद परे पुर तारिया, अपना कार्य आप संवारिया।

साध संगत निर्बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरदीनो दान आसा मेला पन्नवा बुद्ध प्रगास तई मत पूरी तांते बिनसी गुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई ले बूढ़त कोर अंध कूप में निक्षो मेरे पाई रे राव महा अगा अगन का सागर गुरबोहित तारे रत्नागर दुतर अंध बिखम ए माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जात पाप कछ उक्त न मोरी गुरु नानक शरणागत तोरी आसा मेला पंजवा तिप दे दूजा हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन में लह जाता हर रस के माते मन सदा आनंद।

हर साधु हर समाए लाख करोरी मिले न के जिसे प्राप्त तिस ही दे नानक चाक पे बिस्माद नानक गुरते आया साद ईत ऊत कस छोड़ न जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा मेला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटके गुरमत अपनी धारी होए निमाणी सेव कमावे ता प्रीतम होवे।

गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अगर काज तेरे किते न काम, मिल सौद संगत भज केवल नाम, संग जाम लाग और जल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो, जब तब संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जाने हर राया, कहु नानक हम नीच कर्मा, शरण करे की राग।

उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अगर सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्नवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मानिया पाप मुआबिक खाए प्रभाओ पाला ताओ कछु न व्यापे राम नाम गुण गाए बाकी को चित कछु न लागे चरण कमल शरणाए संत प्रसाद पै कृपाला होए आप सहाए गुण निधान नित गावे नानक सहसा दुख मिटाए आसा महला पंजवा।

मिल संग पयो मन निर्मल गुरपुर लेखिन में तारे रहाओ सबकी रेन होए रह मनुआ सगले दिशे मीत प्यारे फल मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन एक नाम त्याए बहुत उधारे गैर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किस पारावारे तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक त्याय त्याय प्रभु को नमस्कारे आसा मेला पन्यवा तू बेअंत अविगत अगोचर एहो सब तेरा आकार क्या हम जंत करे चतुराई जा सब किछ तुझे मझार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार।

आधार अर्ध करे सास सास संवारे ना पोहे अगनार पर कौन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी हृदय अंतर।

राज मिलक जो बन गृह शोभा रूप वंत जो आनी बहुत दर्ब हस्ती अर कोड़े लाल लाख बयानी आगे दर्घ है कामना आवे छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाये उठत बैठत सोवत जागत सदा।

एक दिहाड़े कर्म कर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने उपदेश करे आप ना कमावे सत शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी जो अस्ति खाक छाने संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एवं पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुरमिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद प्रम में सोई सगल जगत कंद अंध को जागे हर जन महामोहनी मगन प्रिय प्रीत प्राण को त्यागे विरला चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु नानक साधु।

को किस पे करे पुकारा। निंदक की गत कतहु नाही खसमे एवे पाना, जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुखमाना। संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई, कहु नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई। आसा मैला पन्ना बार तोए अंतर मन मैला, दोए ठौर अपने कोए इहां काम क्रोध मोह व्याप्या, आगे मुसमुस रोए गोविंद भजन की मत है होरा। गर्मी मारी साथ न मरी नाम ना सुने डोरा रहाओ, माया की किरत छोड़ दवाई भक्ति सार न जाने, वेद शास्त्र को तर्कन लागा।

छुपाया, कूड कपट वंश निमुनिया दाला, बिरस गया तत्काले सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले आसा मैला पन्नवा। उदम करत हो गए मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जना ले वसगत राखे मन में एक अंकारे, तेरा जन नृत्य करे गुण गावे, रबाब पखा

करते सगल सुनावे। कर संग साधु चरण पखारे, संत पूर तन लावे, मन तन अर्थ तरे गुर आगे, सत पदार्थ पावे। जो जो सुने पे खेलाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी नृत नरक निवारे, नानक गुरुमुख जागे। आसा मैला पंजवा।

रे आज के बस गुर कीनो के हर कुकर तिने लगाई रे रहाओ बाज फूनिया छपरा थामिया निकरिया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा अचरज लाया रे दादी दाद न पहुंचन हारा चूपी निर्नो पाया रे माल गुली चै बैठी ले मृतक नैन दिखालन ताया रे।

किया पैखियो। सुख निधान नाम प्रभु तुमरा इहो अविनाशी मंत्र लियो, कर कृपा मुझ सतगुरु दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। तन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मेल लियो, तन सो कल युग साध संकीर्तन गाये।

महा कोरते बां पकड़ गुर काट लिए, निरपो पे सगल पौ मिटिया राखे राखन हारे, ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कारज सगल सवारे, गुण विधान साहिब मन मेला।

नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ ना जाने मेरा आसा मेला पंजवा। कर कृपा प्रभ अंतर जामी, साध संग हर पाये, खोल किवार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म ना आये। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हरोरे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ताके संग तरोरे। राव महा उद्यान पावक सागर भय, हरख सोग में बसना, सतगुर पेट पया मन निर्मल, जप अमृत हर रसना। तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधिया, गुर प्रसाद पय जन मुक्ते, हर हर नाम आराध्या। राख लिए प्रभ राखनहार, जो प्रभ अपने पाने, जियो पिंड सब कुमरा दाते, नानक सब कुर्बाने। आसा महला पंजवा, मोह मलन नींद के छुट

काम क्रोध अहंकार दाखरो संयम कौन छुट्यो रे सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो पवन लुट्यो रे दावा अग्न बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहो रे ऐसो समरथ वरण न साको ताकि उपमा जात न कहो रे काजर कोट में पई नकारी निर्मल बरन बन्योरी महामंत्र गुर हृदय बस्यो अचरज नाम सुन्योरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाई इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आशा हर सतमा।

नानक जन गुरु पूरा पाया, अंतर बार एक दिखाया। आशा मैला पंजवा, पावत रलिया जो बन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओढ़लिया, सेज सुख लिया मन गर्बलिया, रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर पगत बिना ले तरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनिक स्त्रिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया चलिया बिकार बिखलिया, शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया। आसा मेला पंजवा, एक बगीचा पेड़ कन करिया, अमृत नाम कहा मैं फलिया, ऐसा करो विचार ज्ञानी, जाते पाये पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे, रहाओ सिंचन हारे एक है माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पत आन जड़ाई, सगली फूली निफल नाकाई, अमृत फल नाम जिन गुरते पाया, नानक दास तरी तिन।

जिनकू जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आसा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ता हो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुन विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार।

तह दुख डेरा हुक्म बूझै सोई परवान साथ सब जाता निशान गुरु पूरे हर नाम दृढ़ाया पंत नानक मेरे मन सुख पाया आसा मैला पंजवा जहां पठावो तह तह जाई जो तुम देहो।

सतगुर का सत शब्द कमाओ, फिर कर बैठे प्रभु अपना पावो। पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। हर हर तंत मंत गुर दीना, इन सुख नानक अनदिन चीना। आसा मेला तन्यवा, जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत ओह चौकुंत माने। दर्शन मांगो दे प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे। राव जाके निकट न आवे कोई, सगल सृष्ट पुआ के चरण मल धोई। जो प्राणी काहु ना आवत काम, संत प्रसाद का को जपिए नाम। साध संग मन सोवत जागे, अब प्रभु नानक नीचे लागे। आसा मेला धन्यवाद, एको एकी नैन निहारो, सदा सदा हर नाम समारो।

सगल सामग्री जाके सूत पर होई कट कट अंतर रहया सोई ओ पत पर लो खिन में करता आप अलेपा निर्गुण रहता कर्ण करावन अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी आशा मेला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दुर्लभ देह जीती नहीं हारे किलबिक बिना से दुख दर्द दूर।

से तय मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाओ। बिन सो मन का मूर्ख टीठा प्रभु का पाना लागा मीठा। गुर पूरे के चरण गए कोट जन्म के पाप लहे रतन जन्म इव सफल भया कहु नानक प्रभु करी मया आसा महला पंजवा। सत गुर अपना सद सदा समारे गुर के चरण के संग चारे जागरे मन जागन हारे बिन हर अवर नाम सुकामा झूठा मोह मिथ्या पसारे रहाओ। गुर की बाणी स्यों रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए गुर बिन दूजा नाही थाओ गुर दाता गुर देवे नाओ। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप आठ पैर नानक गुर जाप आसा मेला पंजवा। आपे पेड़ विस्थारी साख अपनी खेती आपे राख जत कत पे कुए कै ओही कट कट अंतर आपे सोई रहाओ। आपे सूर किरण विस्थार सोई गुप्त सोई आकार सर गुण निर्गुण था पैनाओ दो मिल एक है तीनो ठाओ। कहो नानक गुरु परम को खोया अनुज रूप सब नैन अलोया आसा महला पंजवा।

रहाओ। मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी। जप तप संयम कर्म न सादा नाम प्रभु का मने अरादा। किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी। आसा महला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन दया।

तुत कतै न डोले, कहु नानक जो राचे नाए, हर माला पाके संग जाए। आसा महला पंजवा, जिसका सब किछ तिसका होए, तिस जन लेप न व्यापे कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जो किछ करे सोई पल जन के, अत निर्मल दास की जुगता, रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहा व्यापे माया, नाम निधान जाके मन माहे, तिसको चिंता सुखने नाहे, कहो नानक गुरु पूरा पाया, परम मोह सगल बिन साया।

मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुर मंता, सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ परोए, कहो नानक।

जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ, मोह परम बहु जोन को आया, अस्थिर भगत हर चरण से आया, बंधन अंग कूप गृह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहु नानक जो प्रभु शरण आये, इहा सुख आगे गत पाए। आसा मेला पंजवा, तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे।

तू मेरी गत पट तू परवान, तू समरथ मैं तेरा तान, अनदिन जपो नाम गुण खास, नानक की प्रभु पै अरदास, आसा मैला तन्यवा। रोवन हारे झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवे को हस हस पावन, रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँचना मुका फिर पछताना, त्रयो गुण में वर्त संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म का।

निसारे हो खिसर गयो फूम पर डारे हो साध मोए लादी अंकारे दोष नाही प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे नानक मेली सिरजन हारे आशा मेला पंजवा चरण कमल की आस प्यारे जम कंकर नस गए विचारे तू चित आवे तेरी माया सिमरत नाम सगल रोग खया रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को पहुँच न साके जन तेरे को दर्स तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद बसे बैरागी नानक की अरदास सुनी जय केवल नाम हृदय में दी जय आशा मेला पंजवा मन तृप्ता नो मिटे जंजाल प्रभ अपना होया कृपाल संत प्रसाद कली बनी जाके गृह सब किछ है पूरन सो पेटिया निरपैतनी राव नाम दृढ़ाया साध कृपाल।

तो जन पूरन रहे अधाई, कछु न थोरा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को, रहाओ जाका तनी अगम गुसाई।

जा को दया करो मेरे स्वामी, कहो नानक नाही तिन कामी। आशा महला पंजवा, जो मैं अपना सतगुरु त्याया, तब मेरे मन महा सुख पाया, मिट गई गणक बिना सो संसार, नाम रते जन पे भगवंता रहाओ। जो मैं अपना साहिब चीत, पाओ पाओ मिटियो मेरे मीत, जो मैं ओट गई प्रभ तेरी, पा पूरन होई मनसा मेरी, देख चलत मन पे दिलासा, नानक दास तेरा परवासा। आसा महला पंजवा, अन दिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई, सोचत साचत रैन बिहानी, अनक रंग माया के चितवत, कबू न सिमरे सारंग पानी रहाओ। द्रुम की छाया नहीं चल गृह बांधिया, काल के फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया, सोथान मूड नहीं चल कर पाया, साध संग जप्यो हर राय, नानक जीवे हर गुण गाए। आसा मेला पंजवा, दो पुके नावा, उनके संग तू करती केल, उनके संग हम तुम संग मेल, उनके संग तुम सब को लोरे।

अरे उनके संग तू रखी पलोल, उस बिना तू छुटकी रोल। उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तुम साख जगत। उनके संग तेरी सब विद फाटी, उस बिना तू हुई है माटी। ओ बैरागी मरे न जाए, हुक्मे बादाकार कमाए। जोड़ बिछोड़े नाम खाप, अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा, ना ओ मरता ना

तृष्णा जा ओ निर्मल का हम जतना हम किछ नाही एक ओही आगे पाछे को सोई नानक गुरु खोए परम पंगा हम ओए मिल होए इकरंगा आसा महला पंजवा अनेक पांच कर सेवा करिए जियो प्राण तन आगे तरिए पानी पखा करो तज अभिमान अनेक बार जाइए कुर्बान सरई सुहागण जो प्रभु पाई तिसके संग मिलो मेरी माई रहाओ दासन दासी की पनहार उनकी रेण बसे जी नाल माथे पाग तो पावो संग मिले स्वामी अपने रंग जाप ताप देवो सब ने मां कर्म कर्म अर्पो सब हो मां गर्भ मोह तज हो वो देन उनके संग देखो प्रभ नैन निमुख निमुख एही आ

चले संगारे, आपको कोई मिले न फूले, जिस कृपाल तिस साध संकूल है, कहो नानक तेरे कुर्बान, संत ओट पर तेरा तान, आसा महला पंजवा, उपत होए कह राज समाया, कर कर अनर्थ विहाजी माया।

जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन को मोह है, बाट काट।

पुत्र कलत्र गृह सगल सामग्री सब मिथ्या असनाहा। रे मन क्या करें है हा, दृष्ट देख जैसे हर चंद्र।

आवग आज्ञा पार ब्रह्म की उठ जासी मोहत चसाहा। रे मन लेखे चाले लेखे बैसे लेखे लेंदा साहा। सदा कीरत कर नानक हर की।

पुरख बिराते हैं बहुर बहुर जन्मा दे जो पयो कृपाल दीन दुख पंजन तो गुर मिल सब सुख लादे कहो नानक।

जन्म मरण दुख लाथे रहाओ दूजा पासा मेला पंजवा। निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, करी मोहत रंग माने फिर बोर बोर पछतावे। अंधे चेत हर हर राया तेरा सोदन नेड़े आया, रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो आ

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वार।

मोकुटम बिखे रसमासे मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणिक गज मोतियन।

चरणन सरहन संतन बंदन सुखो सुख पाहे। नानक तप्त हरि मिले प्रेम पिरी आशा महला पंजवा। गुरे दिखायो लोए ना रहाओ ईते ऊते कट कट कट कट तू ही मोहना। कारण करना कारण करना एक है सोहना। संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोएना। आशा मेला पंजवा। हर हर नाम अमोला ओ सहज सुहेला रहाओ। संग सहाई छोड़ न जाए ओह अगह अतोला। प्रीतम पाई बाप मोरो माई भगतन का ओला। अलख लखाया गुरते पाया नानक एहो हर का चोला। आसा मेला पंजवा। अपनी भगत निवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ। नाम पदार्थ

गुण रस रस गावे। एक आसा दर्श प्यासा आन न पावे, दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे। आसा महला पंजवा। एक सिमर मन मानी रहाओ, नाम ते आवो हृदय बसावो, तिस बिन को नाही, प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये, सगले दुख जाही, जीवन को दाता पुरख विदाता, नानक कट कट आही। आसा महला पंजवा। हर बिसरत सो

हैं, हर प्रेम भगत हर प्रीत रचे, प्रभु संग मिली जय, इव मन दी जय।

जाए, प्रभु तुमरे दर्श बिन सुख नाही, वर्त नेम संयम कर थाके, नानक साध शरण प्रभु संग वसै। आसा मैला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। विकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे, पकर केस जम उठारियो तद ही कर जावे, लोभ बिखिया बिखे लागे हिरवित चित दुखाही, खिन पंगुना के मान माते असुर जाने नाही रहाओ। वेद शास्त्र जन पुकारे सुने नाही डोरा, निपट बाजी हार मुका पछतायो मन पोरा, दान सगल गैर वजे परया दीवान लेखे ना परया, जिह कारज रहे ओला सोए कामना करया, ऐसो जग मोहे गुर दिखायो तो एक कीरत गाया, मान तान तज

मेरा मन बहुत प्यास लागी, हर दर्शनो दिखावो मोहे तुम बतावो, नानक दीन शरण आए गल लाए आसा मैला पंजवा। तो बिखमगार तो रह आस प्यास तो मोह परम ही ते हो रह राव, काम क्रोध लोभ मान ए ब्याद छोरे, संत संग नाम रंग।

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभ गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूर।

गोविंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कहया सो चित धर हां, हम स्यो तोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी राओ, पंकज मोह सर हां, पग नहीं चले हर हां, गह दियो मूड नर हां।

मना रहाओ। टूटे अन परानहा रवयो सर्व थानहा लहो जम पयानहा पायो पेड़ थानहा तो चूकी सगल कान।

तिस निकट ना कदे दुख हा, जो हर हर जस सुने हा, सब को तिस मने हा, सफल सो आया हा, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला पंजवा। मिल हर जस गाये हा, परम पद पाये हा, उआ रस जो बिदे हा, ताँ को सगल सिदे हा, अन दिन जा गया हा, नानक बढ़ पा गया मैं।

उत्तर अवघट सर्वरनावे, बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत चोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, परपुर तार रहा सब ठौरे, रहाओ सच व्रत नेम न काल सुनतावे, सतगुर शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाध लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच मन का

सेवा सुरत विपूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारस सारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मत एक भाए, तख्त निवासी पंच समाए, कार कमा

किस नेड़े किस आखां दूर, निद गुण गावा देखा दूर, अंतर बार अवर न कोए, ज्योतिष पावे सो फुन होए। सुन थर थर नानक।

उजड़ पर मैं रहे न पाई, बिन बूझे को खाए न पाई, नाम बिहुने माथे छाई, साच तनी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुखदा सा रहाओ, जग मुहे बांधा बहुती आसा, गुरमति इक पे उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुर सेवे करनी सारी, बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए, माया मोह गुर शब्द जलाए, निर्मल नाम सद हृदय।

नदर करे संजोग मिलाए, रूड़ो कहो ना कहया जाई, अकथ कथो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साथ सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूझे सच समावे, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारन हारा।

जमण मरणा हुकुम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अवर न पाल हालत पलत निभी तुझ नाल शब्द मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बक्से आप।

जग पंडित बिरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरे अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी पोगी गुण रोए। जग उपजे बिन सहपत कोए, गुरमुख होवे बूझे सोए। मह गो मोल पार अपार,

वह जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरना गुर बोहित शब्द पै सरना निरपो आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सोपो कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म तर्म बहु संख असंख दिन पै भक्ति जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाए थाप उथाप सृष्ट उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पथे जग खाए सूतक जल थल सभी थाए नानक सूतक

सास अकूट पंच तीन नव चार समावे, तरण जगन कल तार रहावे, बाहर जातो उल्ट करावे, मूर्ख हुए ना आखी सूजे, जेवा रस नहीं कहया बूजे, बिक्का माता जग सो लूजे, उत्तम संगत उत्तम होवे, गुण को पावे अवगण को वे।

रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा, लब लोभ अहंकार सो पीरा, राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाने, अंतर की गत गुरुमुख जाने, साच शब्द बिन

देवाना बन खंड माया मोहे हैराना इत उपजाहे काल के चापे गुरमुख खोज लह कर आपे बिन गुरु शब्द मन नहीं ठौरा सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो हो मैं कौरा रहाओ एहो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बख्शे सतगुरु मिले काल कंटक मारे सच पीले एहो मन कर्मा एहो मन तर्मा एहो मन पंच तत से जन्मा साकत लोभी एहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभुवन सोजी होई एहो मन जोगी पोगी तप तापे गुरमुख चीने हर प्रभ आपे मन बैरागी हो मैं त्यागी कट कट मन सा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखे दर कर मैली हर

ग्रास इकत खाए किए गुरुमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरुमुख इव मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन पय निरंकारी इव मन निर्मल दर कर सोई गुरुमुख भगत पाओ तुम होई एनस हर जस गुर प्रसाद कट कट सो प्रभ आद जुगाद राम रसायन इव मन माता सर्व रसायन गुरुमुख जाता भगत हेत गुरु चरण निवासा नानक हर जन के दासन दासा आसा मेला पहला तन बिन से तन का को कही है बिन गुरु राम नाम कत नहीं है राम नाम तन संग सखाई एनस निर्मल हर लिवलाई राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख सम कर नाम न छोड़ो आपे बक्स मिलावन हारा रहाओ कनिक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा जिसको बस है नाम जपाए दूत ना लाग सके।

अवरना औषध संत न मंता, हर हर सिमरन किल विखानता, तू आप बुलावे नाम विसार, तू आपे राखे कृपा धार। रोग परम पेद मन दूजा, गुर बिन परम जपे जप दूजा, अमद पुरख गुर दर्शना देखे, विन गुर शब्द जन्म के लेखे, देख अचरज रहे विस्माद, कट कट सुर नर सह समाद, पर पुर पार रहे मन माही, तुम संसार अवर को नाही, जाकी भगत हेतु मुख नाम, संत भगत की संग

जम दूत दुख तिस लागे, जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त पए हर रंग, आसा महला पहला इक तुकी। गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने, राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी राव, बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, बंधन कर्म धर्म हो किया, बंधन पुत कलक

संचय तन जाए, बिन हर भगत न पवे थाए। बंधन वेद बाद अंकार, बंधन बिन सह मोह विकार। नानक राम नाम शरणाए, सतगुरु राखे बंद ना पाए।

आई, कहां सो तेग बंद गाडेरड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मो बंके, ऐठे दिसे नाही, एहो जग तेरा तू गोसाई, एक कड़ी में थाक उठापे, जर वंड देवे पाई, राव, कहां सो करदर मंडप महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेत नींद ना पाई, कहां सो पान तंगोली हर

ओनी तुपक तावन चलाई ओनी हस चिड़ाई जिनकी चीरी दरगे पाटी तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी पटियाणी ठकुरानी इकना पेरण।

क्या करो है होशी सोई, तुम रोवोगे उसनो तुमको कौन रोई, तंदा पिट्यो पाई हो तुम कूड़ कमाओ।

ना होई जे चलदा ले चलिया किछ संपे नाले ता तन संचो देख के बूझो बिचारे वणज करो मकसूद ले हो मत पछो तावो अवगुण छोड़ो गुण करो ऐसे तत्परावो धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किस कमावो।

अंतर पंडित पांदे जोयसी नित पड़े पुराना अंतर वस्त न जाननी कट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करें नित तीर्थवासा आप न चीने।

जय गुरमुख नाम से आई है मन मंदिर पी जय रहा हो कूड़ा लाल छोड़ी है तो साच पछाने गुर के शब्द समाई है परमार्थ जाने यो मन राजा लोभिया लुभ तो लोभ आई गुरमुख लोभ निवारी है हर्षो बने आई कलर खेती बीजी है क्यों लाहा पावे मन मुख सच ना पी गई कूड़ कूड़ गडावे लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी साचो साहिब मन वसे हो मैं बिखमारी दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई एनस नाम सलाही है सतगुरु शरणाई मन मुख पत्थर से

हुक्मे ही सिर मार बंदर वाणी है, लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है, मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है, साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही, नानक मंगे सच गुरमुख कालिए।

मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है। आसा मैला पहला क्या जंगल टूंडी जाए मैं कर बन हरियावला। सच टिके कर आए शब्द उतावला जै देखा तह सोए अवर न जानिए। गुर की कार कमाए महल पछाणिए रहाओ आप मिलावे सच ता मन पावे।

अवर नहीं पाई, कृपा ते सुख पाया साके पर खाई, गुर बिन किने न पायो के ती कह कहाए, अलप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए, मन मुख जे समझाइए पी उजड़ जाए, बिन हर नाम न छूट सी मर नरक समाए, जन्म मरे परमाइए।

जिस आप कर आए नानक सिर दे छूटी है दरगे पत पाए आसा मेला पहला रूड़ो ठाकुर मारो रूड़ी गुरबाणी वड्डे पाक सतगुर मिले पाई है पद निर्वाणी मैं ओ लगिया ओ

साहिब सिओ मन मानिया दे साच आधार एनिस नाम संतोखिया सेवा सच्चाई ताको बिघन न लागई चाले हुकम रजाई। हुकम रजाई जो चले सो पवे खजाने खोटे खबर न पाए नी रले जूठाने नित नित खरा संभालिए सच सौदा पाइए खोटे नजर न आवनी ले अगन जलाइए। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई एको अमृत बिरख है फल अमृत होई।

अमृत फल जिन चाखिया सच रहे अगाई, तिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। हुकम संजोगी आया चल सदा रजाई, औगुण आरे को गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा मैला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया, लोकां दा क्या जाए जां कुद पाणिया। जो लग जियो

दर सेवक दरवान दर्द तू जानही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दर गए नाम हदूर गुरमुख जानसी, वेला सच परवान।

ताके रूप न जाही लखने क्या कर आस विचारे। तीन गुणा तेरे जुगी अंतर चारे तेरिया खाने। कर्म होवे ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी। तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी। जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी। नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आवन जानी। जा तुद पावे ता गुरमुख बूझे।

जा को सच बुझावे अपना सहजे नाम समाणी आसा मेरा तीजा सतगुरु हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन।

गुर सेवा के सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे, साची शोभा सात द्वारे, सेवड पागी जे गुर सेवा लाए, अंगिन पगत सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सभाए।

कर कृपा नाम मनवसाए, इहो सिर दी जय आप दवाए, हुक्मे बूझे सदा सुख पाए, आप करे तै आप कराए, आपे गुरमुख नाम वसाए, आप पुलावे आप मार्ग पाए, सच्चे शब्द सच समाए, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मन मुख मोहे परम पुलानी, बिन नामे सब फिरे बोराणी, तीन पवन में एक काम आया, मूरख पढ़ पढ़ दूजा पाव दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख सवाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, अमृत मीठा शब्द विचार, अंदिन पोगे हूं मैं मार, सहज आनंद कृपा धार, नाम रते सदा सच प्यार, हर जब पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जब पढ़िए हूं मैं मार, हर जपिए पै सच प्यार, नानक नाम गुरमत।

गुरु ते कर दर पाया भगती परे पंडारा, गुरुमुख नाम से आई है बूझे विचारा, गुरुमुख पगत सला है अंतर शब्द अपारा, गुरुमुख सुख उपजे दुख कदे न होई, गुरुमुख हो मैं मारी है मन निर्मल होई, सत गुर मिले आप गया त्रिभुवन सोजी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मिलाई, पूरे गुर समझाया मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई, पूरा सतगुरु ता मिले जानदर करे, किलविक पाप सब कटिए फिर दुख बिघन न होए, अपने हाथ वडियाईया दे नामे लाए, नानक नाम निधान मन वसिया वडियाई पाए, आसा मैला तीजा सुन मन मन वसाए, तू आपे आए मिले मेरे भाई, अंदिन सच्ची भगत कर सके चित लाई, एको नाम त्याए तू सुख पावे मेरे भाई, हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाओ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे, बिन सतगुर पाई न जाए, पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ न पाए, आपे थे सब रखियो ने किस कहन न जाई, आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई, जी जंत सब तिस दे सबना का सोई, मंदा किसनो आखी है जे दूजा होई, इको हुक्म वर्तदा एका सिरकारा, आप वाली दितियन अंतर लोग विकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन बूजन विचारा, भगत भी ओना नो बख्शियन अंतर।

सोई, कर में पंच वर्त दे पंचे विचारी, नानक बिन सतगुर वस ना आवनी, नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा। करे अंदर सब वस है बाहर किस नाही, गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही, सतगुर ते हर पाई है पाई, अंतर नाम निदान है पूरे सतगुर दिया दिखाई। रहाओ हर का गाहक होवे सोले पाए रतन विचारा, अंदर खोले दिव दिस देखे मुक्त पंडारा, अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा, मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए न फेरा, पार किया वक्त कमाल लई गुर सो जी होई, नाम पदार्थ अमूल सा गुरमुख पावे कोई। बाहर पाले तो क्या लहे वक्त करे अंदर भाई, पर में पूला सब जग फिरे मनमुख पत जवाई, कारदार छोड़े अपना पर कर।

अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई, आपे दान करे किस आखिए आपे दे बुझाई। नानक नाम से आए तू दर सच्चे तो बापाई। आसा मेला तीजा आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई, हर रस चाखिए मुक्त भये जिना साचो भाई। हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा, गुरमती साला है बिखिया माए उदासा रहाओ। बिन शब्द आप न जा पई सब अंधी भाई, गुरमती कट चानना नाम अंत सिखाई। नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा, अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा। नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड्याई, नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई। नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई, नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई। बिन नामे कोई ना मनिए मन मुख पत गवाई, जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई। नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम बुझाई, नामो ही नाम मनिए नामे वड्याई। जिसनो देवे तिस मिले गुरुमती नाम बुझाई, नानक सब किस नाम है।

आ बोले नानी वे दूजा पाव सुहाओ त्यो मनुआ क्यों कर वसावे गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती कर आवे रहाओ सोहागणी आप सवारियों लाए प्रेम प्यार सतगुर के पाने चल दिया नामे सह शिगार सदा रामे फिर अपना सच्ची सेज सुवाए फिर के प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाए ज्ञान अपार सिगार है शोभावंती नार सासब राई सुंदरी फिर कहे प्यार सोहागणी विच रंग रखियो न सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार सोहागणी सिगार बनाया गुण का गलहार प्रेम पिरमल तन लावना अंत

सोए, एथे कर कर जाप दे आ गए जुग जुग प्रगट होए। ए मन रूड़े रंगुले तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूड़ी बाणी जे रपे ना इहो रंग लह ना जाए। रहाओ हम नीच मैले अत अभिमानी, दूजे पाए विकार, गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार। बिन गुर कोई ना रंगी है, गुर मिले रंग चढ़ाओ, गुर कै पै पाए जोरते सिफती सच समाओ। पै बिन लाग ना लग गई, ना मन निर्मल होए।

सुवाए, बिन संगति सब ऐसे रहे जैसे पस्तोर, जिनकी तेत से न जाननी, बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाजे।

नानक नामे लाए सवारियन सब दे ले मिलाए आसा मेला तीजा सब नामे नो लोच दी जिस कृपा करे सो पाए बिन नामे सब दुख है सुख तिस जिस मन वसाए तू बेअंत दयाल।

मेल लें एक दरगे मार कड़े कूड़ियार एक तुर पवित पावन है तुझ नामे लाए गुर सेवा ते सुख उपजे सच्चे शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पते नामो आप खुआए ना ऊन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिरे उत्वताए नदर करे जिस अपनी किसनो पावनी लाए सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ना पहुँची है कथ कहने अंत न पाए गुरते कीमत पाई है सच शब्द

सच निर्मल मन वसाए, सुहागनी सदा फिर पाया हों मैं आप दुआए, फिर सेती अन दिन गह रही सच्ची सेज सुपाए, मेरी मेरी कर गए पल्ले किछ न पाए, मैल नाही दुहागनी अंत गई पछताए, सो फिर मेरा एक है एक क्यों लिवलाए, नानक जे सुख लोड़।

मन सदा हरि आवला सहजे हर गुण गाए राव मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे जिना पिरका स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरमुख बीजे सच जम्मे सत नाम व पार जो इतला है लायन।

भक्ति सार न जाननी मनमुख अहंकारी, तुरो आप खुआयन जुए बाजी हारी। बिन प्यारे भगत न हो वही, ना सुख वही शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है।

भगता की जत पथ एको नाम है, आपे ले सवार सदा शरणाई तिसकी ज्यों पावे त्यों कार सार।

अन्न रस में पोलाया बिन ना में दुख पाए, सतगुर पुरख ना पेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साद पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए रहाओ, इस जुग में गुरमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनहार, बिन नावे सुख न पाये ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करें सिगार, अंदिन सदा जल्दिया फिरे सेजे रवे ना पतार, सुहागणी महल पाया विच्चों आप गवाए, गुर शब्दी सिगारिया अपने सह लिया मिलाए, मरना मनो विसारिया।

नाम स्यों सुख पुंचे सब थाए। सब जग चल तो पेखी है नीचल हर को नाओ, कर मित्राई साध च्यों नीचल पावे ठाओ। मीत साजन सुत बंद।

दर्शन कौ बल जाऊं, जिस सिमरत दुख बीस रहे प्यारे सो क्यों तजना जाए। यो तन वेची संत पै प्यारे प्रीतम दे मिलाए, सुख सिगार बिखिया के फीके।

सस्य सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तो पड़या रहाओ ईवड़ी आद पुरख है दाता।

पढ़िया पंडित आप थिया। छछे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ। परम उपाय पुलायन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया। जज्जे जान मंगत जन जाचे।

आरो अपना पाज पड़ो तुम हर सरना ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा सही जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया डड्डे डंफ करो क्या प्राणी जो किछ होआ सो सब चलना तिसे सिरेवो ता सुख पावो सर्व निरंतर रव रहा।

नाने रवत रहे कट अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म ना होई। तत्ते तारू पव जल हुआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा हम

सिखा। सतगुर बाजो गुर नहीं कोई, निगुरे का है नाव बुरा। तद्दे तावत वर्ज रख मूड़े, अंतर तेरे निधान पया। गुरमुख होवे ता हर रस पीवे, जुगा जुगंतर खा।

पछाता। निर्गुण राम तिन्नी बूझ लिया, तेरा अंत न जाई लखिया, अकथ न जाई हर कथिया। नानक जिन को

स्वामी आप प्रभ कृपा करे सेजा सुहावी संग पिरके सात सर अमृत भरे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाहो मुंद सहज सलो नड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर भावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसै।

जब तप कर कर संयम था की हठ निग्रह नहीं पाइए, नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए। गुर सागरो रत्नागर तिद रत्न कणे रे राम, कर मज्जनो सप्त सरे मन निर्मल मेरे राम। निर्मल जल नाए जा प्रभ पाए, पंच मिले विचारे काम क्रोध कपट बिखिया तज।

सच साहिबो आद पुरख अपरंपरो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरमुख शब्द पछ।

नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम अवगुण मेट चले।

गुरुमुख तत् विचारो साजन मीत सो जान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन प्रगासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन रव रहा जग

ते कबहु ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेड़ ना आवे जमन मरण तिना का चूका जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो।

सोई जन पावे। जो नर एक पछाणे ओह नव निध पावे, गुरमत हर त्यावे, नित हर गुण आख वखाणे। एनस नाम तिसे का लीजे, हर उत्तम

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलियो जन्म सवाया। दूजड़े कामण परम पुली हर वर न पाए राम, कामण गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी अवगुणवंती चूरे, अपना सतगुरु सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए, नानक बिन नावे कामण परम फुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामण जानिया गुर मेल मिलाई राम, अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई, सहजे हर रस चाख्या मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने। सच्चे शब्द सुवाख्या पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्त न पाई नानक बिन भक्ति जग बौराना। सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन आनंद भया, हर जियो मेल प्यारे राम। सा तन हर

आस हो हर भगती चितलावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोहेला तिन सद सदा जो हर गुण गावे। कर बैराग तू छोड़ पखंड सो सो सब किस जाने। जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुकम पछाने। जिन हुकम पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी हम दिन हर लिवलावे। जै जै मन तू तावदा तै तै हर तेरे नाले। मन से आनप छोड़ी है।

नानक मन तन अर्प गुर आगे जिस प्राप्त सो पाए। रतना रतन पदार्थ बहु सागर परे आराम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडारा। समुंद विरोल सरी

रोम रोम रोम में मैं गुरुमुख राम से आए राम, राम नाम से आए पवित्र होए आए तिस रूप न रेख्या काए, रामो राम रव्या कट अंतर सब कृष्णा पूख गवाई, मन तन शीतल सिगार सब होआ गुरमत राम पर गाता, नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दाता, जिन्नी रामो राम नाम विसारिया से मन मुख मूर अपागी राम, तिन अंतरे मोह व्यापे खिन खिन माया लागी राम, माया मल लागी मूर पै अपागी जिन राम नाम नह पाया, अनेक कर्म करें अभिमानी हर रामो नाम चुराया, महा बिखम जम पंस दुहेला कालू खत मोह अंधियारा, नानक गुरुमुख।

राम मन इकत कर आने सब गत नित जाने हर रामो नाम रसाए जन की पैज रखे राम नामा प्रहलाद उधार।

समाया। जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब कर्म मिले मन चिंदिया को फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम से आया राम नाम गुण गाए। दुर्मत कबुद गई सुध होई राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब होवा जित राम नाम पर गा।

दुख बिनाशन पतित पावन हर नाम जियो, हर सेवा पाई परम गत पाई, हर उत्तम हर हर काम जियो, हर उत्तम काम जपिए, हर नाम हर जपिए।

हर जपिए आत्म राम जियो, हर हर करता दुख बिनासन, पतित पावन हर नाम जियो। हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपिए सतगुरु पाए जियो, गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए, हर जपत सुनत दुख जाए जियो, हर हर नाम जपिया।

लिख पाए जियो। हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम, हर जपिए सतगुर पाए जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई, परम चूका आवन जान जियो। आवन जाना परम को पागा, हर हर हर गुण गाया। जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया। जिन हर से आया सुर पाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो। हर नाम वडाई हर नाम सिखाई, गुर सबदी हर रस भोग जियो। हर रस भोग महा निर्जोग, वड पागी हर रस पाया। से तन वड्डे सत पुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया। जन नानक रेण मंगे।

पदार्थ हर हर कृतार्थ शोभा गुरमुख होई। अंतर बाहर हर प्रभ एको दूजा अवर न कोई। हर हर लिव लाई हर नाम सिखाई। हर दरगे पावे मान जियो सतयुग सब संतोख शरीरा। पग चारे कर्म ध्यान जियो। तेता युग आया अंतर

कल युग हर किया पग त्रै किया पग चौथा चिकै टिकाए जियो गुर शब्द कमाया औखद हर पाया हर कीरत हर शांत पाए जियो हर कीरत रुत आई हर नाम।

लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, सद लेवो सब सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ।

मन नाम जपाना हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जग मरण ना पाया निक आप लुकाया, मत जम पकड़े ले जाए जियो, हर अंतर बाहर हर प्रभ एको, इहो जियड़ा रखिया ना जाए जियो, क्यों जियो रखी जय हर वस्त लोड़ी जय, जिसकी वस्त सो ले जाए जियो, मन मुख करण।

जो जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो। तुर मरण लिखाया गुरमुख तो आया जन उबरे हर हर ध्यान जियो। हर शोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगे पैदे जान जियो। हर दरगे पैदे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवे दुख में ते हर रामे नाम समाया। हर जन प्रभ रल एको होए हर जन प्रभ एक समान जियो। तुर मरण लिखा

सब उतरे जो हर नाम ते आवे, जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ ना आवे। जन नानक को हर कृपा कर, नित जपे हर नाम करावे। जिनी गुरुमुख नाम ते आया।

सारे नमस्कार कर लगे सेवा आते जा जी आपे मां जी आप स्वामी आप देवा अपना कार्य आप सवारे आते तारन तारे कहो नानक सौ कर में बैठा सोहे बंक द्वारे नग्न दे नौन दे मेरे कर में आई राम सब किच मैं सब किच पाया नाम से आई राम नाम से आई सदा सखाई सह सुभाई गोविंदा गणत मिटाई चूकी ताई कदे न व्याप मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अत्रिज शोभ बनाई कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नवनिध पाई सर से अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता परम गड़ा पाया खजाना बहुत निदाना सामर्थ मेरी आप खड़ा सोई सो ज्ञाना सो प्रदाना जो प्रभ अपना कीता कहो नानक जा वल स्वामी ता सर से पाई मीता आता महला पंजवा अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम सुर नर मुन जन सहज वखानी राम सहजे वखानी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया जब एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया तज मान मोह विकार दूजा ज्योति ज्योत समाणी बिनवंत नानक गुर प्रसादी सदा हर रंग माणी हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड पागी सत्संगत पाई राम वड पागी पाए नाम ते आए लाखे दुख संतापे गुर चरणी लागे परम पौ पागे आप मिटाया पै कर कृपा में ले प्रभ अपने बिछड़ कते न जाई बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर शरणाई हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम सद बलिहारे कर नमस्कारे जिन पेटत प्रभ जाता कट कट रग रहा सब थाई पूरन पुरख विदाता गुर पूरा पाया नाम ते आया जुए जन्म नहारे बिनवंत नानक शरण तेरी राख कृपा धारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरण तूर वड पागी पावा राम हर तूड़ी नाइये मैल गवाइये जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभु साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बौड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुरु शरण करिए अपने प्रभु भावा आशा छंत महला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद हर चरण कमल मन बेदिया किछ आम ना मीठा राम राजे मिल संत संगत आरा दिया हर कट कटे जीठा राम राजे हर कट कटे जीठा अमृतो उठा जन्म मरण दुख नाथे गुण निध गाया सब दुख मिटाया।

लाए हर रत्न पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ न कथो जाए। प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटे न दाते जल संगराती माछली नानक हर माते। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे माल खजीना सुत प्रात नीत सबू ते प्यारा राम राजे। सबू ते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानी है हर सास गिरास न बिसरे कबू गुर शब्दी रंगमानी है। प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मन ओरथो पूरा राम राजे। ताथी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला। सुख सहज आनंद कनेरे पतित पावन साधु तूरा हर मिले नारायण नानका मन ओरथो पूरा। आसा महला पंजवा संत कर सेवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक। जाको पय कृपाल प्रभ हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों पेटक साथ संगात। संत जल दूध न्याई रीत अब दूध आत नहीं मन ऐसी प्रीत हरे। अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन इक खिन भी नाहे टरे। खिन नाहे टरिये प्रीत हरिये सिगार हगरस अर्पिये जह दुख सुनिये जम पंथ पणिये तह साध संग ना डरपिये। कर कीरत गोविंद गुणिये सगल प्राचत दुख हरे कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। जैसी मछली नीर इक छिन भी ना धीरे मन ऐसा निहो करे हो। जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो हर प्रीत करी जय इह मन दीजे अपलाये चित मुरारी। मान न की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी गुर सो प्रसन्ने मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ सनेहा। कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा मन ऐसा निहो करे हो। चकवी सूसने हो चितवे आस पणी कल दिनियर देखिए कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया मन हर रंग कीजिए। हर प्रीत करी जय मान न की जय इक राशि के हम पावणिया अज क्या रंग लायो मोह रचायो नांगे आवन जावणिया। फिर साधु सरणी पड़ी है चरणी अब टूटस मोह जो किती है कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय। जैसी तरुण पतार उर्जी पिह सिवे यो मन लाल दी जय। मन लाले दी जय पोक करी जय हब खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने। गुर थी आसाखी ता डिठम आखी फिर जेहा आवर न दिसे कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय। आसा महला पंजवा श्लोक। बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जग हर पाया मन माहे। छंत जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना कर गवन वसुधा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट विष्णु अवतार शंकर जटातार चाहे तुझे दयार मन तन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी सुर सिद्ध गण गंधर्व ते आवे जप किन्नर गुणपनी। कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी जा को सेवे
लक्ष्मी अनक पाप गुप्त प्रगट जाको अराधे पौन पानी दिन सुरात नक्षत्र ससियर सूर त्यावे बसद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत पुराण चतुर्वेद खट शास्त्र जाको जपात पतित पावन भगत वचल नानक मिलिए संग साथ जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवा तेती न जाय गनी अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकी उपमा कित गनी तिहो दान मान नानक पाए शीश सादे तर चरनी आसा मेला तन्यवा श्लोक उद्दम करो वड पागियो सिमरो हर हर राए नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए संत नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पेट साधु संग जमपुर ने जाइए दुख दर्द न कहो व्यापे नाम सिमरत सब सुखी साथ साथ आराध हर हर त्याए सो प्रभु मनमुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निद कर दया सेवा लाइए नानक प्रेम पे चरण जमपे नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पावन पतित पुनीत नाम निरंजना परम अंधेर बिना

सूर्या अगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नाम स्वयं पै चरण जम पै पावन पथित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोय आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरन हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहु करे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संत संग विदे नाम पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वचल हर विद आप बनाया जय जय संत अरादे तै तै प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुबाये पवित कार्य सारिया आनंद हर जस महा मंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगास देह दिस एक तह दृष्टाया नाम स्वयं पै चरण जम पै पवित वचल हर वेद आप बनाया आशा मैला पन्नवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जहाँ कह गए हर नाओ सो सद ही रावे अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर देह दिस पूर्ण सब सदा प्राण पत गत मत जाके प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरु बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जाको राम पतार का कह अनुद घना सुखवंती सानार सो बापूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निध तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना नानक वखाने गुरु बचन जाने जाको राम पतार का अनद घना आओ सखी संत पाठ सेवा लागी है पीछो चरण पखार आप त्यागी है तज आप मिटे संताप आपने जनाई है शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास बासी तज उदासी कर जोर दिन रैन जागी है नानक वखाने गुरु बचन जाने आओ सखी संत पाग सेवा लागी है जाके मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन लागया परम मोह विकार दूजा सकल तिने त्याग गया मन शांत सह स्वभाव उठा अनद मंगल गुण गाया नानक वखाने गुरु बचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया आशा महला पंजवा श्लोक हर हर नाम जपन त्या कछ न कहे जम काल नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल छंत मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो बिनो करो कर जोड़ हर हर नाम दे हो हर नाम मांगो चरण लागो मान त्यागो तुम दया कतहु न तावो शरण पावो करुणा में प्रब करमया समरथ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले हो अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच सठ कठोर कुलहीन व्यापत मोह कीच मल परम कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे बनता विनोद आनंद माया अज्ञान तालप पावे किसे जोबन बले जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लपट रहे हो ते संग मीठे पोग सोन प्रमत पार अगमत आयो बहु परदेश पायो अब ओट कारी प्रम मुरारी सर्व सुख हर नायो राख नहारे प्रभ प्यारे मुझते कछु न हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तय कौन नाम तारीख उधारे पगत संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण सुन श्रवण बानी पुरुष ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ विधाते राम के गुण गावे वसुध कागद बन राज कलमा लिखन को जे हुए पवन बेअंत अंत न जाए पाया वही नानक चरण शरण आशा महला पंजवा
पुरख पते भगवान ताकी शरण गही, निरपो पे प्राण चिंता सगल लही, मात पिता सुख मीत सुरजन इष्ट बंधक जानिया, गय कंठ लाया गुर मिलाया जस विमल संत वखाणिया, बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत पछू न जाए कही, प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही, अमृत बन संसार सहाय आप भये, राम नाम उरहार बिक के दिवस गए, गत परम मोह विकार बिन से जोन आमन सब रहे, अगन सागर तय शीतल साध अंचल गह रहे, गोविंद गोपाल दयाल समरथ बोल साधु हर जय जय, नानक नाम त्याय पूरन साध संग पाई परम गते, जय देखो तय संग एको रव रहा, पट पट वासी आप विरले किने लया, जल कल मैयल पूरे पूरन कीट हस्त समानिया, आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जानिया, ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निर्जन कहा, सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नाम कराव रहा, जिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे, चरण कमल संग प्रीत कलमल पातरे, दुख पूख दरिद्र नाथे प्रगट मग दिखाया, मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया, हर देख दर्शन चुपुन्नी कुल संभुआ सब तरे, दिन श्रेण आनंद अंदिन सिमरंत नानक हर हरे।

श्लोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम न विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत छंत पिन्नी रैनड़ी है चमकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे अंजनो चरण कमल ध्यान हृदय प्रभ विसरना ही किनो तब मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे बिन हंस नानक सदा जागे हर दास संत प्यारे मेरी सेजड़ी है अडंबर बनिया मन अनद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी चाव मंगल रस भरे अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तन सब हरे मन इच पाई प्रभ

सर से हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा सहारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिन से आए सहज पाए सगल निध प्रभ पागे बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन पागे आशा मैला कंजवा उठ वंज बटा उड़िया तैं क्या चिर लाया मोलत कुंडिया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करे पाप अमित्या तन पसम तेरी जमे हेरी काल बपड़े जितया

की साथ है, संग देखे करणहारा काए पाप कमाई है, सुकृत की जय नाम ली जय नरक मूल न जाइए, आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है, पद साध संगत सदा नानक मिटे दो कमाते, वलवंश कर उधर परे मूर्ख गावारा, सब किश दे रहा हर देवन हारा, दातार सदा दयाल स्वामी काए मनो विसारी है, निर साध संगे पद्म संगे कुल समूह तारी है, शिव साधक देव मुंजन भगत नाम आधारा, बिनवंत नान सदा तजी है प्रभ एक करने हारा, खोट न की चई प्रभ परखन हारा, पूर कपट कमाऊ गड़े जन्मे संसारा, संसार सागर किन्नी तरिया जिन्नी एक से आया, तज काम क्रोध अनि

जल फल मैयल रविया स्वामी पूछ अगम अपारा बिन वंश नानक टेक जन की चरण कमल आधारा पेट हर संगौरड़ी अब फिर किछ नाही माया रंग जेते से संग न जाही हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए हर एक बिन कछ अवर नाही पाओ दुतिया जालिए मीत जोबन माल सर्वस प्रभ एक कर मन माही बिन वंश नानक वड पाग पाई है सुख सहज समा

कमला प्रमपीत कमला प्रमपीत हे तीक्ष्ण मद विपरीत हे अवध अकारथ जात गैबर बन कोर हे गृह मूसक मन चोर हे दिन करो अन दिन खास दिन खास जात बिहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ न गते कुल रूप तूप ज्ञान हीनी कुछ बिना मोह कौन मात पर जोड़ नानक शरण आयो प्रिय नाथ नर हर करो गात मीना जलहीन हे ओह बिछरत मन तन खीन हे कत जीवन प्रिय बिन होत सन्मुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओह बेदियो सहज स्रोत प्रिय प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तंग तिस बिना पलका ना लागे प्रिय प्रेम पागे चितवंत अंजन प्रमना श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंदावत आप चात्रिक चित प्यास हे तन बूंद बचित्र मन आस हे अल्पीवत बिन सतताप ताता विनाशन दुख नाशन मिल प्रेम मन तन अतकना सुंदर चतुर सुजान स्वामी पवन रसना गुणपना गह पूजा लेवो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत पाप नानक जम पै पतित पावन हर दर्श पे सतमह सं

सुंदरतम प्राण सुंदरतम प्राण हे मन लुब्ध गोपाल ज्ञान हे जाचक जन राक्षसमान प्रभ मान पूरन दुख बिजीरन सगल इच पुजंतिया हर कंठ लागे दिन सुबागे मिल नहा शेष सोंतिया प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी सगल कलमल पहान बिन वंश नानक मेरी आस पूरन।

सूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद आशा महला पहला वासलोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे पुण्य यशराज की तुने श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे

चेत छुटे तिलगु आर ज्यो सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कौन आन सोना फलिया फुलिया बपड़े पीतन विश्वा पौड़ी आपी ने आप साजो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजी है करे आसन जिठो चाहो दाता करता तू तुस देव है करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन जिठो चाओ। श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खन सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखें लग करोड़ सच्चे सब कान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिर्फ सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह ना सत्यान सच जो मर जमे सो कच में कच महला पहला। वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सतन्याओ वड्डी वड्याई जाने चल खाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नानक कार न कथनी जाए कीता करना सर्व जाए महला।

उसमें करे विनाश, इकना पाने कड ले इकना माया उच निवास। ये पे आखन जाती जे किस आने रास, नानक गुरुमुख जानिए जाको आखरे परदास पौड़ी। नानक जी उपाय कै लिखना वे तरम बहा लिया, ओथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वक कड्डे जिजमा लिया। थाउ ना पायन कूड़िया मौका ले दो जुक चा लिया, तेरे नाय रते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया। लिखना में करम बालिया श्लोक महला पहला, विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद, विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर जंत। विस्माद सौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी, विस्माद करती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी। विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद कुख विस्माद भोग, विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह, विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर। वेख उड़ान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे पाग महला पहला, कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुखसार।

बाजारी बाजार में आयकड़े बाजार गावे राजे रानियां बोले आलपताल लख क्या के मुंडड़े लख क्या के हार जित तन पाये नाम का सेतन होवे चार ज्ञान न गली टूंडी है कठना करड़ा सार कर्म मिले ता पाये और हिकमत हुकम खुआर पौड़ी नदर करें जे आपनी ता मदरी सतगुरु पाया एह जियो बहुते जन्म प्रम्या ता सतगुरु शब्द सुनाया सतगुरु जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुवाया सतगुरु मिले सच पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली तरती माल तन बर्तन सर्व जंजाल नानक मुझसे ज्ञान में होनी खाए गया जमकाल महला पहला वाइन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड उड रावा चाटे पाए वेख लोक हसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े तरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपव निरंकार सच नाम जाका किया सकल जहां सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ पिन्नी रैन जिना मन चाहो सिखी सिख्या गुरु विचार नदरी कर्म लंगाए पार कोलू चरखा चक्की चक फल वारो ले बहुत अनंत लाटू माधानियां गा पंखी पौंदियां लैन न पा सुवे चार पुहाइए जंत नाम पौंदियां गंत नांत बंधन बंद पुहाए सोए पये किरत नचे सब कोए नच नच हसे चले सिरोए उड न जाए सिद्ध न होए नचे कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी नाओ तेरा निरंकार है नाई ले नरक न जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जाए आप गवाइए जे लोड़ है चंगा अपना कर कुनहु नीच सदाइए जे जरवाना परहर है जर वेश करेंदी आइए को रहना परिये पाइए श्लोक महला पहला मुसलमाना सिर्फ फरियत पढ़ पढ़ करें विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखन को दीदार हिंदू साला ही साला हम दर्शन रूप अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास में कार जोगी सुनत्या जे ते अलख नाम करतार सुखम मूरत नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोष उपजे देने के विचार दे दे मंगे सैसा गुना शोक करे संसार चोरा यारा ते कुड़ियारा खारा बावेकार इक होदा खाए चले एथाउ तिना बेकाई कार जल फल जिया प्रिया लोहा आकारा आकार कोई जी आखे सोटू है जाने तिना बे तेरी सार नानक पगता पुख सलान सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाचार महला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई कुम्यार कर पांडे टा किया जल्दी करे पुकार जल जल रो वह बपड़ी चढ़ चढ़ को अंगार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम यो विचार है जिन सच्चे सुन चित लाया जग जीवन दाता पाया श्लोक महला पहला हौ विच आया हौ विच गया हौ विच जमया हौ विच मोआ हौ विच दिता हौ विच लया हौ विच खटिया हौ विच गया हौ विच सत्यार कूड़ियार हौ विच पाप पुन विचार हौ विच नरक सुरग अवतार हौ विच हसे हौ विच रोवे हौ विच परिये हौ विच होवे हौ विच जाति जिनसी खोवे हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा मूर्ख मुक्त की सार न जाना हौ विच माया हौ विच छाया हौ मैं कर कर जंतु पाया हौ मैं बूझे तागर सूझे ज्ञान विहूणा कट कट लूझे नानक हुक्मी लिखिए लेख जिया वेख है तिया वेख महला दूजा

इस माए कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमाए। नानक कहे सुनो जनो इस संजम दुख जाए। पौड़ी सेव कीती संतोखी जिन्नी सचो सत्य आया। ओनी मंदे पैर न रखियो पर सुकृत कर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया। वड्याई वड्डा पाया सरूप महला पहला। पुरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेगा खेता। दीपा लोआ मंडला खंडा वर पंडा। अंडर जेरिज उत्पुजा खानी सेत जहां। सोमित जाने नानक आसरा मेरा जनता। नानक जंत उपाय कै संभाले सगना। जिन करते करना किया चिंता वे करनी ता। सो करता चिंता करे जिनु पाया जग। तिस जुहारी स्वस्थ तिस दीवान अपग। नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या पग। महला पहला लख ने किया चंगियाईया लख पुन्ना प्रवान। लख तप प्रतिष्ठा सहज योग बेबान। लख सूरतन संग्राम रण में छुटे प्राण। लख सुरती लख ज्ञान ज्ञान पढ़िए पाठ पुराण। जिन करते करना किया लिखिया मन जान। नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सच्चो सच वरताया। जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी।

0: पाप कढ़े कोई, नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी। दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है, कूड़ा लालच छड़ी है होए इक मन अलग से आई है। फल ते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है, जे हो वे पूर्व लिखिया ता तूर तिना दी पाई है। मत थोड़ी सेव गवाई है, श्लोक महला पहला। सत्काल पूर्ण वर्त्या कल काल बेताल, बियो बीज पक ले गए अब क्यों उगवे दाल। जे इक होए ता उगवे रुचि हुरत होए, नानक पाहे बारा कोरे रंग न सोए। पैज खुम चढ़ाई है शर्म पावतन होए, नानक पगती जे रपै कूड़े सोए न कोई महला पहला। लब पाप दो राजा महता कूड़ हुआ सिकदार, काम लेव सब पुछिए बह बह करे विचार। अंधी रैयत ज्ञान विहूनी पाए परे मुर्दार, ज्ञानी नच्चे बाजे वावे रूप करे सिगार। उच्चे कूके वादा गावे जोधा का विचार, मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करें प्यार। कर्मी कर्म करें गावावे मंगे मोख द्वार, जति सदावे जुगत न जाने छड़ में कर बार। सबको पूरा आपे होवे कट ना कोई आखे, पग परवाना पिछे पाये ता नानक तोलिया जापे महला पहला। वदी सवज्जग नाम का सच्चा वेखे सोए, सबनी चाला मारिया करता करे सोए। अग्गे जाप मजोर है अग्गे जियो नवे, जिनकी लेखे पपवे चंगे से के पौड़ी। तुरकम जिना को तुद पाया ता किन्नी खपन से आया, ए ना जनता के वश किचना ही तुद वेकी जगत उपाया। इकना नो तू मेल ले इकापो तुद खुआया, गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया, सहजे ही सच समाया।
1: श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पाया जा सुख ताम न होई, तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई। बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ, जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सुवालियो जिन की तीसो पार पया, कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर गया। महला दूजा। जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण है, खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूदर शब्दंग प्राकृत है। सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने भेयो, नानकता का दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा। एक कृष्ण सर्व देवा देव देवाता आत्मा, आत्मा वासुदेव जे को जाने भेयो, नानकता का दास।

गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी। पढ़ा हो वह गुनेगा ताओ मी साधना मारी है, जे हाँ काले कारणा तेवे हो ना उपचारी है, ऐसी कला न खेड़ी है जित दर गए गया हारी है, पढ़िया अत्यो मिया विचार गए विचारी है, मुझ चले सो अगे मारी है। श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाओ, जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझे ताहे, सत जुग रथ संतोख का कर्म अग्गे रथवाओ, त्रेते रथ जते का जोर अग्गे रथवाओ, द्वापर रथ पपे का सत अग्गे रथवाओ, कल जुग रथ अगन का कूड़ अग्गे रथवाओ। महला पहला। शाम कहे सितंबर स्वामी सच में आठ है साथ रहे, सबको सच समावे रिक कह रहा पर पूर, राम नाम देवा में सूर नाई ले प्राचित जाहे, नानक तो मुखंतर पाहे।

at dirag at much oye je aave aas par jaye nirase kit phal fikke phul bak bakke kam na aave pat mithak neevi nanaka gun chaniyaiyan tak sab ko nive aap ko par kau nive na koe tar ka raju toliye nive so gaura hoye apradi duna nive jo hanta mir gaahe शीश निवाया क्या थी है जान हृदय को सुदे जाए मेला पहला पर पुस्तक संध्या बादं सिल पूज बगल समादं मुख टूट बेपूखन सारं त्रैपाल से हाल विचारं गल माला तिलक लीलाटं दो तोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब को कठिनश्चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे फिर सतगुरु वात न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पावंदे राय पीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया तां जिसे खरा डरावना कल अवगुण पछोतावना श्लोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवत एहो जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना एहो तुटे ना मल लगे ना एहो जले न जाए तन सो मान स्नान का जो गल चले पाए चौकर मुल अनाया बे चौके पाया सिखा कन

ओ मुआ ओ चरपया वे तगा गया महला पहला। लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख गिया पहनामिया रात दिन जी नाल। तक पाओ कती है बामन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए। होए पुराना सुती है पीसर पाई है होर नानक तग न टूटे जे तग होवे जोर महला पहला। नाय मने है पथ उपजे साला ही सचूत दरगे अंदर पाई है तग न टूटे सपूत महला पहला। तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवे निदारी तग न तैरी तग न आखी तग न जेवा तग न आखी। वे तगा आपे वत है वर्तागे अवरागत है ले पार करे भी आहो कद कागल दसे राव। सुन वेखो लोका इहो विडान मन अंधा ना सुजान पौड़ी। साहिब होए दयाल किरपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम मनाए सी। हुकम मने होवे परवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पा

कौ कर लावो गोबर कर न जाई, तोती टिक्का तय जपमाली तान मलेच्छा खाई, अंकर पूजा अपने कतेबा संजम तुरका भाई, छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जहां तरंगा महला पहला, मानस खाने करे निवाज।

देखा चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत भिटै वे मत भिटै असाडा फिटै तन फिटै फेर करेन मन जूठे चुली भरेन कहो नानक सत्य आई है सुच होवे ता सच पाई है पौड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंगा आपे देव दे आईया आपे ही कर्म कराएंगा वडो वडा वड मेदनी सिरे सुल्तान दे लाएंगा नदर पट्टी जे करे सुल्तान।

का पहला मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना पर क्रिया पर अनुरूप कन्नी सूतक कन पै लाल तवारी खाए नानक सा आदमी बदे जम पुर जाए महला पहला सबो सूतक परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है।

काटके पाए, फिका मूर्ख आखिए पाना लह सजाए महला पहला। अंदरों झूठे तेज बार दुनिया अंदर फैल, असर तीर्थ जे नाम है उतरे नाही मैल। जिन पर अंदर बाहर गुदर के फले संसार, तिन ने हो लगा रब से ती देखने विचार। रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह नाही किसे केरी बात सच्चे ना। दरवाज ऊपर खर्च मंगा जब देता खाए, दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल। दर ले लेखा पीर छुटे नान का जो तेल।

ताकि सुन न पाए साधु, आप गवाए सेवा करे ताकि पाए मान, नानक जिसनो लगा किस मिला है, लगा सो परवान महला दूजा, जो जी हो सो गुवे मौका कह आवाओ, बीजे बिख

कबीर जियो। गुर चरण लाग हम बिनवता, पूछत कह जियो पाया, कवन काज जब उपजय बिन सह कहो मोहे समझाया। देव करो दया मोहे मार्ग लावो।

आपा पद निर्माण ना चीनिया इन विद अभियो न चूके। कहीं ना उपजे उपजी जाने पाव अपाव विहुना, उदय अस्त की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिवलीना। जो प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना, कहो कबीर ऐसा गुण परम पादा तो मन सुन समाना। आशा गज साडे तै तै तोतिया तेरे पायन तग, गली जिना जप मालिया लोटे हाथ निबग। ओए हर के संत न आखिए बनारस के ठग, ऐसे संत न मौके पावे डाला सो के दागट कावे। रहाओ बासन मांझ चरावे।

सूझिया, गुर प्रसाद में सब कुछ सूझिया। आशा इकत पत्थर पर उरकट कुरकट, इकत पत्थर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। नकटी को ठंगन बाबा दू, किने विवेकी काटी तू राव। सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलिया की हो बहन पान जी, जिने बरी तिस्केरी। हमरो परता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, ओ हमारे माथे कायम।

पर्वत खाया, कछुआ कहे अंगार बेलोरो, लूकी शब्द सुनाया। आशा बटुआ एक बेहतर आधारी, एक कोज से द्वारा

लाई, दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाई, काजी ते कमन कतेब बखानी, परत गुनत ऐसे सब मारे, किन्हो खबर न जानी रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाई मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी।

काकी माँ पिता खो काको कवन पुरुष की जोई कट कूटे को बात ना पूछे काडो काडो होई। देवरी बैठी माता रोवे खटिया ले गए पाई लख छुटकाए त्रिया रोवे हंसी के ला जाए। कह कबीर सुनो रे संतो कैसा गर कह पाई इस बंदे से जुल्म होत है।

एक तो के संत सुनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पर ब्रह्म में जन्म गवाया। हर का बिलोव ना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तकना जाए रहाओ। तन कर मटकी मन माए बिलोई, इस मटकी में सब संजोई। हर का बिलोव ना मन का विचारा, गुरु प्रसाद पावे अमृत तारा। कहो कबीर नगर करे जे मीरा, राम नाम लग उतरे तीरा। आशा बाती सूखी तेल निकूटा, मंदल ना बाजे नट पे सूता। बुझ गई अगर ना निकसो तुआ, रव रहा एक अगर नहीं दुआ रहाओ। टूटी तंक न बजे रबाब, फूल बिगारे हो अपना काज।

कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष तक तपना कियो, 30 वर्ष तक देव ना पूजा, फिर पछताना विरद भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर शोक पुजंग बलयो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूने खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण शीश पर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तब रे कर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो, अन तन कछुए।

चिरगट फाल च तारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे, अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ, रोजा तरे निवाज गुजारे। कलमा पिस्त न होई सत्तर का बाकत ही पीतर, जेकर जाने कोई निवाज सोई जो न्याओ विचारे। कलमा अकल है जाने

आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्तरी की माटी एक पेट तरनाना तामे ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक सो मन माना आशा जगन नगर।

ना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिकल पे संग तेरे इंद्री का बल खाता चरण रहे कर तर्क परे है मुखो न निक्षय बाता थाके पंच दूत सब तस्कर आप अपने प्रमते थाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत तर रमते मृतक पाए दसें बंद छूटे मित्र पाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावे जीवत बंधन तोरे आसा इक तुके चौथा सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया मार मार सर्पनी निर्मल जल पैठी जिन त्रिभवन दशियले गुर प्रसाद जीती रहाओ सर्पनी सर्पनी क्या कहो भाई जिन साज पछान्या तिन सर्पनी खाई सर्पनी ते आन छूछ नहीं अबरा सर्पनी जीती कहाँ करे जमरा ए सर्पनी ताकी कीती होई बल अबल क्या इस्ते होई ए बस्ती का बस्त शरीरा गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा आसा कहाँ सुआन को सिमरत सुनाए कहाँ साकत कह हर गुण गाए राम राम राम रमे रम रही है साकत सो पूल नहीं कही है रहाओ कौआ कहाँ कपूर चराए कह बिसियर को दूध पियाए सत संगत मिल विवेक बुद्ध होई पारस परस लोहा कंचन सोई साकत स्वान सब करे कराया जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया अमृत ले ले नीम सिंचाई कह कबीर ओआ को सहज न जाई आशा लंका सा कोट

अगन कुंड रहाया, दस मास माता उदर राख्या, बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया, पूरब जन्म कर्म पूम बीज नहीं बोया, रहाओ बारिक ते बिर्द पया, होना सो होया, जा जम आए चोट पकरे, तब है काहे रोया, जीवने की आस तर है जम निहारे सासा, बाजी गरी संसार कबीरा, चेत टाल पासा, आसा, तन रैनी मन पुनरप कर हूं, पांचों तत बराती, राम राय स्यों पावर ले हो, आत्म तिह रंग राती, गाओ गाओरी दुल्हनी मंगल चारा, मेरे गृह आए राजा राम पुकारा रहाओ, नाभि कमल में बेदी रचने, ब्रह्म ज्ञान उचारा, राम राय सो दूलो पाया, असबद पाव हमारा, सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट के तीस उजाना, कह कबीर मोह ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवाना, आशा, सास की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरो रे, सखी सहेली ननद गहेली, देवर के बिरह जरोरे, मेरी मत गौरी मैं राम बिसारे हो, किन विद रहन रहो रे, से जय रमत नैन नहीं पेखो, ये दुख कासों कहो रे रहाओ, बाप सावका करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े पाई कह जब संग होती, तब हो ना प्यारी, कह कबीर पंच को चगरा, चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया, मैं राम रमत सुख पाया, आशा, हम कर सूत तने नित ताना।

गोविंदा जम द्वार जब पूछस बवरे तब क्या कहस मुकंदा रहाओ हम गोरु तुम ग्वार गुसाई जन्म जन्म रखवारे कब हु न पार उतार चरायो कैसे खसमा मारे तू बामन मैं काशीक दुल्हा बुझो मोर गियाना तुम तो जाचे कूपत राज।

आशा जो मैं रूप किए बहुत तेरे अब पुन रूप न होई ताजा तन साज सब खाता राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदरी।

कहां गया परम सब छूटे। सर्व पूत ए तय कर जानिया चूके बाद विवादा, कह कबीर मैं पूरा पाया पहे राम प्रसादा। आशा रोजा करे मनावे अल्हो स्वागत जी सिंघारे, आपा देख अवर नहीं देखे काहे को चख मारे। काजी साहिब एक तो ही मैं तेरा सोच विचार न देखे, खबर न करे दीन के बौरे ताते जन्म अलेख है। रहाओ साच कतेब बखाने अल्हो नार पुरख नहीं को।

गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब गुरुदम दिया दिखाई ऐसा पहली करूप कुछ आप कुलखनी सहरह के ही है बुरी अब की स्वरूप।

रहो रहोरी बहुरिया कुंगत जिन काडे अंकी बार लहेगी ना आडे रहाओ कुंगत काड गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे कुंगत कादे की एह बड़ाई दिन दस पांच बहु पले आई कुंगत तेरो तो पर साचे।

हाँ, कोरी को काहू मरम न जाना, सब जग अंत आयो ताना। रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतना पसरे ताना।

तहता सी मन माना, जो लाहे कर अपना चीना, सत ही राम पछाना। कहत कबीर कार गह तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी आसा। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, किस बैकुंठ न जाना। लोक पति ने कछु न होवे।

माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बूझे कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सब

का मन मेरो गाजी जुहबा मेरी काटी मत मत काटो जमकी फांसी कहां करो जाती कह करो पाती राम को नाम जपो दिन राती रहाओ रांगन रांगो सीवन सीवो राम नाम बिन करी न जीवो भगत करो हर के गुण गावो आठ पहर अपना खसम पे आवो सोईने की सुई रुपए का तागा नामे का चित हर सो लागे।

आ जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ, सिंगच भोजने जो नर जाने ऐसे ही ठग दियो बखाने। नामी के स्वामी लाए ले चगरा, राम रसायन पियो रे दगरा खासा। पार ब्रह्म जे चीन सी आशा ते ना भाव सी, रामा भगत।

काल पास अबद लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तप गुर ज्ञान भगत।

रविदास पणे जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही। आशा तुम चंदन हम अरिंद बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊंच पए हैं, गंध सुगंध निवासा। मादो सत्संगत सर्ण तुम्हारी, हम अवगण तुम उपकारी रहाओ। तुम मखतूल सुपेत सपैयल, हम बपुरे जस्ती।

तुझे चरण अरविंद पान मन पान कर पायो पायो रमैया धन रहाओ संपत विपते पटल माया धन। ताम है मगन होत

माटी को पुकरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है रहा। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम

लालच दिख काम लुगद राता, मन बिसरे प्रभ हीरे रहाओ। दिख फल मीत लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया। गुंते पीत बदी अनुपांती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे। दिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ध्यान मान मन एक मये। प्रेम पगत मानी सुख जानिया, तृप्त अघानी मुक्त भये। ज्योत समाए समानी जाके, अचली प्रभ पहचानिया। तन्ने तन पाया करनी तर, मिल जन संत समा।

इत्यादि माया। प्रगत हुआ साध संग हर दर्शन पाया, सैन नाई बुत कारिया ओ कर कर सुनिया, हृदय वस्या पार ब्रह्म पगता में गनिया।

राग गुजरी महला पहला, चौक दे कर पहला। तेरा नाम करी चरनाठिया, जे मन उरसा होए, करनी कुंगू जेर ले, कट अंतर पूजा होए। पूजा की के नाम त्याय, दिन नावे पूज न होए रहाओ। बाहर दे पखालिये, जे मन तोवे कोए, झूठ लह जीव मा।

निसारे संभाले जो देवै सो खावना, कहो नानक साचा है। गुजरी मैला पहला नाभि कमल ते ब्रह्मा, उपजे वेद पड़े मुख कंठ सवार, ताको अंत ना जाई लखना।

कार रहाओ। राव सस दीपक जाके त्रिभुवन एका ज्योत मुरार, गुरुमुख हुए सो एनस निर्मल मन मुख रहन अंधार, सिद्ध समाज करें नित चगरा दो लोचन क्या हेर, अंतर ज्योत शब्द तुन जागे सतगुर चगर निवेर, सुर नर नाथ बेअंत अजोनी सच महल अपारा, नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा।

जित हर प्रीत न पाए, जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए। ऐसा सतगुरु सेविए मना जित सेविए, गोविंद प्रीत उपजे अवर विसर सब जाए। हर से की चित गहर है, जरा का पौ न हो वही जीवन पदवी पाए। रहाओ गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी आप से ती आप खाया, कामन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समय।

ऐसा सतगुरु ना पाए जे लोचे सब कोए, कूड़े की पाल विच्चों निकले ता सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे सतगुर का पाना चित करे, सतगुर आपे कृपा करे गुजरी महला की जा। हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी, हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाये दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी। हर मेरी प्रीत रीत है हर मेरी कथा कहानी जी, गुर प्रसाद मेरा मन पीजे यहाँ सेव बनी जियो राव। हर मेरा सुमरत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंदक हर मेरा भाई, हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त है, हर मेरा साथ अंत होए सखाई। हर दिन होर रास पूरी है चलदिया नाल न जाई, हर मेरा तन मेरे साथ चाले जहाँ हो जाऊं तह जाई। सो टूठा जो टूठे लागे सूठे कर्म।

जाओ। सतगुरु मिले हर मन वसे, सहजे रहे समाए रहाओ। जहाँ पौ पाए अपना बैराग उपजे मन आए, बैरागे ते हर पाए हर सू रहे समाए। से मुक्ते जे मन जिने फिर कात न लागे आए, दसवें द्वार रहत करे त्रिभुवन सो जी पाए। नानक गुर ते गुर होया वेखो तिस की रजाए।

तृष्णा मूल न चुके अंत गए पछताए। अनेक तीरथ जे जतन करे ता अंतर की हो मैं कदे न जाए। जिस नर की दुबदा न जाए कर्म राय तिस देश जाए। कर्म हो वै सोई जन पाए गुरमुख बूझे कोई। नानक विचों हों मैं मारे ता हर के तै सोई गुजरी मैला की जा। तिस जन शांत सदा मत न चल जिसका अभिमान गवाए। सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे हर चरणी चितलाए। हर चेत अचेत मना जो इच्छे सो फल होई। गुर प्रसादी हर रस पावे पीवत रहे सदा सुख होई। रहाओ सब गुर पेते ता पारस होवे पारस होए ता पूज कराए। जो उस पूजे

ही अंत गया पछताए। क्यों मन काशी सब तीरथ सिमरत सतगुरु दिया बुझाए। अस्त तीरथ किस संग रहे जिन हर हृदय रहा समाए। नानक सतगुरु मिले हुक्म बुझिया एक वसिया मन आए। जो तुद पावे सब सच है सच्ची रहे समाए। गुजरी महला की जा

जा। एको नाम निदान पंडते सुन शिक्षा छोई, दूजे पाए जेता पढ़े परत गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई, हर रस रसना चाक तू तामन निर्मल होई राव। सतगुर मिले मन संतोषी है ता फिर कृष्णा पूख न होए, नाम निधान पाया पर कर जाय ना कोई। कतनी बदनी जे करे मन मुख बूझ न हो।

गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई, हर कीरत हमरी रह रास राव। हर जन के वड पाग वडेरे, जिन हर हर सरदार प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाए, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल नानक नाम प्रगास। गुजरी महला चौथा। गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम, मिल सतसंगत शब्द मन मोह। जप गोविंद गोविंद त्याये, सबको दान दे प्रभ ओ है। मेरे भाई जना मोह को, गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है। गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा, मिल गुर साध संगत जन सो है। रहाओ सुख सागर हर पगत है, गुरमुख कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा, हर नाम जपत हर नामे सो है। गुरमत पागहीन मत फीके, नाम सुनत आवे मन रो है। कौआ काग कौ अमृत रस पाई है, तृप्त विस्ता खाए मुख गो है। अमृत सारे सतगुर सतवादी, जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वड पागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा। हर जन उत्तम उत्तम बाणी, मुख बोले पर उपकारे। जो जन सुने सर

गुरमुख वड़ पागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे हैं गुरमत भगत पंडारे जिन दर्शन सतगुरु सतपुरुष ना

नानक जन हर की शरणाई, हर पावे हर निस्तारे, गुजरी महला चौथा। ओ दयाल मेरा मन लावो, हूँ अंगन राम नाम नित्याई, सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपे दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई, गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दर्ज है ले छाई रहाओ। तू आपे दाता प्रभ अंतर जानी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभु हर हर शरणा, तिन दरगे हर हर देव दे आई, तन तन सबा।

राम जीवाया। हम होवे लाले गोले गुरसिखा ते, जिना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया। मेरे मन तन बिनो गुरसिख पग लाया, मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई। मोको करो उपदेश हर मिले मिलाया। रहाओ जहाँ हर प्रभ पावे ता गुरमुख मेले, जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया। वड पागी गुर के सिख प्यारे, हर निर्वाणी निर्वाण पद पाया। सब संगत गुर की हर प्यारी, जिन हर हर नाम मीठा मन पाया। जिन सतगुरु संगत संग न पाया, से पागहीन पापी जम खाया। आप कृपाल कृपा प्रभ तारे, हर आपके गुरमुख मिले मिलाया। जन नानक बोले गुरबाणी गुरबाणी, हर नाम समाया। गुजरी महला चौथा, जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभ पाया। मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे, मन तन शीतल सब हरिया हुआ। वड पागी हर नाम से आवे, पाई रे मोको कोई आय मिले हर नाम दृढ़ावे। मेरे प्रीतम प्राण मन तन सब देवा, मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे। रहाओ नीरज तरम गुरमत हर पाया, नित हर नाम है हर सोचित लावे। अमृत बचन सतगुर की बाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। निर्मल नाम जित मैल न लागे, गुरमत नाम जपै लिव लावे। नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, से पागहीन मोए मर जावे। अनद मूल जग जीवन दाता, सब जन को अनद करो हर त्यावे। तू दाता जी सब तेरे, जन नानक गुरमुख बख्श मिलावे। ओंकार सतगुरु प्रसाद, गुजरी महला चौथा कर कीजा। माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना को संबंध हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे हो मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस है शरीर। रहाओ भगत जना को सरदा आप हर लाई, विच्चे दुरुस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर्ष्यों बन आई, तब जो किस करे सो मेरे हर प्रभ पाई। जित कारे कम हम हर लाए, सो हम करें जो आप कराए। जिनकी पगत मेरे प्रभ पाई, ते जन नानक राम नाम लिव लाई।

तंतु पाए ताकारिज आ गया कर तरिया मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरिया गुरु प्रसाद परम पद पाया सूखे पास सहरिया रहाओ जनन पिता लोक सुख बनता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर काहे मन पौ करिया उड़े उड़ आवे सह कोसा किस पाछे बचरे चरिया उन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया सब निदान दस अस्त सिधान ठाकुर कर तल करिया जन नानक बल बल सद बल।

संसारी अंतर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक हो सगले व्यवहारी रहा। शासक वेद सिमरत सब सो दे, सब एका बात पुकारी। बिन गुरु मुक्त न को पावे, मन वेखो कर बिचारी। असठ मज्जन कर स्नाना, प्रम आए थर सारी। अनक सोच करें दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जग पायो, अब आए हर द्वारी। दुर्मत मेष बुद्ध परगासी, जन नानक गुरुमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमख न बिसरो मन।

रहाओ। हर तन स्नान हर तन ज्ञान हर संग लायक आना, हर तन तुल्हा हर तन देड़ी हर हर तार पराना।

नवनिद पाई आश्चर्य हर प्रकार आवो खर्चो कोट न आवे हलत पलत के संगे लाज खजाना गुरु नानक को दिया यो मन हर रंग रंगे। निमख ना बिसरो तुम को हर हर सदा पजो जगदी सुराव सतगुर तुम को होए दयाला संत संग तेरी प्रीत कापड़ पथ परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कभी न व्यापे चिंता पावर तुम्हारा यो मन हो हर चरणा हो कौला नानक दास उन

कहाओ। देश कमावन तंजोरन की मनसा बीचे निकसे सास, लश्कर नेब खवास सब त्यागे जमपुर ऊठ सिदास।

सुंदर बाग मंदिर संग न कछु जाया, अवर सब मिथ्या लोभ लभी, गुरपुरे दियो हर नामा, जी को एहा वस्त सभी रहाओ। इष्ट मीत बंदक सुत पाई, संग बनता रच हसया, जब अंति औ

सगल करत नमस्कारो। वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो। ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो सगल सृष्ट को तनी कही जय। जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारो। नाम देव त्रिलोचन।

पई कल्याण आनंद रूप हुई है, उबरे बाल गोपाल रहाओ, मिलवर नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार, कहो नानक तिस गुर बलिहारे, जिन सबका किया उधार, गुजरी मैला पंजवा, मात पिता पाई सुत

आहे न मोरा मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही मैं आयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे इहा उहा तुम्हारा जोरा साध संग नानक दर्श पायो बिनसो सगल ने होरा गुजरी मैला पंजवा। आल जाल प्रम मोहत जावे प्रभ से ती रंग लाई मन को।

मेरे सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माहे चरण कमल रिद माहे समाये तह परम अंधेरा नाहे ठाकुर जा सिमरा तू ताहे कर कृपा।

चित चित वो हर रसन अरादो, निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर, बिनो करो कर जोर। नाम जपे नानक दास तुमरो, उदरस आखी फोर। गुजी महला पंजवा। ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक, आई इंद्र लोक ते ताए। साध संगत को जो है न साके, मल मल तो वे पाए। अब मोह आए पर्यो शरण आए, गोज पाव को बहुत प्रजा रहे।

जगत कपटे अनक जुगत कर कायो विसरत प्रभ के ते दुख गनिये महामोनी खायो करो अनको स्वामी मेरे गनो न मोहे कमायो गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो गुजरी मैला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़ आन व्यवहार मिथ्या पाज सदा भगवंत रहाओ नाम एक आधार भगता ईत आ गए तेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण समर्थ श्री कर शरण ताकी गही मुक्त जुगत रवा।

कह सगल उपाद रहाओ। मात पिता सुत वीत पाई तिस बिना नहीं कोए, ईत ऊत जी नाल संगी सर्व रवे आसोए, कोट जतन उपाव मिथ्या कछ न आवे काम, शरण साधु निर्मला गत होए प्रभ के नाम, अगम

सांस सांस आराध हर हर लह जाए मन की चिंग। मेरे मन जाप तब का नाम सुख सहज आनंद पावे मिली निर्मल थाओ रहाओ। साध संग उधार एहु मन आठ पहर आराध काम क्रोध अहंकार बिन सह मिटे सगल उपाद। अटल अछेद अपेद स्वामी शरणता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक सों लिवलाओ। पार ब्रह्म प्रभु दयाकारी बक्ष ली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया।

सास सास ना बिसर कब हूँ ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनित रसना क्या बखाने अगनत सदा कथ दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर शरण गुजरी मैला पंजवा अहं बुद्ध बहु सजन माया महादीर्घ रोग हर नाम औखद गुरु नाम दीनो करण कारण जोग मन तन बांसी है जन तूर कोट जन्म के लह पातित गोविंद लोचा पूर रहाओ आद अंते मद आशा कुकरी विकराल गुरु ज्ञान की

निवारे, मिले हर जन संत सर्व विद प्रम के पुकारे, कत नाई छोट हर चरण शरण अपार प्रभ के।

योगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस्माया मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात तकियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद तास्र साधन जागत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनः न गर्भं बिताज अमृत पियाया गुजरी महला पहला कवन कवन जाचे प्रभु दाते ताके अंत न परे सुमार जैसी पूख होए अब अंतर तू समरथ सच देवनहार ऐ जी जब तप संयम सच आधार हर हर नाम दिए सुख पाई है तेरी भगत परे पंडार रहाओ सुन समाज रहे लिव लागे एका एकी शब्द विचार जल थल तरण जगन तह नाही आपे आप किया करतार ना तद माया मगर न छाया ना सूरज चंद ना जोत अपार सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर एका नदर सो त्रिगुण सार पवन पानी अगन तिनकिया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार सर्वे जाचक तू प्रभु दाता दात करे अपने विचार कोट के तिस जाचे प्रभु नायक देंदे तोट नाही पंडार ऊंदे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार सिद्ध समाधि अंत

लाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाके ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। है जी बहुते पेट करें पिछिया को के ते उधर परन कहताए, बिन हर भगत नाही सुख प्राणी, बिन गुर गर्भ ना जा।

सोग विजोग विसर्जत रोग पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की सतगुरु वास हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहा हर गुण रसन रवे प्रभ संगे ज्योतिष पावे सहज हरी बिन हर नाम बिरथा जग जीवन हर बिन नेफल नेत करी ऐ जी खोटे थौर नाही कर बाहर।

निंदक नर काले मुख निंदा जिन गुर की दात न पाए। ऐ जी शरण परे प्रभु बख्श मिलावे बिलम न अदुआर आई। अनदे मूले नाथ सिरनाथा सतगुर मेल मिलाई। ऐ जी सदा दयाल दया कर रव्या गुरमते प्रमन चुकाई। पारस पेट कंचन तात होई सत संगत की वड़ियाई। हर जल निर्मल

पज शरण सतगुरु उबरे हर नाम रिद रमन गुरमत निर्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर जान रतन सारं तै पाए भगत तर पर जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन इहो शरीर तो सरणी लब लोभ।

भगत न होई, जीवत मरे ता शब्द विचार है ता सच पावे कोई। माया के अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत विचारी, गुर प्रसादी।

हर दिन जियरा रह न सके ज्यो बालक खीर अधारी, अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये अपने सतगुर के बलिहारी। मन रे हर कीरत तर तारी, गुरमुख नाम अमृत जल पाये जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ। सनक सनंदन नारद मुन सेवे अन दिन जपत रहे।

जोत मुरारी सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी भगत जना की उत्तम वाणी गावे अकथ कथा नित न्यारी सफल जन्म पया तिन केरा आप सरे कुलतारी मन मुख दुबदा दुर्मत व्यापे जिन अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा ना पावे ओई डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल तोवे ओ मल पख माया तारी संत जना की निंदा व्यापे ना उर्वार न पारी यो परपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी हर एक को सूत वरते जुग अंतर सूत खिंचे एकंकारी रसन रसन रस गावे हर गुण रसना हर रस तारी नानक हर बिन

राजन में तू राजा कहिए, पूमन में पूमा, ठाकुर में ठकुराई तेरी, कोमन सिर कोमा, पिता मेरो बड़ो तनी अगमा,

हरन मदमो दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरण निवार तरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिदमंत छेद अहंग बुद्ध करुणा में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सहज समाद दीन दयाल।

विदार मानते उधर हर निरंकार तनाड आड पंडार हर निद होत जिनाना चीर खल मुगद मूड कटाख श्री तर पे गुण मत तीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन तार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमणं परम हंसै रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभु नानक।

एहो जगत ममता मुआ जीवन की बिद नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसै गुरमुख सह समाए। महला तीजा, अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कभे न जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे क्यों मन मुक्का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन तदो होर न कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रै लोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई। जो तिस पावे तिवें करे तिस बिन

ना जाए, सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए। अवर न दूजा क्यों सेवी है जब मैं ते मर जाए, नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने अपना अवरी को चितलाए। नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा, सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच, नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच। कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई, अंधा कच निकच पौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया, हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूँ सब चानना सतगुर सबत सुनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै गुण सिर तंदे लाया। माया का मूल रचायुन तुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा, सो जप सो तप जे सतगुर पावे, सतगुर कह

पौड़ी। माया मोह अज्ञान है भिखम अत पारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों तरिये तारी। अन दिन पगति रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हो मैं छड़ विकारी। हर हर नाम त्याय है हर

होए सो जाए। हौ मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुर मिले हौ मैं गई जोत रही सब आए। इहो जियो सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता।

गणते प्रभु न पाइए दूजे परमीता, सतगुर मिले जीवत मरे बुझ सच समीता, सब देहो में खोइए हर मेल मिलीता, सब किछ जाने करे आप आपे विकसीता। श्लोक महला तीजा। सतगुर स्यो चित न लायो नाम नव स्यो मन आए, त्रिग इवे आ जीविया क्या जुग में पाया आए, माया खोटी रास है एक चसे में पाज लह जाए, हथों छुड़की तन स्याव होए बदन जाए कुमलाए, जिन सतगुर स्यो चित लाया तिन सुख वस्या मन आए, हर नाम त्यावे रंग स्यो हर नाम रहे लिवलाए, नानक सतगुर सो तन सौंपया।

जलम हुई कंत न लायो पाओ नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता उपाय किते न पाई हर कर्म विदाता गुर शब्दी हर मन वसे हर सहजे जाता अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर नाता।

छड़ जाए। केसनो कूड़ बोल के खवा लिया, जे चल दिया नाल न जाए। काया मिट्टी अंध है, पौने पुछो जाए। होता माया मोहया, फिर आवा जाए। नानक हुक्म ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए। महला तीजा, एको ने चल नाम तन, होर तन आवे जाए। इस तन को तस्कर जोए न सके, ना ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जीए सेती रव रहा, जीए ना ले जाए। पूरे गुरते पाईए, मन मुख पले न पाए। तन वपारी नानका, जिना नाम तन खटियाए। पौड़ी, मेरा साहिब अत वड्डा सच गैर गंभीरा। सब जग तिसके वस है, सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाईए, नेचल तन तीरा। कृपा ते हर मन वसे, पेटे गुरसूरा। गुणवंती सलाया, सदा थिर नेचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा, त्रिग तिना दा जीविया। जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुखों में पाप कमाए। मन मुख अज्ञानी माया मोह व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत ओए सुख ना पावे, अंत गए पछताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस होमे विच्चों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा, मन मुख ऊदा कौल है, ना तिस भगत ना नाओ। शक्ति अंदर वर्तदा, कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चितना पिजई, मुख फीका लाओ। ओए तरमर लाए ना।

पौड़ी। बिन बूझे वड्डा फेर पया, फिर आवे जाए, सतगुर की सेवा ना कीतिया, अंत गया पछताए, अपनी कृपा करे गुर पाई है विच्चों आप गवाए, तृष्णा पुख विच्चों उतरे सुख वसे मन आई, सदा सदा सालाई है हृदय लिवलाई। श्लोक महला तीजा। जे सतगुर सेवे आपना तिसनो पूजे सब कोए, सबना उपावा सिर उपाओ है, हर नाम प्राप्त होए अंतर

हर सुखदाता मन वसै, हों मैं जाए गुमान नानक नदरी पाई है, ता अंदिन लागे ध्यान पौड़ी। सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता, तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता, अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता, सबना दाता एक है इको हर मिता। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कहिए जे अंदिन हर लिवलाए, सतगुरु पुछे सच संजम कमावे होमे रोग तिस जाए, हर गुण गावे गुण संग्रह ज्योति ज्योत मिलाए, इस युग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी जे होमे मेट समाए, नानक तिसनो मिलिया सदा सुख पाई है जे अंदिन हर नाम त्याए। महला तीजा। अंतर कपट मन मुख अज्ञानी रसना झूठ बोलाए, कपट कीते हर पुरख न पीजे नित वेखे सुने सुवाए, दूजे पाए जाए जग प्रबोधे बिख माया मोह सुवाए, इत कमाणे सदा दुख पावे जम्मे मरे फिर आवे जाए, सहसा मूल न चुकई विच विष्टा पचे पचाए, जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी तिस गुर की सिख सुनाए, हर नाम त्यावे हर नामो गावे हर नामो अंत छड़ाए। पौड़ी। जिन्ना हुक्म मनायोन ते पूरे संसार, साहिब सेवन अपना पूरे शब्द विचार, हर की सेवा चाकरी सच्चे शब्द प्यार, हर का महल तिन्नी पाया जिन्हों में विचो मार, नानक गुरमुख मिल रहे जप हर नामा उर्धार। श्लोक महला तीजा। गुरमुख त्यान सहज तुन उपजे सच नाम चित लाया, गुरमुख अंदिन रह रंग राता हर का नाम मन पाया, गुरमुख हर वेखे गुरमुख हर बोले गुरमुख हर सहज रंग लाया, नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवे तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया, जिसनो कर्म होवे तुर पूरा तिन गुरमुख हर नाम ते आया। महला तीजा। सत गुर जिना

पे रस होगी। आप अतीत अलिप्त है निर्जोग हर जोगी, ज्योतिष पावे सो करे हर करे सो होगी, हर गुरुमुख नाम ते आये लह जाहे विजोगी। श्लोक महला तीजा, वाह वाह आप अखाएं दा।

नानक वाह वाह करत्या प्रभ पाया करम प्राप्त होए मैला तीजा। वाह वाह करती रसना सबद सुहाई पूरे सबद प्रभ मिलियाई वड पागिया वाह वाह मोह कढाई वाह वाह करें से जन सोने तिन को प्रजा पूजन आई। वाह वाह करम प्राप्त होवे नानक दर सच्चै शोभा पाई पौड़ी। वज्र कपाट काया गढ़ पीतर कूड़ कुसत अभिमानी परम पूले नदर नामनी मनमुख अंध अज्ञानी उपाय किते ना लबनी कर पेख थके पेखवानी गुर शब्दी खोलायन हर नाम जपानी हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह करत्या रहन सुख विहाए वाह वाह करत्या सदा आनंद होवे मेरी माए। वाह वाह करत्या हर्ष्यो लिवलाए वाह वाह कर्मी बोले बोलाए वाह वाह करत्या शोभा पाए नानक वाह वाह सत।

जे सतगुर दिया दिखाए महला तीजा। वाह वाह गुरमुख सदा करें मनमुख मरे बिख खाए। ओना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए। गुरमुख अमृत पीवना वाह वाह करें लिव लाए। नानक वाह वाह करें से जन निर्मले। त्रिभुवन सोजी पाए पौड़ी। हर के पाणे गुर मिले सेवा भगत बनी जय। हर के पाणे हर मन वसे सहजे रस पी जय। हर के पाणे सुख पाये हर लाहा नित ली जय। हर के तख्त बहालिए।

बुझाए वाह वाह करत्या मन निर्मल होवे हों मैं विच्चों जाए वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए वाह वाह करें से जन सोहने हर तिन के संग मिलाए।

जिन सेविया तिन फल पाया हो तिन बलिहारे जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो देसो खाए। वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुर सिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाह पावे। नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणी है सच है इसवाणी। अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी। गुरमति हर

अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुआए, जम्मण मरण न चुके हो मैं विच दुख पाए। जिना सतगुरु से चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब ना हो वही ना ओए दुख सहाए। नानक गुरुमुख उबरे सच्चे सबल समा।

टाडी दर कर पाए सी सच रखे उतार, टाडी का महल अगला हर कहना है प्यार, टाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार। श्लोक महला तीजा, गुजरी जात गवार जा सो पाए अपना, गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना, जिस सतगुर मिले तिस तौ पवे सा कुलवंती नार, सा हुकुम पछाणे कंत का जिसनो कृपा कीती करतार, ओ कुचजी कुलखणी पर हर छोड़ी पतार, पै पै मल कटिए निर्मल होवे शरीर, अंतर प्रगास मत उत्तम होवे हर जप गुणी गहीर, पै विच बैसे पै रहे पै विच कमावे कार, कैथे सुख वडियाईया दरगे मो

पौड़ी अंसा अवतार उपायन पाओ दूजा किया ज्यो राजे राज कमाव दे दुख सुख पिड़िया ईश्वर ब्रह्मा सेव दे अंत तिनी ना लहिया निर्भो निरंकार अलख है गुरमुख प्रगटैया तिथे सोग विजोग ना व्यापई अस्थिर जग थिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किच आवन जान है जेता है आकार जिन एहो लेखा लिखिया सो हो आप परवान नानक जे को आप गणाईदा सो मूरख गावार। महला तीजा। मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा जह खिंचे तह जाए नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुर अपना सेव सब फल पाया अमृत हर का नाव सदा ते आया संत जना के संग दुख मिटाया नानक पय अचिंत हर तन ने चलाया। श्लोक महला तीजा। खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय महल पगती कर सरे सज्जन पाहुण्यो बरसना ता बरसकना बहुड़ बरसे काहे नानक तिन बलिहारण जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा। मिठा सो जो पावदा सज्जन सो जे रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साई तू रखवाला सदा सदा हो तुद ते आई जी जंत सब तेरिया तू रहा समाई जो दास तेरे की निंदा करे तिस्मार पचाई चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लग पाई। श्लोक महला तीजा। आशा करता जग मुआ आशा मरे न जाए नानक आशा पूरिया सच्चे स्यों चित लाए। महला तीजा। आशा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो ले जाए नानक ने चल को नहीं बाजो हर कहना है पौड़ी आपे जग तो पायन कर पूरा थाट आपे साओ आपे वनजारा आपे ही हर हाट आपे सागर आप

गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुरनाओ सतगुर से तीरतिया दरगे पाये ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वस दे जग में उत्तम काडिये विरले के ही के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन सात जना के संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है सच्चो सच्चा सच सच निहारी है कूड़ न जापे किछ तेरी तारी है सबसे दे दातार जेत उपारी है इकत सूत परोए जोत संजारी है हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है तेरी गत मित लकी ना जाए हों तुद बलिहारी है श्लोक महला पंजवा जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर्म है पाहे जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे महला पंजवा किती बहन बहने मुच बजाएं वाज नानक सच्चे नाम विण किसे न रहिया लज पौड़ी तुद त्यायन बेद कते बां सन खड़े गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े ब्रह्मे तुद त्यायन इंद्र इंद्रासना शंकर विष्णु अवतार हर जस मुख पणा पीर पिकाबर शेख मसायक औलिए ओत पोत निरंकार कटकट मौलिए।

पंजवा पतित पुनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग अठसठ तीरथ नाम प्रभ जिस नानक मस्तक पाग पौड़ी नित जपिए सास गिरास नाव परवदगार दा जिसनो करे रहम तिस नाव विसारदा आप उपावन हार आपे ही मारदा सब किछ जाने जान बुझ विचारदा अनेक रूप खिन माहे कुदरत तारदा जिसनो लाए सच तिसे उदारदा जिस दे होवे वल सो कदे न हारदा सदा अपग दीवान है हौ तिस नमस्कार दा श्लोक महला पंजवा काम क्रोध लोभ छोड़िए दीजे अगन जलाए जीव दया नित जापिए नानक साचा नाओ महला पंजवा सिमरत सिमरत प्रभ आपना सब फल पाए आहे नानक नाम आराध्या गुर पूरे दिया मिलाए पौड़ी सो मुक्ता संसार जे गुर उपदेशया तिसकी गई बलाए मिटे अंदेशया तिसका दर्शन देख जगत निहाल होए जन के संग निहाल पापा मैल तोए अमृत साचा नाओ ओथे जापिए मन को होए संतोख पुखा त्रापिए जिस कट वस्या नाओ तिस बंधन काटिए गुर प्रसाद किने विरले हर तन खाटिए श्लोक महला पंजवा।

पंजवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रता मूल नानक जो प्रभ पानिया मरो विचारी सूल। पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प तर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर सात जना कै संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुरुदेव अगै ना मरो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुवर भर मन को होए संतोख त्याये सदा हर सो लगा सतगुर सेव जा को कर्म तुर। श्लोक महला पंजवा लगड़ी सुथान जोड़न हार है जोड़िया नानक लहरी लख से आन डुबन दे नामा पिरी। महला पंजवा बन पिहाव लहिक साथी लदम दुख हरता हर नामा बल बल जाई संत प्यारे नानक पूरन कामा। पौड़ी पायन सब निधान तेरे रंग रत्या ना होवी पछोताओ तुदनो जपत्या पहुंच ना सके कोए तेरी टेक जन गुर पूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन गुर पै सिफत पंडार कर्मी पाये सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना ताये रखे आप दयाल कर दासा अपने हर हर हर हर।

तेंदे सिमरन हब किछ लद्दम बिखम ना डिठम कोई जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट ना सके कोई पौड़ी होवे सुख कणा दे त्याए वन्ये रोगा कान हर गुण गाए अंदर वरते ठांड प्रभ चित आए पूरन होवे आस नाए मन बसाए कोई न लगे विघन आप गवाए ज्ञान पदार्थ मत गुरते पाए तिन पाए सभ्य थोक जिस आप दिवाए तू सबना का खसम सब तेरी छाए। श्लोक महला पंजवा। नदी तरंदड़ी मैंडा खोज न खुंबे मंज मुहब्बत तेरी कौसे चरणी मैंडा हीड़ा सीतम हर नानक तुल्हा बेड़ी। महला पंजवा। जिना दिसंदड़िया दुर्मत बंजे मित्र असाडड़े से हौ टूडे दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया भगता डिठिया मन की कटिये मैल साथ संग उठिया जन्म मरण पौ कटिये जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस्यों लाइन रंग जिस दी सब तारिया ऊंची हूँ ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा। बार विडानले हुमस तुमस कूका पैया राही तौसे सेती लगड़ी डोरी नानक अनद सेती बन गाही। महला पंजवा। सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग ना की चई नानक जिना अपना सुआओ। पौड़ी। सावेला परवान जित सतगुर पेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया पाया नेचर थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए त्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखों बोलेटिया हुक्मे बुझ निहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुड़ न खोटिया। श्लोक महला पंजवा। विछोहे जंबूर खवे ना मंजन गाखड़े जेसो तनी मिलन नानक सुख संभू सच। महला पंजवा। जिमी वसंदी पानी है ईदन रखे पाए नानक सो सो आहे जाके आडल हब को। पौड़ी। तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे सोई वरते जग जे किया तुद तुरे बिस्म पे बिस्माद देख कुदरत तेरिया शरण परे तेरी दास करगत होए मेरिया तेरे हाथ निधान पावे तिस दे जिसनो होए दयाल हर नाम से ले अगम अगोचर बेअंत अंत न पाये जिसनो हो है कृपाल सो नाम ते आई है। श्लोक महला पंजवा। कड़छियां फिरन सुआव ना जान सुनिया से मुख दिसन नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा। खोजी लद्दम खोज छड़िया उजाड़ तैसे दित्ती वाड़ नानक खेत न छिजई। पौड़ी। आरा देव सच्चा सोए सब किछ जिस पास दोहा सिरिया खसम आप खिन में करे रास त्यागो सगल उपाव तिसकी ओट गहो पौ शरणाई पज सुखी हो सुख लहो कर्म कर्म तत् ज्ञान संता संग होए जपिए अमृत नाम बिघन न लगे कोए जिसनु आप दयाल तिस मन उठिया पायन सब निधान साहिब तुठिया। श्लोक महला पंजवा। लद्दम लब्बन हार कर्म करन दो मापिरी इको सिरजन हार नानक बिया ना पसी है। महला पंजवा। पापड़िया पछाड़ बाण सचावा सन कै गुर मंत्रड़ा चितार नानक दुख न थी वही। पौड़ी। वाह वाह सिरजन हार पायन ठाड आप जी जंत मेरवान तिसनो सदा जाप दया तारी समरथ चुके बिल बिलाप नठे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियन अपनी रख गरीब निवाज थाप
आपे लयन छाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख त्राप वड्डी हूं वड्डा अपार खसम जिस लेप न पुन पाप। श्लोक महला पंजवा। जाको पै किरपाल प्रभ हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह पेटत साध संगात। महला पंजवा। राम रमो बड़ पागियो जल थल महियल सोए नानक नाम अराध्य है बिघन न लागे कोए पौड़ी। पगता का बोलिया परवान है दरगे पवे थाए पगता तेरी टेक रते सच नाए जिसनो होए कृपाल तिसका दुख जाए। पगत तेरे दयाल ऊ ना मेहर पाए दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए। पगता एहो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रैन इको इक त्याए पीवत अमृत नाम जन नामे रहे अगाए। श्लोक महला पंजवा। कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अन दिन बिलपते ज्यो सुन्ये कर काओ। महला पंजवा। प्री मिलावा जाथी है साई सुहावी रुत कड़ी मोहत न विसरै नानक रविय नित पौड़ी। सूर वीर वरियाम किने न होड़ी है फौज स्थानी हाठ पंचा जोड़ी है दस नारी औ दूत देन चमोड़ी है जिन जिन लैन रलाए एहो ए ना लोड़ी है त्रै गुण इन कै वस किने ना मोड़ी है परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है।

पूरा आराध विखमंडल फोड़ी है, हौ तिस अगे दिन रात रहा कर जोड़ी है। श्लोक महला पंजवा। किल विख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ, कोट कलेसा उपजे नानक बिसरे नाओ। महला पंजवा। नानक सतगुर पेटे पूरी होवे जुगत, हसंदियां खेलंदियां पैनंदियां खावंदियां विचे होवे मुक्त पौड़ी। सो सतगुर तन तन जिन परम घर तोड़िया, सो सतगुर वाह वाह जिन हरस्यो जोड़िया। नाम निधान अखुट गुर दे दारुओ, महारोग विकराल तिने बिदारुओ। पाया नाम निधान बहुत खजानिया, जिता जन्म अपार आप पछानिया। महिमा कही न जाए गुर समरथ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अभेव। श्लोक महला पंजवा। उद्यम करेंदियां जियो तू, कमाउंदियां सुख पुंच त्याइंदियां तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डर पिए, जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अर्पिए। आए चित निहाल साहिब बेसुमार, तिसनो पोहे कवन जिस वाल निरंकार। सब किछ तिस कै वस ना कोई बारा, सो पगता मन बुठा सच समाहरा। तेरे दास ते आयन तुद तू रखन वालिया, सिर सबना समरथ नदर निहालिया। श्लोक महला पंजवा। काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट वासना निवार, राख लियो प्रभ अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवा। खांदिया खांदिया मोह कटा, पैनंदिया सब अंग। नानक त्रिग तिना दा जीविया, जिन सच ना लगो रंग पौड़ी। ज्यो ज्यो तेरा हुक्म त्यों त्यों होना, जय जय रखे आप तह जाए खड़ोवना। नाम तेरे कै रंग दुरमत तोवना, जप जप तुद निरंकार परम पौ खोवना। जो तेरे रंग रते से जोन ना जोवना, अंतर बाहर इक नैन अलोवना। जिनी पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना, नाओ नानक बख्शीस मन माहे परोवना। श्लोक महला पंजवा। जीवन दिया ना चेत्यो मुआ रलंदड़ो खाक, नानक दुनिया संग गुदारिया साकत मूड नपाक। महला पंजवा। जीवन दिया हर चेत्या मरन दिया हर रंग, जन्म पदार्थ तारिया नानक साधु संग पौड़ी। आप जुगादी आप रखन वालिया, सच नाम करतार सच पसारिया। ऊना कही ना होए कटे कट सारिया, मेहरवान समरथ आपे ही कालिया। जिन मन उठा आप से सदा सुखा लिया, आपे रचन रचाए आपे ही पालिया। सब किछ आपे आप बेअंत अपारिया, गुर पूरे की टेक नानक संभालिया। श्लोक महला पंजवा। आद मद अर अंत परमेश्वर रखिया, सतगुर दिता हर नाम अमृत चखिया। सादा संग अपार अंदिन हर गुण रवे, पाए मनोरथ सब जोनी न पवे। सब किछ करते हथ कारण जो करे, नानक मंगे दान संता तूर तरे। महला पंजवा। तिसनो मन वसाए जिन उपाया, जिन जनते आया कसम तिन सुख पाया। सफल जन्म परवान गुरमुख आया, हुक्मे बुझ निहाल खसम फुरमाया। जिस हुआ आप कृपाल सो नह परमाया, जो जो दिता खसम सोई सुख पाया। नानक जिसे दयाल बुझाए हुक्म मित, जिसे फुलाए आप मर मर जमे नित पौड़ी। निंदक मारे तत्काल खिन टिकन न दिते, प्रभ दास का दुख ना खब सके हर जोनी जुते। मथे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते, दुख लगे बिल लाणिया नरक कोर सुते। कंठ लाए दास रखियन नानक हर सते। श्लोक महला पंजवा।

चार पाव दो सिंह गुंग मुख तब कैसे गुण गई है। ऊठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुस्थई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसर्यो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो गत बिन रहन बेही है। कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछताई है। गुजरी करती जा मुस मुस रोवे कबीर की माई ए बारक कैसे जीवे रघुराई। तनना बुनना सब तजो है कबीर हर का नाम लिख लियो शरीर। रहाओ जब लग तागा बाहो बेई तब लग बिसरे राम स्नेही।

सतगुरु प्रसाद। जो राज दे ता कमन बढ़ाई, जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई। तू हर पज मन मेरे पद निर्बान, बौर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब ते उपाई परम पुलाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई।

मले ना लाछे पार मलो, परमलियो बैठो री आई, आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई, कौन कहे किन बूजिए रमैया आकुल री बाई, रहाओ जो आकाश है पंखियलो खोज निरखियो ना जाई, ज्यो जल माजे माछलो मार्ग पेखनो ना जाई, ज्यो आकाश है कड़ुअलो मृग तृष्णा परया, नामे चे स्वामी बीठलो जिनती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे करती जा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। दूध त बचरे थनो बिटारियो, फूल पवर जल मीन बिगारियो, माई गोविंद पूजा कहा ले चरावो, और ना फूल अनूप ना पावो, रहाओ मैलागर बेरे है पयंगा, बिख अमृत बसे इक संगा, तूप दीप नई बेदे बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा, तन मन अर्पो

त्रिलोचन जियो के पदे कर पहला इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। अंतर मल निर्मल नहीं कीना बार पे खुदासी, हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना काहे पया सन्यासी। परमे पूली रे जय चंदा, नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ। कर कर खाया पिंड बंडाया, चिंता मुंडा माया। ओम मसान की पसम लगाई, गुर बिन तप्त न पाया। काय जपोरे काय तपोरे, काय बिलो वो पानी।

84 जिन उपाय सो सिमरो निर्वाणी काय कमंडल कापड़िया रे 68 काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे सर्प जोन वल वल अवतरे अरी बाई गोविंद नाम मत बिसरे रहाओ अंत काल जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे बेसवा जोन वल वल अवतरे अंत काल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे सूकर जोन वल वल अवतरे अंत काल जो मंदर सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे प्रेत जोन वल वल।

सतगुरु प्रसाद। परमाद पुरख मनोपिमं सत आद पावरतं परमद्भुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं नादनोत जस समरणेन जन्म जराद मरण पयं प्रहाव इच्छस जमाद पराभयं जस स्वस्त सुकृत कीर्तं पाव पूत पाव समभ्यं परमं प्रसन्मिदं लोबाद दृष्ट परग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोकृत दुर्मति पज चक्र तर शरणं हर पगत निज ने केवला हृद कर्मणा।

हम विषम कई मुख लागे। सगली रहें सोई अंधियारी, गुर किंचित कृपा जागे। जन नानक के प्रभु सुंदर स्वामी, मोय तुम सर अवर न लागे। देव गंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गली, हर को संत बतावो।

लटरी मदरी ठाकुर पाई ओ सुंदर हर कुल मिली। एक प्रयो सखियां सब तरह की जो पावे पुरसा बली। नानक गरीब क्या करे बिचारा हर पावे कितरा है चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है। गुरमुख रंग चलू ले राती हर प्रेम पीनी चोली है। रहाओ हो फिरो दीवानी आवल बावल किस कारण हर टोली है। कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा हम किसकी गुलगोली है। सतगुरु पुरख मनावो अपना हर अमृत की चोली है। गुरु प्रसाद।

बुरा कहो हम तन दियो है तार। जो आओ शरण ठाकुर प्रभ तुमरी किस राखो कृपा थार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार। देव गंधारी हर गुण गावे हों किस बलिहारी। देख देख जीवा साध गुर दर्शन जिस हृदय नाम मुरारी रहाओ। तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी हम क्यों कर मिले जुठारी। हमरे जिए होर मुख होर हो तो है हम कर्म ही कूड़ियारी। हमरी मुदर नाम हर स्वामी रुद अंतर दुष्ट दुष्टारी। जो पावे क्यों राखो स्वामी जन नाम शरण तुम्हारी। देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नट्टी। जो बेसुआ के कर पूत जमत है किस नाम परयो है कपटी रहाओ। जिनका हृदय नाम हर स्वामी ते बिगड़ रूप बेरक्ती। जो निगुरा बहु बाता जाने ओह हर दरगे है प्रस्ती। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी तिना साध जना पग चकती। नानक पतित पवित मिल संगत गुर सतगुर पाछे चुकती। छक्का पहला देव गंधारी महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई गुर चरणी चितलाई है प्रभ होए कृपाल कमल प्रगासे। सदा सदा हर त्याई है रहाओ अंतर एको बार एको सब में एक समाई है। काट अब घट गया सब खाई हर पूरन ब्रह्म दिखाई है। पुस्तक करे सेवक मुन के तेरा अंत ना कतु पाई है। सुख दाते दुख पंजन स्वामी जन नाम सद बल जाई है। देव गंधारी माई होन हार सो होई है। राज रहो रचना प्रभ अपनी कहां लाभ कहां खोई है रहो। कै फूले आनंद बिखे सोग कब हसनो कब रोई है। कब हूँ मैं परे अभिमानी कब साधु संग तोई है। कोई न मेटे प्रभ का किया दूसर नानी अलोई है। कहो नानक किस गुर बलिहारी जिन पर साग सुख सोई है। देव गंधारी माई सुनत सोच पै डरत। मेर ते तजो अभिमाना शरण स्वामी की परत रहाओ। जो जो कहे सोई पल मानो नाही ना का बोल करत। निम्फ न बिसरो हिये मोरे ते बिसरत जाई हों मरत। सुखदाई पूरन प्रभ करता मेरे।

आया परम अंधेरा लही। जान प्रवीण स्वामी प्रभ मेरे शरण कुमारी अही। खिन मैं खाप उठा पुनहारे कुदरत की न कही। देव कुमारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुख दाते। गुरु प्रसाद काहूं जाते रहाओ संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल न खाते। रंग तुम्हारे लाल कहे हैं राम नाम रसमाते। महाकिल्बित कोट दोत रोगा प्रभ दिष्ट तुहारी हाते। सोत जाग हर हर हर गाया नानक गुरु चरण।

अंग गुंग पिंगल मत हीना प्रभ राखो राखन हारा कर कराम हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा देव गंधारी महला पंजा सो प्रभ नेरे हूते नेरे सिमरत आए गाय गुण गोविंद दिन रैन सांस सवेरे रहाओ उदर दे दुलभ साधु संग हर हर नाम जपे रह करी न मोहत न चसा बिलंब हो काल नित नित हेर अंग बिलाते काजो करते क्या नाही करते रह नाम आधार दीजे नानक को अंग सूख कने रह छके दूजा देव गंधारी महला पंजवा मन गुर मिल नाम आराध्यो सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल बांधो रहाओ कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया फांदो पाओ भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साध्यो पयो अनुग्रह मिट्यो मोर्चा अमोल पदार्थ ला दियो बलिहार नाम लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगा दियो देव गंधारी महला पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे सफल आया जीवन फल ताको पार ब्रह्म लिवलावे रहाओ सुंदर सुगड़ सूर सो बेता जो साधु संग पावे नाम उचार करे हर रसना बहुड़ न जो नी पावे पूरन ब्रह्म रव्या मन तन में आम न दृष्टि आवे नरक रोग नहीं होवत जन संग नानक जिस लड़ लावे देव गंधारी महला पंजवा चंचल सुपने ही उर्जायो इतनी न बूझे कबू चलना बिकल पयो संग मायो रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया बिखिया एक उपायो लोभ सुने मन सुख कर माने देव कहाँ उठतायो फिर्क बहुत श्रम पायो संत दुआरे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी नानक लियो समायो देव गंधारी महला पंजवा सर्व सुखा गुर चरना कलमल दारन मने सुधारन एह आसर मोहे तरना रहाओ पूजा अर्चा सेवा बंदन एह टहल मोहे करना बिकसे मन होवे प्रगासा बहुर न गर्वे परना सफल मूरत परसों संतन की एह त्याना करना पयो कृपाल ठाकुर नानक को परयो साध की सरना देव गंधारी महला पंजवा अपने हर पै बिनती कही है चार पदार्थ अनंत मंगल निध सुख सहज सिद्ध लही है रहाओ मान त्याग हर चरनी लागो तिस प्रभ अंचल गही है आँच न लागे अग्न सागर के सरन स्वामी की अही है पूर्व प्राग महा अकीर्त कम बहुर बहुर प्रभ सही है करना मैं पूरन परमेश्वर नानक के सर नहीं है देव गंधारी महला पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा रोग शोक सब दुख विनाशे उतरे सगल कलेसा रहाओ जन्म जन्म के किल विनाशे कोट मजन स्नाना नाम निधान गावत गुण गोविंद लागो सहना कर कृपा अपना दास कीनो बंधन तोड़ निहारे जप जप नाम जीवा तेरी बाणी नानक दास बलिहारे छके तीजा देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरण निहारो करो अनुग्रह स्वामी मेरे मन से कभू न डारो रहो साधु तूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध दिख जारो सबसे नीच आत्म कर मानो मन में एह सुख पारो गुण गावे ठाकुर अविनाशी कलमल सगले चारो नाम निधान नानक दान पावो कंठ लाए उर्धारो देव गंधारी महला पंजवा प्रभ जियो पेखो दर्श तुम्हारा सुंदर त्यान तार दिल रहनी जी प्राण ते प्यारा रहाओ शास्त्र वेद पुराण अवलोके सिमरत तत विचारा दीना नाथ प्राण पत पूरन पव जल उदरन हारा आजुवाद भगत जन सेवक ताकी बिथे अधारा तिन जन की तूर बंश है नित नानक परमेश्वर देवन हारा देव गंधारी महला पंजवा तेरा जन राम रसायन माता प्रेम रसा निज जा को उपजी छोड़ न कतहु जाता रहाओ
बैठत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अब सब तीरथ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता सफल जन्म हर जन का उपजिया जिन कीनो सौत विदाता सगल समूह ले उदरे नानक पूरन ब्रह्म पछाता देव गदारी महला पंजवा माई गुरु बिन ज्ञान न पाई है अनेक प्रकार फिरत बिल्लाते मिलत नहीं गोसाई रहाओ मोह रोग सोग तन बांधियो बहु जोनी परमाई है टिकन न पावे बिन सत्संगत किस आगे जाए रुआई है करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट कोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाई है देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप हुई है उबरे बाल गोपाल रहाओ दोए कर जोर करी बेनंती पार ब्रह्म मन से आया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए जो सबना करे उधार इको अंकार सतगुरु प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुरु पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख पंजन मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सया कर मस्तक तार साध निवाजे मोहे दुष्ट जो खया परोपकारी सर्व सधारी सफल दर्शन सह जया कहो नानक निर्गुण को दाता चरण कमल उर दरिया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे शरण आयो राखन हारे रहाओ सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछे अंति वारे जब चितो तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाओ साथ दरसारे मन में राखो एक असारे नानक प्रभ मेरे करने हारे देव गंधारी महला पंजवा प्रभ यह मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल मोह दीजै कर संतन का चेहरा रहाओ प्रातः काल लागू जन चरण

संत संग नित रही है। एक आधार नाम कनमोरा अंग नानक एह लही है। राग देव भंडारी महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ न जाए सब ही संगे अंदिन गुर मिल गाए रहाओ। मिलियो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कठु जाए अनक अनक पांच बहु पेखे प्रिय रोम ना समसर लाए। मंगर पाग सोग

महला पंजवा दर्शन नाम को मन आछे प्रम आयो है सगल खान रे आहे परयो संत पाछे रहाओ किस हो सेवी किस आराधी जो दिसते सो गाछे साध संगत की सरनी परिय चरण रेन मन बाछे जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्तर माया आए पयो नानक गुरचरनी

सारे कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन शीतल बिसारे देव नदारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारे हो दीन दयाल पे प्रभ अपने बहुर जन्म नहीं मारे हो रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रतन जन्म नहीं हारे हो प्रभ गुण गाए बिखे बन तरिया

ऊंचा आन न हम सर को लागे, टूट रहे हम ऊंचा रहाओ, बहु व्यंत अत बड़ो बारो, हा नहीं अगहूचा, तोल न तुलिये मोल न मुलिये, कत पाइये मन रूचा, खोज असंखा अनिकित पंखा, बिन गुर नहीं पहुंचा, कहो नानक कृपा करी ठाकुर, मिल साधु रस पूंचा देव। जंगारी महला पंजवा।

अगम अगम्मा कवन महिमा मन जीवे सुन सो। चार आश्रम चार ग्रन्ना मुकत पे सेव को। गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो। कहो नानक पव सागर तरिया हर निज पाई सहजो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक कह रे हर एक कह जान एक कह रे गुरुमुख जान। रहाओ काहे परमत हो तुम प्रमो।

महला पंजवा जानी ना जाई ताकी बात रहाओ कह पे थारो हों कर कतराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर साधिक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादिक चतुर्वेद उचरत दिन रात अगम अगम ठाकुर आगाद गुण बेअंत बेअंत तन नानक कह न जाई परे परा देव गंधारी महला पंजवा त्याए गाय करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अंत को ही रे एक समार रहो सफल मूरत गुर मेरे माथे है जब तक देखो तब तक साथ है चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ अथा बड़ा प्रभ मेरा कट कट अंतर साहिब मेरा ताकी शरण आसर प्रभ नानक जापा अंत ना पारावार देव गंधारी महला पंजवा उल्टी रे मन उल्टी रे सातक्षों कर उल्टी रे झूठे की रे झूठ परीत छुटकी रे मन छुटकी रे सात संग।

पाई सुत बंदक और सुन गृह की ना रहो तन से प्राण होत जब न्यारे तेरक प्रेत पुकार आज घरी को न राखे कर के देख निकार मृग कृष्णा जो जग रचना यह देखो हृदय विचार कहो नानक पज राम नाम नित जाते होते उदार देव गंधारी में।

रीत अंत काल संगीन है को ए अचरज है रीत मन मूरख अजहूने संगत सिख दे हार्यो नीत नानक पौजल पार परे जो गावे प्रभ के गीत। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैभन गुरु प्रसाद राग विहागरा चौक दे महला पन्या।

करिया बहु बंदे परिया फिर साध सफरिया जय कीर्तन हरिया नानक सरनरिया। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद राग बिहागरा महला नावा हर की गत नह को जाने जोगी जति तपि पच हारे और बहु लोग सियाने रहाओ छिन में राव रंग को करी राव रंग कर डारे रीते परे परे सपनावे यह तांको विवहारे अपनी माया आप पसारी आपे देखन हारा नाना रूप तले बहुरंगी सबसे रह न्यारा अगनत अपार अलख निरंजन जे सब जग परमायो सगल कर्म तज नानक प्राणी चरण ताहि चितलायो। राग बिहागड़ा संत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर हर नाम से आई है मेरी जिंदड़ी गुरुमुख नाम अमोले राम हर रस बीदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम से कोले।

मन सिंधियाला फल पाया हर प्रभ गुरु नानक बाणी बोले राम गुरमुख मन अमृत उठड़ा मेरी जिंदड़ी मुख अमृत बैन अलाए राम अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ी मन सुनिए हर लिव लाए राम चिरी विचुना हर प्रभ पाया गल मिलिया सहज।

कोई हर सब आन मिलावे राम हो मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी हर सब की हर कथा सुनावे राम गुरमुख सभा आराध हर मेरी जिंदगी मन सिंदेरा फल पावे राम नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी वड पागी नाम ते आवे राम कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदगी गुरमत नाम प्रगासे राम हो हर बाज उगीनिया मेरी जिंदगी ज्यों जल बिन कमल उदासे राम।

अमृत गुरमत पाए राम। हौ मैं माया दिखे मेरी जिंदड़िए, हर अमृत दिखले जाए राम। मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए, हर हर नाम ते आए राम। हर साज बड़े लिख पाया मेरी जिंदड़िए, जन नानक नाम समाए राम। हर सेती मन भेदिया मेरी जिंदड़िए, जो बालक लग दुख खीरे राम। हर दिन सांस

जय नाम घर में लाया मेरी जिंदड़ी कर वाजे शब्द कनेरे राम। मन हों में विचड़े मेरी जिंदड़ी दिख बांधे हों में जाने राम। जो पंखी कपोत आप

गुर सतगुर वीर लगाया राम कर कृपा सुन बेनती हर हर जन नानक नाम से आया राम बिहागरा महला चौथा जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़ी हर कीरत हर मन तारे राम हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदड़ी जप हर हर नाम उधारे राम सब के लिए पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़ी मल गुरुमुख नाम उतारे राम वद पुन्नी हर प्याया जन नानक हम मूरख मुगत निस्तारे राम जो हर नाम से आएंगे मेरी जिंदड़ी तिना पंचे वसगत आए राम अंतर नव निज नाम है मेरी जिंदड़ी गुर सतगुर अलख लखाए राम गुर आशा मनसा पूरिया मेरी जिंदड़ी हर मिलिया सुख सब जाए राम तुरमस्तक हर प्रभ लिखिया मेरी जिंदड़ी जन नानक हर गुण गाए राम हम पापी बलवंचिया मेरी जिंदड़ी पर द्रोही ठग माया राम वड पागी गुर पाया मेरी जिंदड़ी गुर पूरे गत वित पाया राम गुर अमृत हर मुख चोया।

जिन हर हर नाम आधारो राम, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदड़िए, बिक औजल कारण हारो राम, जिन एक मन हर प्याया मेरी जिंदड़िए, तिन संत जना जयकारो राम। नानक हर जप

तर्क पाताल आकाश है मेरी जिंदगी, सब हर हर नाम से आवे राम। पौन पानी बह संतरो मेरी जिंदगी, नित हर हर हर जस गावे राम। वाण तृण सब आकार है मेरी जिंदगी, मुख हर हर नाम

जो मनमुख पाप लुभाने राम जन नानक गुरु मिल उबरे मेरी जिंदड़िए हर जप हर नाम समाने राम सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए जो हर हर नाम दृढ़ावे राम हर जप

ए मन तन सब अर्पे हा राम, मन तन तन सब प्रभु केरा, क्या को पूज चढ़ावे जिस होए कृपाल दयाल स्वामी, सो प्रभ अंक समावे पाग मस्तक होए जिसके, तिस गुरु नाल सुनेहा जन कहे नानक मिल साध संगत, हर हर नाम पूजे हा। देह दिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम, हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर तिस में रहा समाए राम, सर्वे समाना आप स्वामी गुरुमुख प्रगट होया।

खान पान सिगार बिरते हर पंत बिन क्यों जी जिए। आसा प्यासी रैन दिनियर रह न सकिए इक तिले, नानक पयम पे संत दासी तो प्रसाद मेरा फिर मिले। सेज एक प्रयो संग दर्श न पाये राम, अवगन मोहे अनेक कत महल बुलाये राम। निर्गुण निमानी अनाथ बिनवे मिलो प्रभ कृपा निदे, प्रम पीत खोये सहज सोये प्रभ पलक पेशक नव निदे। गृह लाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाये, नाम पयम पे संत सरणी मोहे दर्श दिखाये। संतन के प्रसाद हर हर पाया।

कवन रसना गुण कना प्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सकी मंगल गाया नानक पयम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कल कृपा।

कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना मूरत मुग्ध अनाथ चंचल।

जिन विदाता पाया नाम राते जीव दाते नित दिन चढ़े सवाया रिद्ध सिद्ध नव निध।

ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਖ ਰਹਿ।

हर की भगत मंगे, हर भगत पाए प्रभु ते आए, जाए मिलिए हर जाना, मान मोह विकार तजिए।

नानक शरण समरथ स्वामी पैज राखो मोरी। जाके ही छड़िया तिन आप मिलाया राम, साधु संग में हर गुण गाया राम।

मन पर कीक ना आया सहज ना लगो पाओ शब्द साध न पायो मन हथ क्या गुण गाए नानक आया सो परवान है जो गुरमुख सच समाए महला तीजा अपना आप ना पछाने मूड़ा अवरा आप दुखाए मुंडे दी खसलत ना गया अंगे विचर चोटा खाए सतगुर कह पै पन ना करो रह अंक समाए अन दिन सहसा कदे न चूके दिन सब दे दुख पाए काम क्रोध लोभ अंतर सब ला

हर कृपा ते होआ हर भगत जना कै मुहे दिखै जगत तरिया सब लोड़िए स्रोत महला तीजा सारसना जल जाओ जिन हर का स्वाव न पाया नानक रसना शब्द रसाए जिन हर हर मन वसाया महला तीजा सारसना जल जाओ सारसना जल जाओ जिन हर का नाव विसारिया नानक गुरमुख रसना हर जपै हर कै नाई प्यारिया पौड़ी हर आपे ठाकुर सेवक भगत हर आपे करे कराए हर आपे वेखे विदसे आपे जित पावे तित लाए हर इकना मार्ग पाए आपे हर इकना उजड़ पाए हर सच्चा साहिब सच तपावस कर वेखे चलत सबाए गुर प्रसाद।

माए पिसावे आप पकावे आप पांडे दे परोसे आपे ही बैठावे आपे जल आपे दृष्टिंगा आपे चुली परावे आपे संग

बंधन तोड़े सच वसै अज्ञान अंधेरा जाए सब किस देखे किसे का जिनकी आतन साध नानक शरण करतार की करता राखे लाज। पौड़ी जदों आपे साथ किया बह करते तदों कुछ ना सेवक दिया तदों क्या को लेवे क्या को देवे जा अवर ना दूजा किया फिर आपे जगत उपाया करते दान सबना को दिया आपे सेव बनायन गुरमुख आपे अमृत पिया आप निरंकार।

कथिय ना पाए अंगिन रहे सदा गुण गाए जिन कर में किन ना पायो पौके मुए बिन लाए गुर के शब्द मन तन तुझे आप वसे मन आए नानक नगरी पाए आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करी जय आप परवृत आप निर्वृति आपे अकथ कटीजे आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत बतीजे आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करीजे आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करीजे श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड़ तू पौ कर चल गवाए गुर कह तै के ते निस्तरे तैरच निर पौ पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावणी।

मनुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार, कूड़ कमावे कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार, बिख माया।

पार पवै जिना अंदर सच्चा सोए नाम समाले नाम संग्रह नामे ही पत होए नानक सतगुर पाया कर्म परापत होए पौड़ी आपे पारस आप ताप है आप की कौन कंचन आपे ठाकुर सेवक आपे आपे ही पाप खंडन आपे सब कट भोग वे स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब देता आपे गुरुमुख पंजन जन नानक सालाहे नारजै तुद करके तू हर सुख दाता वडन श्लोक महला चौथा।

संध्या प्रवान है जित हर प्रभु मेरा चित आवे है। हर्षो प्रीत उपजे माया मोह जलावे गुर प्रसादी दुबदा मरे मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार नानक संध्या करे मन मुखी।

लायो सतगुरु का पाना चित रखो संजम सच्चा ने हो नानक ऐसे सुख है अंदर रखसी अगे हर्षो केल करे हो पौड़ी आपे पार अठारे बनस्पत आपे ही फल लाए आपे माली आप सब सूचे आपे ही मोह पाए आपे करता आपे पुगता आपे दे दिवाए आपे साहिब आपे है राखा आपे रहा समाए जन नानक वडियाई आखे हर करके की जिसनो तिल ना कमाए। श्लोक महला तीजा मानस परया आया मानस परया आए जित पीते मत दूर होए बरल पवे विच आए अपना पराया ना पछाने खसमो तके खाए जित पीते खसम विसरे दर्जे मिले सजाए झूठा मद मूल ना पीचे जेका पार वसाए नानक नगरी।

सो सब किछ पावे जिसनो कृपा निरंजन केरी सोई साओ सच्चा वणजारा जिन वत्तर लदया हर नाम तन तेरी सब तिसे नो सालायो संतो जिन दूजे पावे।

ऐसा मूल ना हो गई हानत कदे न होए, नानक गुरुमुख पाई है जाको नजर करे पौड़ी। आपे सब कट अंदरे आपे ही बाहर, आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर, जुग छत्ती गुबार कर वर्त्या सुनाहर, ओथे वेद पुराण न सास्ता आपे हर नर हर, बैठा ताड़ी लाए आप सब दू ही बाहर अपनी।

तुर खसने का हुक्म पाया बिन सतगुरु चेते आना जाए। सतगुर मिले अंतर रव रहा सदा रहा लिव लाए। दम दम सदा संभालदा दम न बिरसा जाए। जन्म मरण का पौ गया जीवन पदवी पाए। नानक एहो मर्तबा किसनो दे जिसनो कृपा करे रजाए। पौड़ी आपे दाना बिन्या आपे प्रधाना आपे रूप दिखालदा आपे लाए ध्याना आपे मोनी वर्तदा आपे

बस सब जो तेरे बस है तू सच्चा चाहो भगत रते रंग एक कह पूरा वे साहो अमृत भोजन नाम हर रज रज जन खाहो सब पदार्थ पा।

प्राप्त होए। तिस जोगी की नगरी सबको वसे तेथी जोग न होए। नानक ऐसा बिरला को जोगी जिस पट प्रगट होए। पौड़ी।

हर दिया सतगुर मोको हर दिया बुझाए रहाओ दुहागनी खड़िया बिल्ला दिया तिना मैल न पाए दूजे पाए करूपी दुख पावे आगे जाए गुणवंती नित गुण।

पग थक सोए, गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरुमुख आप वडाई देवे सोए, गुरुमुख शब्द सच

गुर ते नाम पाया जाए, सच्चे शब्द सच समाए, ए मन नाम निदान तू पाए, अपने गुर की मन लहर जाए, रहाओ गुर के शब्द विच्चों मैल गवाए, निर्मल नाम वसे मन आए, कर में पूला फिरे संसार, मर जन में जम करे खुआर, नानक सेवड पागी जिन हर

का मन बिरसा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मन्ने ता हर मिले ता विच्चों हो मैं जाए रहाओ, हो मैं सब शरीर है, हो मैं ओपत होए, हो मैं वड़ा गुबार है, हो मैं विच बुझ ना सके कोए, हो मैं विच पगत ना हो वही, हुक्म ना बुझिया जाए, हो मैं विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले हो मैं गई, ता सच वसिया मन आए, सच कमावे।

मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया थे मैं गुण नहीं हूँ क्यों मिला मेरी माया हूँ कर साका उपाव बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे वडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी हूँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोवाने हों क्यों कर फिर को मिलो ए आनी जो फिर पावे।

मैं गुण नाही हों क्या करी दुहागण, नित सुहागण सदा तिर रावे, मैं कर्महीन तब ही गल लावे, तू फिर गुणवंता हो अवगण आरा, मैं निर्गुण

रहाओ। लाख भगत जाको आरा दे, लाख कपि सर कपी सा दे, लाख जोगी सर करते जोगा, लाख पोगी सर पोगे पोगा, कट कट वक्ते जाने तोरा, है कोई साजन परदा तोरा, करो जतन जे होए मेहरवाना, करो जतन जे होए मेहरवाना, ताको दे जियो कुर्बाना, फिरत संतन पे आया, दुख परम हमारा सगल मिटाया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा। वडहंस महला पंजवा, तन सोवेला जित दर्शन करना, हौ बलिहारी सतगुर चरणा, जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, मन जीवे प्रभ नाम चितेरे। रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरख दृष्ट सुजानी, सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी, तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब पर पुर लीना। वडहंस महला पंजवा, तू बेअंत को विरला जाने, गुर प्रसाद को शब्द पठाने, सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। रहाओ दयाल पुरख मेरे प्रभ दाते, जिसे जनावो तिन्हे तुम जाते, सदा सदा जाई बलिहारी, इत उत देखो ओत तुम्हारी, मोहे निर्गुण गुण कछु न जाता, नानक साधु देख मन राता। वडहंस महला पंजवा,

जल सल मैयल रहा पर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनो नजर करे सो त्याए आठ पहर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन परयो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वडदाता अंतर जामी सब में रव्या पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वडहंस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे ना कबहू छीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु से आये रहाओ रतन जवाहर हर माणक लाला सिमर सिमर प्रभ कहे निहाला जत कत पेखो साधु शरणा हर गुण गाए निर्मल मन करना कट कट अंतर मेरा स्वामी ऊठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वडहंस महला पंजा।

मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली जे सो भोजन मैं नहीं रे। मेरे मन तन प्रेम प्रम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता। ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता। हौ एक थिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिल लाता। हौ क्या गुण तेरे सार समाली मैं निर्गुण को रख लेता। हौ पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा। सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा। एहो कापड़ तन ना सुखावई कर ना सको हूं वेता जिन्नी सखी लाल रावे।

सच तुन सच शब्द विचारा अंदिन सच सलाना तन तन वड भाग हमारा मन मेरे साचे नाम विटों बल जाओ दासन दासा।

बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब कोए सच खेती सच बीजना साचा वा पारा अन दिन लाहा सच नाम तन भगत परे पंडारा सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनो बख्शे तिस मिले महली पाए थाओ आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जूनी मूल न पाहे गुरमुख दर साचे सच्यार है साचे माहे समाहे अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए सच्चे थान सच सलाना सतगुर बलिहार है जाओ सच वेला मूरत सच जित सच्चे नाल प्यार सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार नानक सच्चे मेले ता मिले आपे ले मिलाए जो पावे त्यो रखती आपे करे रजाए वडहंस महला तीजा मनुआ देह दिस्ताम दा ओ कैसे हर गुण गावे इंद्री व्याप रही अधिकाई काम क्रोध नित संतावे वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय राम नाम इस जुग में दुर्लभ है गुरमत हर रस पीजै रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरमति आपे आप पछाणे ता निज कर वासा पावे ए मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई पात्र डुबदा काड लिया साची वड्याई दिख से अमृत भय गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पए अंतर वासना समाई मानस जन्म दुलंग है जग में खटियाए पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए मन मुख पूले बिख लगे पहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया नानक जिन कै हृदय वसया मोख मुकत तिन पाया।

आई नाता को प्रमाण सच कमाई है। जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाई है। लिखे बाजू सुरत नाही बोल बोल गवाई है। जिथे जाए बई है भला कही है सुरत शब्द लिखाई है। काया कूड़ बिगाड़ काहे नाई है। ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। अमृत हर का नाम मेरे मन पाया। नाम मीठा मने लागा दुख डेरा ताया। सुख मन में आए वस्या जाम तै फुरमाया। नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया। ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। वारी खत्म कढ़ाए किरत कमावना। मंदा किसे नाख झगड़ा पावना। न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप वजावना। जिस नाल संगत कर सरी की जाए क्या रुआवना। जो दे सेना मने कहना आख नाही बावना। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना। सब उपायन आप आपे नजर करे। कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे। सब कोई मीठा मांग देखे सब।

किछ पुण्य दान अनेक करनी, नाम तुल ना समतरे, नानका जिन नाम मिलिया, कर्म होआ तुर कदे, सब उपायन आप आपे नदर करे। वडांस महला पहला, करो दया तेरा नाम वखाना, सब उपाय आप आपे सर्व समाना, सर्वे समाना आप तू है, उपाय तंदे लाया, एक तुझ ही किए राजे, एक ना पिख पवाया, लोभ मोह तुझ किया मीठा, एक परम फुलाना, सदा दया करो अपनी, ताम नाम वखाना, नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना, दुख गया सुख आए समाना, गावन सुरनर सुगड़ सुजाना, सुरनर सुगड़ सुजान गावे, जो तेरे मन पावे, माया मोहे चेते नाही, ऐला जन्म गवावे, एक मूड मुगद ना चेते मूले, जो आया तिस जाना, नाम तेरा सदा साचा, सोए मैं मन पाना, तेरा वक्त सो

चित चढ़े सवाया, एक करम करम ना होए संजम, जाम ना एक पछाणी, वक्त सुहावा सदा तेरा, अमृत तेरी बाणी। हौ बलिहारी साचे नावे, राज तेरा कब हो ना जावे, राजो ता तेरा सदा नहीं चले, एहो कब हो ना जावे, चाकरता तेरा सोए होवे, जोए सहज समावे, दुश्मन ता दुख ना लगे मूले, पाप नेड़ ना आवे, हौ बलिहारी सदा होवा, एक तेरे नावे। जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे, कीरत करें स्वामी तेरे द्वारे, जपे

जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करूं बेनती हूं आप न जाना नदर करें ता साच पछाना।

तेरे बंके लोएन दंतरी साला सोने नक जिन लंबड़े वाला कंचन काया सोयने की टाला सोवन टाला कृष्ण माला जपो तुसी सहेली हो जम द्वार ना हो खड़िया सिख सुनो महेलियो हंस हंसा बग बग्गा।

आप वाणी तिच मन की पूरी सारंग ज्यों पग तरे ठिम ठिम आप संदूरे श्री रंग राती फिरे माती उदक गंगा वाणी बिनवंत नानक।

सतगुर प्रसाद। अपने पिरके रंग रती मोइये सोभावंती नारे, सच्चे शब्द मिल रही मोइये पिर रावे पाए प्यारे। सच्चे पाए प्यारी कंक सवारी, हर हर सियो निहो रचाया। आप गवाया ता फिर पाया, गुर के शब्द समाया। सा तन शब्द सुहाई प्रेम कसाई, अंतर प्रीत प्यारी। नानक सा तन मेल लई, फिर आपे साचे सहे सवारी। निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम, गुरुमुख जिन्नी रावया मोये फिर रव रहा पर पूरे राम। फिर रव रहा पर पूरे वे खजूरे, जुग जुग एको जाता। तन बाली कोली फिर सहज रावे, मिलिया कर्म विदाता। जिन हर रस चाखिया शब्द सो पाखिया, हर सर रही पर पूरे। नानक कामन सा फिर पावे, शब्दे रह हदूरे। सुहागणी जाए पूछो मुइये, जिनी विच्चों आप गवाया। फिर का हुक्म ना पायो मुइये, जिनी विच्चों आप ना गवाया। जिनी आप गवाया तिनी फिर पाया, रंग स्यों रलिया माने। सदा रंग राती सहजे माती, अंदर नाम वखाने। कामन वड पागी अंतर लिव लागी, हर का प्रेम सुभाया। नानक कामन सहजे राती, जिन सच सिगार बनाया। हौ मैं मार मुइये तू चल गुर के पाए, हर वर रावे सदा मुइये। निज कर वासा पाए, निज कर वासा पाए शब्द बजाए। सदा सुहागण नारी फिर रलियाला, जोगन बाला अंदिन कंक सवारी। हर वार सुहागो मस्तक पागो, सच्चे शब्द सुहाए। नानक कामन हर रंग राती, जा चले सतगुरु पाए। वडहंस महला तीजा, गुरुमुख सब वापा।

सब दुख है खोटा एहो वापारा राम पूर बोल बिख खावणी बहु वधे विकारा राम बहु वधे विकारा सहसा एहो संसारा बिन नामे पत कोई पढ़ पढ़ पंडित बात बखाने बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चुके माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा एहो वापारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कह दरबारा राम खोटे दरगे सुतियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुगद गवारा मन मुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम न पाया मन मुख संता नाल वैर कर दुख खटे संसारा खोटे खरे परखियन तित सच्चे दरबारा राम आप करे किस आखिए होर करना किछु न जाई राम जित खा दे तित लाए सी ज्यो तिस दी वड्याई राम ज्यो तिस दी वड्याई आप कराई वरी आम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विदाता आपे बख्शे सोई गुरु प्रसाद जी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किस आखी है होर करना किछु न जाई वडंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमती हर नाम वणजी है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सच वापारा सच वापार लगे वडपागी अंतर बाहर पगती राते सच नाम लिवलागी नदर करे सोई सच पाए गुर कै शब्द विचारा नानक नाम रते तिन ही सुख पाया सच है के वापारा हौ मैं माया मैल है माया मैल परी जय राम गुरमति मन निर्मला रसना हर रस पी जय राम रसना हर रस पी जय अंतर पी जय साथ शब्द विचारी अंतर खूटा अमृत परया शब्दे कार्ड पिए पनिहारी जिस नजर करे।

पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पे करें पुकारा राम। माया मोह अंतर मल लागे, माया के वापारा राम। माया के वापारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाए। बिख का कीड़ा बिख्यो लागा, बिष्टा माए समाए। जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोई न मेटन हारा। नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, होर मूरख कूक मुए गावारा। माया मोह मन रंगिया, मोहे सुध न काई राम। गुरुमुख ए मन रंगी है, दूजा रंग जाई राम। दूजा रंग जाई साच समाई, सच परे भंडारा।

फिर होए ना फेरा राम, फिर होए ना फेरा अंत सच निबेड़ा। गुरमुख मिले वड्याई साचे रंग राते, सहजे माते सहजे रहे समाई। सच्चा मन पाया सच वसाया, शब्द रते अंत निबेरा। नानक नाम रते से सच समाने, बहुर न पव जल फेरा। माया मोह सब बरल है, दूजे पाए कुआई राम। माता पिता सब हेत है, हेते पलचाई राम। हेते पलचाई पूर्व कमाई, मेट न सके कोई। जिन सृष्ट साजी सो कर वेख, तिस जेवड़ अवर न कोई। मन मुख अंधा तप तप खपे, बिन शब्द सांत न आई। नानक बिन नावे सब कोई पुला, माया मोहे खुआई। एह जगत जलता देख के, पज पे हर सरनाई राम। अरदास करी गुर पूरे आगे, रख ले वो देहो वडाई राम। रख ले वो सरनाई हर नाम वडाई, तुद जेवड़ अवर न दाता। सेवा लागे सेवड़ पागे, जुग जुग एको जाता। जत सत संजम कर्म कमावे, बिन गुर गत नहीं पाई। नानक तिसनो शब्द बुझाए, जो जाए पवे हर सरनाई। जो हर मत दे सा उपजे, होर मत ना काई राम। अंतर बाहर एक तू, आपे दे बुझाई राम। आपे दे बुझाई अवर न पाई, गुरमुख हर रस चाखिया। दर साचे सदा है साचा, साचे शब्द सुबाखिया। कर मैं निज कर पाया, सतगुरु दे वडाई। नानक जो नाम रते सही महल पाइन, मत परवान।

दृढ़ाए। जप हर हर नाम विगसे राम, जप हर हर नाम कमल प्रगासे, हर नाम नवंग निद पाई, हो मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई।

हर हर नाम मेरा प्राण सखाई, किस दिन करी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरुमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए, हर आपे आप सवारे। हो वारी गुर सिख नीत्यारे। हर आपे पुरुष निरंजन सोई राम। हर आपे मिले करे सोई राम। जो हर प्रभावे सोई होवे, अवर न करना जाई। बहुत स्याणप लया न जाई, करथा के सब चतराई। गुर प्रसाद जन नानक।

हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिम अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर बिना

निफल जन्म किन बिछा गवाया, ते सापत मोए मर चूरे, कर होंदे रतन पदार्थ भूखे, भागहीन हर दूरे। हर हर तिन सा दर्श न करियो, जिनी हर हर नाम न प्याया, जिनी दर्शन सतगुरु पुरुष न पाया, हम चात्रिक दीन।

गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती। हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती। वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुरु मेल सुख।

अलग हाथ बीना जम कंकर मार बिदारे। हर प्रभु कृपा तारी सुख दाते, दुख लाते पाप सुन पापा। सुन गुरुमुख नाम सब दिन से हो मैं पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरुमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरुमुख जप सब रोग गवाया अरोग तय शरीरा। आन दिन सहज समाध हर लागी हर गतिया गहर गंभीरा। जात अजात नाम जिन पाया तिन परम पदार्थ पाया। जप हर हर नाम मेरे मन पाया। हर तारो कृपा।

महामार्ग पंथ बिखरा जन नानक पार लंघाया। कोड़ी तेजन दे राम पाया राम, जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाया राम। जित हर प्रभ जापै सा तन सवासै तुर पाया तीर्थ जुड़ंदा। चढ़ देहड़ कोड़ी बिखम लगाए मिल गुरमुख परमानंदा। हर हर काज रचाया पूरे मिल संत जना जंग आई। जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वर।

हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सफलो किया करते हर राम नाम वखानिया। हर राम नाम सलाए हर प्रभु हर भगत हर

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेव की, प्रभ जाय पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन चाया, जन नानक।

ठाकुर माने से प्रधाने हर से रंग राते हर रसय अघाए सह समाए कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कै सब कुरबान श्लोक।

जन साख अगाने हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा अमयोग उठा सुख पाए दुख नाश परम विनाश संते जप जगदीश ईश्वर जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तिन कनिये वंजा जिन कट मेरा हर प्रभु उठा श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से कांडिया नानक जाने सत साईं संत ना बाहर।

प्रम दुख दर्द निवार खिन में रख लेहो दीन दयाला। मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला। जो शरण आवे गुण निधान पावे सो बहुर जन्म न मरता। दिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता। आठ पैर हर प्याये राम मन इच्छा फल पाये राम मन इच्छ पाये।

प्रभु के मन पाई है, बिनवंत नानक दिन सुरैणी सदा हर हर त्याय। दरवाजे अनहतवाजे राम, कट कट हर गोविंद गाजे राम। गोविंद गाजे सदा विराजे, अगम अगोचर ऊंचा। गुण के अंत किस कह न जाई, कोई न सके पहुंचा। आप पाए आप।

वडहंस है सच नाम उद्धार सत संग्रह है सत सच रहे सच्चे नाम प्यार सदा निर्मल मैल ना लग गई नदर की करतार नानक हो तिन।

पूरा तन तन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्टि सवारी नित जप्यो संतो राम नाम कौजल वितारे गुरपूरे हर उपदेशया गुर विटड़ियो हो सदवारी श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा चाकरी सुखी हूँ सुख सार एथ

के मुख गिरात ऐठे दुखो दुख कमावना मोया नरक निवास। मन मुख मोहे मैले सबदे ना जानने काम क्रोध विनाश सतगुर का।

प्रहलाद जप हर घट पाई, गुरुमुख जनक हर नाम लिव लाई, गुरुमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाई, बिन गुरु हर नाम

के। सतगुरु मिले उल्टी भाई भाई, जीवत मरे तो बूझ पाए। सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाए। मंगे हर हर सेती लिवलाए, मन हर जप मीठा लागे पाई।

सदा हर के गुण गाए रहाओ। ना मैं ते सब उपजे भाई, ना ही विसरे मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है भाई, सूते गए मुहाए। गुरुमुख जागे से उभरे भाई, अवजल।

राम नाम लिव लाए, नानक नाउ बेड़ा नाउ तुलहड़ा, पाई जित लग पार जन पाए। श्लोक महला तीजा कर पहला।

सतगुरु सेवै तां सुख पावै, नावै तां जाएगा जन्म गवाए रहाओ। त्रै गुण तात बहु कर्म कमावै, हर रस साधना आया, संध्या तर्पण करें गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुरु सेवे सो वडभागी, जिसनो आप मिलाए, हर रस पी जन सदा तृप्ता से, विच्चों आप गवाए। यो जग अंधा सब अंग कमावे, बिन गुर मग न पाए, नानक सतगुरु।

उपजे गत मत तब ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या नामे नाम समाए बिन सतगुरु सब जग बोराना मन मुख अंधा शब्द ना जाने झूठे परम पुला ना रहो त्रैगुण माया परम पुलाया हो मैं बंधन कमाए जमन मरण सिर ऊपर उबो गर्भ जोन दुख पाए त्रैगुण वर्ते सगल संसारा हो मैं विच पत खोई गुरमुख होवे चौथा पद चीने राम नाम सुख होई।

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल पए हैं, कृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचर चरै ता सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तां पीतर, तां श्रम काटिया जाई। मेरे गोविंद अपने जन को देह वडियाई, गुरमत राम नाम परगासो, सदा रहूं शरणा।

हर नाम समाना, जिसकी वक्त सोई प्रभ जाने, जिसनो दे सुपाए वक्त अनूप अगम अगोचर गुरु पूरा अलख लखाए। जिन ए चाखी सोई जाने गूंगे की मिठाई।

नाही क्या तिस्ता मोहताजा रहाओ जिन हर त्याया सब किश तिस्ता तिसकी पूछ गवाई ऐसा तन दिया सुख दाते निखुट न कभी जाए अंध भया सुख सहज समाने सतगुर मेल मिलाई मन नाम जप नाम आराध अंधिन नाम वखाणी उपदेश सुन सा

तू सर्व जिया दयाला सब कुछ कीता तेरा वरतै क्या हम बाल गोपाला राख ले हो नानक जन तुमरा ज्यो पिता पूत के पाला। सोरठ महला पंजवा कर पहला चौथ पे गुरु गोविंद सलाहिए पाई मन तन हृदय पार साचा साहिब मन वसै पाई एहा करनी सार जित तन नाम न उपजै पाई से तन होए छार साध संगत को वारिया भाई जिन एक अंकार आधार सोई सत आराधना पाई जिसते सब किछ होए गुरपुरे जान आया पाई तिस बिन अवर न कोए रहाओ। नाम विहुने पच मोए भाई गणत न जाए गणी विन सच सोच न पाई है भाई साचा अगम धनी आमन जान न चुके भाई झूठी दुनी मणी गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नामे एक कणी सिमरत शास्त्र सो दिया भाई विन सतगुर परम न जाए अनित कर्म कर था क्या भाई फिर बंधन पाए चारे कुंडा सो दिया भाई

हाथ खड़ा है निर्मला भाई, निर्मल साते सोए, नजर करे जिस अपनी पाई, किस प्राप्त होए। ओट मदे जन पाए भाई, विरला कोई कोए, नानक रत्ता सत नाम भाई, सुन मन तन निर्मल होए। सोरठ महला पंजवा दो तुके,

जन नानक प्रभ कृपा पारी, मैं सतगुरु ओट गए ही। सोरठ महला पंजवा। गुरपुरा ते प्यो वड़ पागी, मने पया तरगासा, कोई न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का भरवासा। अपने सतगुर कै बलिहार है, आगे सुख पाछे सुख सह।

एक राम नाम आधारा, सकल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है बिहोन हारा, कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वड्याई अचरज शोभा कारज आया रासे, नानक तो गुरु पूरा फेटे हो सगले दुख विनाशे। सोरठ महला पंजवा, सुखिये को पेखे सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी, करण करावन हार स्वामी आपन हाथ संजोगी, मन मेरे जिन अपना कर्म गवाता तिसके पाने कोई न फूला, जिन सगलो ब्रह्म पछाता।

मिटे जन सेवा हर कीर्तन रस गाये इहां सुख आगे मुख उजल जन का संगवड पागी पाये रचना एक अनेक गुण पूरन जन की केतक उपमा कही है अगम अगोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है निर्गुण नीच अनाथ अपराधी ओट संतन की आही बूढ़क मोगृह अंधकूप में नानक लेहो निवाही सोरठ महला पंजवा सर पहला जाके हृदय वस्या तू करते ताकी तै आस पुजाई दास अपने को तू विसरै नाही चरण कूर मन पाई तेरी अकथ कथा कथन ना जाई गुण निदान सुख दाते स्वामी सबते ऊंच बढ़ाई रहाओ सो सो कर्म करत है प्राणी जैसी तुम लिख पाई सेवक को तुम सेवा दीनी दर्शन देख अभाई सर्व निरंतर तुम्हें समाने जाको तुद आप बुझाई गुर प्रसाद मिट्यो अज्ञाना प्रगट पय सब ठाई सोई ज्ञानी सोई प्यानी सोई पुरख सुभाई कहो नानक जिस पय दयाला ताको मन ते बिसर न जाई सोरठ महला पंजवा सगल समग्री मोहे व्यापी कब ऊंचे कब नीचे शुद्ध न होई है काहू जतना ओरक को ना पहुँचे मेरे मन साध शरण छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण न रही फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो कर्म पुलावा कहियत तिन में उर्जो सगल संसारा पूरन भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा निंदो नाही काहु बात है एहो खसम का किया जासो कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत ना ओलिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सबना कर तू धारा कहु नानक गुर बिन नहीं करिये यह पूरन तत बिचारा सोरठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचार्यो राम नाम सत सारा किलबिक काटे निमख अरादया गुरमुख पार उतारा हर रस पीवो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा कृपत मन पावे साधु अमृत बानी रहाओ मुक्त फुगत जुगत सच पाये सर्व सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे पूरन पुरख विधाता श्रवणी सुनिए रसना गाये हृदय त्याये सोई करण कारण सम

गुर नानक जिन सुनिया देखिया से फिर गर्भास न परिया रे। सूरठ महला पंजवा जिना बात को बहुत अंदेसरो ते मिटे सब गया। सहज सैन अर सुखमन नारी ऊद कमल दिखाया।

ते भयानक भया करे बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी शरणया। जह भंडार गोविंद का खुलया जह प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुरु दीना मेरा मन तन शीतल थया। एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे फिर लेखा मूल न लया। सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यो जाका मम लीना से जन कृपित अभाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर कृष्ण त्रिपाई। हर आराधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ। जे जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जे नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गणने। जे गुरमान प्रभु लिवलाए ते महा आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाए ते नरक कोर में परया। जितको लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक से पकरी संतन की हृदय पै मगन चरनारा। सोरठ महला पंजवा राजन में राजा उरझायो मानन में अभिमानी लोभन में लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी। हर जन को यही सुहावे एक निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप पावे रहाओ। अमलम स्यो अमली लग पायो कूमन कूम प्यारी खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी। विद्या में विद्यांशी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रखना साग लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे। जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी।

हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

न जाने तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरुष बिधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाते, कहो नानक हम यह हवाला, राख संतन के पाछे, सोरठ महला पंजवा कर दूजा, माप गर्भ में आपन सिमरन दे, कह तुम राखन हारे, पाव के सागर

करण हार तृण जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रभु ताने। खिन में अवर खिने में अवरा अचरज चल तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगमा पारे। आज संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सपाणी संत हमारा गहना। हम संतन से बन आई पूरब लिखिया पाई यह मन तेरा भाई रहाओ। संतन से मेरी लेवा देवी संतन से व्योहारा संतन से हम लाहा खाटिया हर भगत परे भंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का पोखा कर्म राय अब कहाँ करे गो जो फाटियो सगलो लेखा। महा आनंद पाए सुख पाया संतन के प्रसादे कहो नानक हर्षो मन मानिया रंग रते बिस्मा दे। सूरठ महला पंजवा जेती समग्री देखो रे नर तेती ही छड़ जानी राम नाम संग कर व्योहारा पावे पर निर्वाणी।

मोह अभिमाना कामे सुख नहीं पाये हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अनद मंगल सुख पाये पार न पाने अंतर विद जाने ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ए मनवा अकाल मूरत गुरुदेवा गोविंद दमोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण आधारा सूरत मेला पंजवा मृतक को पायो तन सासा बिचरत आन मिलाया पशु प्रेत मुगद कै स्रोते हर नामा मुख

तेरा अंग मंगल विश्रामा, मन बासत फल मिले अचिंता, पूरन होए कामा। इहा सुख आ गए मुख उजल, मिट गए आवन जाने, निरपो पे हृदय नाम वसया, अपने सतगुर के मन पाने। उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द क्रम पागा, कहो नानक ताके पूर करमा, जासा गुर चरनी मन लागा। सोरठ महला पंजवा, रतन छाड़ कौडी संग लागे, जाते कछु न पाये, पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे मन सदा त्याय है। सिमरो हर हर नाम परानी, बिनसे काची दे अज्ञानी, रहाओ मृग कृष्णा अर सुपन मनोरथ, ताकि कछ न गढ़ाई, राम भजन बिन काम न आवस, संग न काहू जाए। हो करत बिहाय अवरदा, जी को काम न कीना, तावत तावत न तृप्ता स्या, राम नाम नहीं चीना। साध विकार बिखै रस्मा तो, अथंक खते कर फेरे, नाम की प्रभ पाहे बिनंती, काटो अवगुण मेरे। सोरठ महला पंजवा, गुण गावो पूरन अविनाशी।

साथी दरगह माने गुण गावत आराध नाम हर आए अपने खाने जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी सब दलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूरन पैज सवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अनुज सेती पर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला से दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुरु त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग

मन वसिया अविनाशी, ताउ को विघ्न ना को लागे जो सतगुरु अपने राखे, चरण कमल बसे हृदय अंतर अमृत हर रस्ता के, कर सेवा सेवक प्रभु अपने।

सोरठ महला पंजवा। माया मोह मगन अंधियार है, देवन हार न जाने, जियो पिंड साब जिन रचिया बल अपनो करना।

जाके सिमरण होए आनंदा, बिन से जन्म मरण पै दुखी, चार पदार्थ नवनिध पावे, बहुर ना कृष्णा सुखी, जाको नाम लैत तू सुखी, सास सास से आवो ठाकुर को मंथन जीरे।

जगत जीवन कैसे पावे। सूरठ महला पंजवा, अविनाशी जीवन को दाता सिमरत फरमल कोई, गुण निदान भगतन को बर्तन।

बख्श लहो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो। प्रभ जी तू मेरो ठाकुर नेरो, हर चरण शरण।

उधारे दर्शन देखन हारे गुरपुरे की अचरज वड्याई नानक सद बलिहारे सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलिश बिनोद आनंद सुख मानो खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच

नानक गुर पायो वड भागे तिस जेवड अवर न कोई। सोरठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज सुन प्रभ के चरण निहारया राखन हारे।

कीमत कहन न जाई, नानक भगत पए अविनाशी, अपना प्रभु पया सहाय। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे,

सतगुरे अपना सगला दुख मिटाया, पाप रोग गए गुरबचनी मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता रहाओ आनंद विनोद मंगल।

हर के चरण हृदय उद्धार, सदा सदा प्रभ सिमरिए पाए, दुख किलबिक काटन हार। रहाओ तिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरथ सो पाई।

संतो हर हर नाम ते आई, सुख सागर प्रभ विसरो नाही, मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ। सतगुर पूरे ताप गवाया, अपनी कृपा धारी, पार ब्रह्म प्रभ पए दयाला, दुख मिटिया सब परवारी। सर्व निधान मंगल रस रूपा, हर का नाम आधारो, नानक पत राखी परमेश्वर, उदरिया सब संसारो। सोरठ महला पंजवा, मेरा सतगुर रखवाला होआ, पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ। साप दया प्रभ आप मिटाया, जन की इलाज रखाई, साध संगत ते सब फल पाए, सतगुर कै बल जाए। हलत पलत प्रभ दोवें सवारे, हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया, अटल बचन नानक गुर तेरा, सफल कर मस्तक धारिया। सोरठ महला पंजवा, जी जंत्र सब तिसके किए, सोई संत सहाई, अपने सेवक की आपे राखे, पूरन पई बढ़ाई। पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल, गुर पूरे पूरी सब राखी, होए सर्व दयाल रहाओ। अंदिन नानक नाम ध्याए, जी प्राण का दाता, अपने दास को कंठ लाए राखे, जो बारिक पित माता। सोरठ महला पंजवा, करती जा चौपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया, सिकदारों ने पति आया, उमरावो आ गए चेरा, मिल राजन राम निबेरा, अब तूडन कतो

आनंद सुख कल्याण मंगल च्यों कर आए कर स्नान रहाओ। साची गुर वड्याई ताकि कीमत कहन ना जाई, सिर साहा पात साहा गुर पेटत मन ओ माहा, सगल पराशत लाथे मिल साध संगत कैसा थे, गुण निधान हर नामा जप पूरन होए कामा। गुर कीनो मुकुट द्वारा सब सृष्ट करे।

कृपा तारी, प्रभ पूरी लोच हमारी, कर स्नान गृह आए, आनंद मंगल सुख पाए। संतो राम नाम निस्तरिय, उठत बैठत हर हर त्याय। अनदिन सुकृत करिए रहाओ, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए। कोट जन्म के किल विखनासे, हर चरणी सितलाए। उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

आसन सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया कोए पाप भय सब पावन जन नानक सुख कर आया। सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लखर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला सब जी भय दयाला जब अनद रहो गुर चरणा पौ कत है नहीं प्रभ सरणा रहाओ। तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीव उसारी बल तन तकिया तेरा तू पारो ठाकुर मेरा। जिन जिन साध संग पाया सो प्रभु आप तराया कर कृपा नाम रख।

आई सास सास प्रभ त्याय हर मंगल नानक गाई है। सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी तागत पई हमारी हर की प्रेम।

जप नानक नाम सत साखी अपने दास की तैज राखी। सूरठ महला पंजवा विच करता पुरख खलोआ वाल न विंगा होआ मज्जन गुर आंदा रासे जप हर हर किल विच नासे। संतो रामदास सरोवर नीता जो नावे सो कुल तुरावे उधार हुआ है जी का। रहाओ जय जयकार जग गावे मन चिंदियड़े फल पावे सही सलामत नाए आए अपना प्रभु ते आए। संत सरोवर नावे सो जन परम गत पावे मरे न आवे जाई हर हर नाम ते आई। एहो ब्रह्म विचार सो जाने जिस दयाल होए भगवाने बाबा नानक प्रभ सरनाई सब चिंता गणत मिटाई। सोरठ महला पंजवा।

संवारे अपने दास का सदा रखवाला पर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रहाओ वडपागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जप जीवे से वडपागा हर अमृत बाणी गावे सादा की दूरी नावे अपना नाम

कर कृपा अंतर जामी, दास नानक तरण स्वामी। सोरठ मैला पंजवा, गुरपुरे चरनी लाया, हर संग सहाई पाया, जह जाये ता सुहेले, कर कृपा प्रभ मेले। हर गुण गावो सदा सुभाई, मन चिंदे सगले फल पावो, जी के संग सहाय रहाओ। नारायण प्राण आधारा, हम संत जनारे नारा, पतित पुनीत कर दीने, कर कृपा हर जस दीने। पार ब्रह्म करे प्रतपाला, सद जी संग रखवाला, हर दिन रहन

पूरी प्रभ रव रहा पर पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म वित्तो कुर्बाना गुर के चरण कवल रिद कारे विघ्न ना लागे तिल का कोई कार्य सगल सवारे रहाओ मिर साधु दुर्मत खोए पतत पुनीत सब हुए राम दास।

सिद्ध करत लाल तब चतुर पात रो आयो रहाओ क्यों बिसरे इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुख दायो मंदर कर कै पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हौ हौ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन देखे दूरायो पयो कृपा।

सर्व गुना निध गायो, सर्व गुना निध रायो, रहाओ दूजा। सोरठ महला पंजवा

हर जियो निमाणिया तू मान निकीजिया चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान रहा। जैसा बालक पाए सवाई लख अपराध कमावे कर उपदेश छिड़के बहु पांती बहुड़ पिता दल लावे। पिछले अवगण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावे हर

हर पावे पैज रखाये, अवर ओट में सदनी देखी। एक तेरी ओट रहाये, होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, आपे सुने विनंती। पूरा सतगुर मेल मिलावे, सब चूके मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया, जन नानक सुख वसंती। सोरठ महला पंजवा, सिमर सिमर प्रभ पए आनंदा, दुख कलेश सब नाथे। गुण गावत त्यावत प्रभ अपना, कारज सगले सांठे। जग जीवन नाम तुम्हारा।

आपे दाता आपे भुगता, क्या इह जंत विचारा, क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहन न जाई, पेख पेख जीवे प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संता धूरी, सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, पूनी बात न काई, रहाओ करते पुरख पा

सहज सुभाए मिले गोपाला, नानक साथ पति ने सोरठ महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे।

सवारी मन सिंधिया फल पाया प्रभ अपना सदा त्याया। संतो किस दिन अवर न कोई करण कारण प्रभ सोई रहाओ प्रभ अपने वर्गी ने सगल जी वक्ति ने जन नानक नाम ते

जो खुद भावे मोहे सियाणप कछु ना आवे। हम बारिक तौ शरणाई प्रभ आपे तेज रखाई। मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रति।

काज हमारा होया प्रभ चरणी मन लागा पूरन जाके भागा मिल साध संग हर ध्याया आठ पहर आराध्यो हर हर मन किंदिया।

सदा हर जाते, प्रभ बालक राखे आते, शीतला छाप रहाई, बिघन गए हर नाई। मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला, अरदास सुनी पग

हर सिमरत सब दुख लाथा, अपने दास की सुनी बेनंती, सब नानक सुख सवंती, सोरठ महला पंजवा, अपना गुरु ते आए, मिल कुशल सेती कर आए, अपना गुरु ते आए

हर हर हर आराधो हर आराध सबो किछ पाये कार्य सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी सो पाए जिस वड भागी।

दुख रोग का डेरा बनना, परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभ कृपा धारी, संतो सुख हुआ सब साई, पार ब्रह्म पूर।

वाला प्रभु सतगुरु दीन दयाला कैथे ओथे रखवाला प्रभु सतगुरु दीन दयाला दास अपने आप राखे कट कट शब्द सो पाके गुर के चरण ऊपर बल जाई दिन सुरैन साथ साथ संवाली पूरन सबनी साई रहाओ आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा टोआ आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा डोआ तेरी भगत वड्याई पाई नानक प्रभ सरनाई सोरठ महला पंजवा सतगुर पूरे भाणा ता जपया नाम रमा।

हमारी हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छे सोई फल पावे, बेसी आस न जाए रहाओ। कृपा करे जिस प्राण पत दाता, कृपा करे जिस प्राण पत दाता, सोई संत गुण गावे, प्रेम पगत ताका मन लीना, पार ब्रह्म मन पावे। आठ कहर हर का जस रवना, दिखे ठगोरी लाती, संग मिलाए ली।

कहो नानक सर्व थोक पूरन, पूरा सतगुर पाया सोरठ महला पंजवा। गरीबी गदा हमारी, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेन चारी, इस आगे को न टिके विकारी, गुर पूरे ए गल सारी। हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरे तिसकी गत होवे, उधरे सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म।

नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, हर की भगत फल दाती, गुरपूरे कृपा कर दीनी, विरले किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूरब लिखिया पाया, सूरत महला पाया।

निर्मल अकथ कहानी सोरठ महला पंजवा। भूखे खावत लाज ना आवे क्यों हर जन हर गुण गावे। भूखे खावत लाज ना आवे क्यों हर जन हर गुण गावे। अपने काज को क्यों अलकाइए जित सिमरन दर गए मुख उजल। सदा सदा सुख पाइए रहाओ ज्यों कामी काम लुभावे त्यों हर दास हर जस भावे। ज्यों माता बाल लपटावे त्यों ज्ञानी नाम कमावे। गुरपूरे ते पावे जन नानक नाम दियावे। सोरठ महला पंजवा सुख सांद कर आया निंदक के मुख छाया। पूरे गुर पहराया दिन से दुख सवाया। संतो साचे की वडियाई जिन अचरज सोभ बनाई रहाओ। बोले साहिब कै भाणे बोले साहिब कै भाणे। दास बाणी ब्रह्म वखाणे नानक प्रभ सुखदाई। जिन पूरी बनत बनाए सोरठ महला पंजवा। प्रभ अपना हृदय ध्याए कर सही सलामत आए। संतोष पया संसारे गुरपूरे ले तारे। संतो प्रभ मेरा सदा दयाला। संतो प्रभ मेरा सदा दयाला। अपने भगत की गणत न गणी राखे बाल गोपाला रहाओ। हर नाम हृदय उधारे तिन सबदे थोक सवारे। गुरपूरे तुस दिया फिर नानक दुख न सिया। हर नाम हृदय उधारे तिन सबदे थोक सवारे। गुरपूर

प्रभ जियो खसमा न कर प्यारे, बुरे पले हम थारे रहाओ। सुनी पुकार समरथ स्वामी, बंधन काट सवारे। पहर सिर पाओ सेवक जन मेले, नानक प्रगट पहारे। सोरठ महला पंजवा। जी जंत सब वस्त्र दीने, सेवक सब दरबारे। अंगीकार कियो प्रभ अपने, पावनित पार उतारे। संतन के कार्य सगल सवारे, दीन दयाल कृपाल कृपानिध। पूरन खसम हमारे रहाओ, आओ बैठ आदर सब थाई। ऊन न कतहु बाता, भगत सिर पाओ दियो जने अपने। प्रताप नानक प्रभ जाता। सोरठ महला नामा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो। अर गाओ रसना गीत रहाओ, कर साध संगत सिमर मादो। होहे पतत पुनीत, काल ब्याल ज्यो परयो डोले। मुख पसारे मीत, आज काल पुन तोहे ग्रस है। समझ राखो चीत, कह नानक राम भजले जात अवसर बीत। सोरठ महला नामा। मन की मन ही माहे रही, ना हर पजे ना तीर्थ सेवे। चोटी काल गही राव, दारा मीत पूत रख संपत। तन पूरन सब मही, अवर सगल मिथ्या ए जानो। भजन राम को सही, फिरत फिरत बहुते जुग हारे। मानस दे लही, नानक कहत।

परवारा निंदिया रस रचियो राम भगत नह की नी रहाओ मुकत पंस जान्यो तैनाहिन तन जोरन को धाया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंदाया ना हर पज्यो ना गुरजन सेव्यो नै उपजो कछ ज्ञाना काट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना बहुत जन्म परमत तै हारयो अस्थिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर पज नानक बात बताई सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण विचारो जे सिमरत गन काशी उदरी ताको जस उधारो रहाओ अटल भयो त्रू जाके सिमरन अर निरपय पद पाया दुख हरता ए विद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गई कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महमा नाम कहा लो बरनो राम कहत बंधन ते टूटा अजामल पापी।

सूजत नह कच ज्ञान काट ही पीतर बस निरंजन ताको मरम न जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल विनाशी।

तिहार सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत ना बार रहाओ बारू पीत बनाई रचपच रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार अजमू समझ कछ बिगड़ियो नाहिन पाजले नाम मुरार कहो नानक निज मत साधन को पाक्यो तोहे पुकार सोरठ मैला नावा ए जग मीत ना देखियो कोई सगल जगत अपने सुख लागियो

ओ संग छाड़ सब पागे, कहो कहा जिया मन बौरे को, इनस्यो निहो लगायो। दीना नाथ सकल पै पंजन, जस तां को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यो पयो ना सूदो, बहुत जतन मैं कीनो। नानक लाज बिरद की राखो, नाम तुहारो लीनो। सोरठ मैला नावा मन रे गयो ना गुरु उपदेश, कहां पयो जो मूड मुडायो। पगवो कीनो पेश रहाओ, साथ छोड़ के झूठे लाग्यो। जन्म अकारत खोयो, कर पर पंच उदर निज पोखियो।

रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद बिरथा औध सिरानी कहो नानक हर बिरद पछानो पूले सदा प्राणी सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने अर पह नहीं जाके कंचन माटी माने रहाओ नह निंदिया नह उस्तक जाके लोभ मोह अभिमाना हर शोभ ते रह न्यारो नाहे मान अपमान।

कर की नार बोधित जांस्यो सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर पागी। एह बिद को व्योहार बन्यो है जांस्यो न्यो लगायो। अंत बार नानक बिन हरजी को कामना आयो। सोरठ महला पहला कर पहला अष्टपदियां चौतुकी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुबदा ना पड़ो हर बिन होर ना पूजो। मरह मसान ना जाई तृष्णा रात ना पर कर जावा।

पैरागी शब्द मन वेदिया मेरी माई अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यों लिव लाई रहाओ। असंख बैरागी कहें बैराग सो बैरागी जे खसमें पावे हृदय शब्द सदा पैर रचिया गुर की कार कमावे। एको चेते मनुआ ना डोले तावत वर्ज रहावे सहजे माता सदा रंग राता साचे के गुण गावे। मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसै सुख पाई जेबा नेत्र सोत्र सचराते जल बूजी तुझे बुझाई। आस निरास रह बैरागी निज कर तारी लाई पिखिया नाम रजे

दूजा भाई मनमुख जंत दुख सदा निवासी गुरमुख दे वड्याई अपर अपार अगम अगोचर कहने कीम न पाई सुन समाद महापरमार्थ तीन पवन पत नामं मस्तक लेख जिया जग जोनी सिर सिर लेख सहामं कर्म सो कर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ामं मन मुख झूठ लह पैमान आपे ज्ञान अगामं जिन चाखिया से ही साध जान ज्यो गूंगे मिठियाई अकथ है का क्या कथिय पाई चालो सदा रजाई गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत न काई ज्यो चलाए त्यों चाल है पाई होर क्या को करे चित्राई एक परम पुलाए एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुकम चलावन हारा सेवा करी जे किछ होवे अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर मिले कृपा कीनी अमृत नाम आधारा गगनंतर वासिया गुण प्रगासिया गुण में ज्ञान त्यानं नाम मन पावे कह कहावे तत्तो तत्व खानं शबद गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरानं पूरा बैरागी सह सुभागी सच नानक मन मानं सोरठ महला पहला तितुकी आसा मन सा बंदनी पाई कर्म तरम बंदकारी पाप पुन जग जाया पाई बिन से नाम विसारी एह माया जग मोहनी पाई कर्म सबे वेकारी सुन पंडित कर्माकारी जित कर्म सुख उपजे पाई सो आत्म तत विचारी रहाओ शास्त्र वेद बके खड़ो पाई कर्म करो संसारी पाखंड मैल न चूकी पाई अंतर मैल विकारी इन विद डूबी माकुरी भाई ऊंडी सिर कह पारी दुर्मत कणी विगूति पाई दूजे पाए खुआई बिन सतगुर नाम न ना पाई है पाई बिन नाम में परम न जाई सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई आवन जान रहाई साच सहज गुरते उपजे पाई मन निर्मल साज समाई गुर सेवे सो बूजे पाई गुर बिन मग्न पाई जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई कूड़ बोल बिख खाई पंडित दही विलोइए पाई विचो निकले तथ जल मछिए जल देखिए पाई ए जग ए हावत गुर बिन परम विगूचिए पाई कट कट देओ अलख एह जग तागो सूत को पाई दैदिस बांधो माए बिन गुर गांठ न छूटे पाई थाके कर्म कमाए एह जग परम फुलाया पाई कहना किछु न जाए गुर मिले पौ मन वसे पाई पै मरना सच लेख मज्जन दान चंगियाईया पाई दरगह नाम विशेख गुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई मन वस्या चूका पेख ए तन हाथ सराफ को पाई वखर नाम अपार ए वखर वापारी सो दृढ़ पाई गुर शब्द करे विचार तन वापारी नानका पाई मेल करे वापार सोरठ महला पहला जिन्नी सतगुर सेविया प्यारे तिनके साथ तरे तिना ठाक न

मन हठ कार कमावनी पाई बिन नावे कूड़ियार से गावे जिन मस्तक पाग है पाई पाए सच्चे बैराग अंगन राते गुण रवे पाई निरपो गुर लिव लाग सबना मार जीवालदा पाई सो सेवो दिन रात सो क्यों मनो विसारी है पाई जिस दी वड्डी है दात मन मुख मैली डुमनी पाई दरगे नाही थाओ गुरमुख हो वै ता गुण रवे पाई मिल प्रीतम साच समाओ एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मोह देसी जाए किड़ी पवंदी मोह आयोन पाई बिखिया नो लोभाए नाम समाले सुख वसे पाई सदा सुख सांत शरीर नानक नाम समाल तू पाई अपरंपर गुणी गहीर सोरठ मैला पंजवा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिने उपाया भाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई देकर अपनी वथ किन कही है क्यों देखी है पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाही है पाई जिसते जापै तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके कर सब किछ है पाई नौनिद परे पंडार जिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगमा पार जी जंत प्रतपालदा पाई।

परमपो होवे नाथ मिल संत सवा मन मांझिए पाई हर कै नाम निवास मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होवे प्रगास गुरु बचनी सुख उपजे पाई सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए पाई होइए सबकी तूर कट कट ब्रह्म पसारिया पाई पेखे सुने हजूर जित दिन विसरे पार ब्रह्म पाई तित दिन मरिए चूर करण करावन समर्थो पाई सर्व कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश तिस पावे ता मेल ले पाई हृदय नाम निवास गुरुमुख कमल प्रगासी है पाई हृदय होवे प्रगास प्रगट पया प्रताप प्रभ पाई मौलिया तरत आकाश गुरपूरे संतोखिया पाई एनस लागा पाओ रसना राम रवे सदा पाई साचा साध सुआओ करनी सुन सुन जीविया पाई नेचल पाया थाओ जिस प्रतीत ना आवई पाई सो जीड़ा जल जाओ बहुगुण मेरे साहिब है पाई हौ तिसके बल जाओ ओ निर्गुण यारे पालदा पाई देन थावे थाओ रिजक संभाहे सास सास पाई गूड़ा जाका नाओ जिस गुर साचा पेटिए पाई पूरा तिस करमाओ तिस बिन कड़ी ना जीविए पाई सर्व कला भरपूर सास गिरास ना विसरे पाई पेखो सदा हजूर साधु संग मिलाया पाई सर्व रहा भरपूर जिना प्रीत न लगिया पाई से नित नित मरदे चूर अंचल लाए तराया पाई पौजल दुख संसार कर कृपा नदर निहालिया पाई की तुन अंग अपार मन तन शीतल होया पाई पौजल नाम आधार नानक तिस शरणागति पाई जे किलबिक काटनहार सोरठ महला पंजवा मात गर्भ दुख सागरो प्यारे तै अपना नाम जपाया बाहर काड बिख पसरिया प्यारे माया मोह वधाया जिसनो की तो कर्म आप प्यारे तिस पूरा गुरु मिलाया सो आराधे सास सास प्यारे राम नाम लिवलाया मन तन तेरी टेक है प्यारे मन तन तेरी टेक तुद बिन अवर ना करन हार प्यारे अंतर जामी एक रहाओ कोट जन्म प्रम आया प्यारे अनक जोन दुख पाए साचा साहिब विसरिया प्यारे बहुती मिले सजाए जिन पेटे पूरा सतगुरु प्यारे से लागे साचे नाए तिना पिछे छुटिया प्यारे जो साची शरण आए।

रोग पुंचाए फुलायन प्यारे उतरे नाही विजोग जोगुर मेल उधारिया प्यारे तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारे चितना वे मूल जिन तू विसरे पार ब्रह्म स्वामी से तन होए तूड़ बिल लाट करे बहु तेरिया प्यारे उतरे नाही सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारे तिनका रहा मूल साकत संग न की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मोह काले उठ जाए मन मुख टोई न मिले प्यारे दरगे मिले सजाए जो गुरमेल सवारिया प्यारे तिना पूरी पाए संजम सह सियान पा प्यारे इक ना चली नाल जो बेमुख गोविंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वस्त ना जातियां प्यारे कूड़ ना चली नाल सतगुर जिना मिलायुन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे आंदिन कीर्तन गुण रवे प्यारे अमृत पूर पूर परे दुख सागर तिन लंगिया प्यारे पावजल पार परे जिस पावे तिस मेल लह प्यारे से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान तिस सरनाई टै पए प्यारे जे अंतर जामी जान हालत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे न विसरे प्यारे नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवा कर दूजा अष्टपदियां इक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचार्यो निवल पुयंगम सादे पंच जना स्यों संग ना छुटक्यो अधिक अंग बुद्ध बादे प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरो बन माही तट तीरथ सब तरती प्रम्यो दुबदा छुटके नाही मन कामना तीरथ जाए बस्यो सिर करवत धराए मन की मैल ना उतरे ए बिद जेलक जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहुविध दान दातारा अन बस्तर पूम बहु अर्पे नह मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन दंडौत खट कर्मा रत रहता हौ हौ करत बंधन में परया नह मिलिए एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए भी कर कर रहया वड्डी आरजा फिर जन्मे हर स्यों संग ना गया।

कहो नानक तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले।

यह पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावे पिर संग सदा सिगारी नाव मन कदे न मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावे नानका कर्म मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावणी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावे अपना गुरमति हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रती हर रंग चोले हर जैसा पुरख न लबई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल बोले पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया तुद आपे खेल

सफलियो सतगुर सेविया तन जन्म प्रवान जिना सतगुर जीवंदिया मोया ना विसरै सेई पुरख सुजान कुल उधारे आपना सो जन होवै प्रवान गुरमुख मोए जीवंदे गुरमुख मोए जीवंदे प्रवान है मन मुख जन्म मरा है नानक मोए ना आखिया जे गुर कै शब्द समाए पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम त्याई है सत संगत साधु लग हर नाम समाई है हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है हौ लाला गोला तुद मैं हुक्म फरमाई है हौ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई है श्लोक महला तीजा पूरब लिखिया कमावना जे करते आप लिखियास मोठ गौली पायन विसरिया गुणतास मत जानो जग जीवदा दूजे पाए मोयास जिन्नी गुरमुख नाम ना चेत्यो से बहन ना मिलनी पास दुख लागा बहुत कणा पुत कलत ना सास कोई जास लोका विच मुह काला होआ अंदर उबे सास मन मुखानो को ना विसही चुक गया वे सास नानक गुरमुखानो सुख अगला जिना अंतर नाम निवास महला तीजा से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए सदगुर का पाना अन दिन करे से सच रहे समाए दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे वेकार मन मुख आप स्वार्थी कारज ना सके सवार नानक पूरब लिखिया कमावना कोय ना मेटन हार पौड़ी तुल आपे जगत उपाय कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हो मैं लेखा मंगिए फिर आवे जाया जिना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहा।

जग कमला फिरै गुरमुख नदरी आया। तंदा करतिया ने फल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया, जिनको तुर लिख पाया महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया। ज्यो कस्तूरी मिर्ग ना जाने, परम दा परम पुलाया। अमृत ताज बिक संग्रह करते आप खुआया, गुरमुख विरले सो जी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया, रसना हर साध आया। सबदे ही नाउ उपजे, सबदे मेल मिलाया। बिन सबदे सब जग बोराना, बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया पौड़ी। सो हर पुरख अगम है, कहो कित विद पाई है। तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो, जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह, गुण गाई है। जिस आप बुझाए आप, सो हर मार्ग पाई है।

नानक रंग ना उतरे ब्याह ना लगे के पौड़ी हर आप वरते आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सृष्ट सवार सिर कंधे लाएंदा एक ना भगती लाए एक आप खुआएगा एक ना मार्ग पाए एक उजड़ पाएगा जन नानक नाम ते आए गुरमुख गुण गाएगा। श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हौ मैं विचों जाए। बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसे मन आए नानक जो गुर सेवे अपना तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा मनमुख मन अजित

दुखे दुख विहाए, कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके, सिद्ध समाध लगाए, एह मन वस न आवई, थके कर्म कमाए, पेख तारी पेख कर थके, हर हर तीरथ नाए। मन की सार न जाननी, हो मैं परम कुलाए, गुर प्रसादी पौ पया, बड भाग वस्या मन आए, पै पै मन वस होवा, हो मैं शब्द जलाए, सच रते से निर्मले ज्योति ज्योत मिलाए, सतगुर मिले नाउ पाया, नानक सुख समाए, पौड़ी ए पूपत राणे रंग दिन चार सुहावना, एहो माया रंग कुसंब खिन मैं लह जावना, चलदिया नाल ना चले सिर पाप लै जावना, जां पकड़ चलाया काल।

फिर मिलन ना पाए नहीं जब मैं ते मर जाए। सहसा रोग ना छोड़ई दुख ही मैं दुख पाहे, नानक नदरी बख्श ले सब दे मेल मिलाए। मैला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर न ठाओ, ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ। नानक गुरुमुख बख्शी है से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी, जो से मैं सत मुरार से पवजल तर गया। जो बोले हर हर नाओ तिन जम छट गया, से दरगे पैंदे जाहे जिना हर जप लया। हर सेवे से ही पुरख जिना

नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी। सिर हर नाम त्यावे जो हर रत्या, हर इक त्यावे इक इको हर सत्या। हर इको वरतै इक इको उत्पत्या, जो हर नाम त्यावे तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख हर जपे।

तीजा हर गुण तोट न आवई कीमत कहन न जाए नानक गुरमुख हर गुण रवे गुर में रह समाए पौड़ी हर चोली दे सवारी कड पैदी भगत कर हर पाठ लगा अधिकाई बहु बहु विद पाठ कर कोई बूझे बूझन हारा अंतर विवेक कर सो बूझे एहो विवेक जिस बुझाए आप हर जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर श्लोक महला तीजा।

गुरुमुख आस निवारी है सब राज सुष्ट काले, नानक गुरुमुख बुझी है जा आपे नजर करे महला तीजा। जिन गुरुमुख नाम से आया आए ते परवान, नानक कुल उदारे अपना दरगे पावे मान पौड़ी। गुरुमुख सखिया सिख गुरु मेला आया,

जो हर नामा हर मुख कहते आ, तन तन भाग तिना संत जना, जो हर जस श्रवणी सुनतिया, तन तन भाग तिना साज जना, हर कीर्तन गाए गुणी जन बनतिया, तन तन

कहो जो गुरमुख सिखा जो हर नाम ते आएंदे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग स्यों सब किलवित कृखा तन तन सुहावा।

सा सिद्ध सा करमात है, अचिंत करे जिस दात, नानक गुरमुख हर नाम मन वसै, एहा सिद्ध एहा करमात पौड़ी। हम ताडी हर प्रभु खसम के, नित गावे हर गुण चंता, हर कीर्तन करें हर जस सुने।

बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमति हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खा गया सब रोग गवाते दुखा कान जिना सास गिरास ना विसरे।

पाए नानक गुर शरण आई उबरे सच मन शब्द ते आए महला तीजा। शब्द रते हो मैं गई सो बावंती नार पीके पाने।

ओ कर कर फिरे कसुद मन जो तरकत नारी वड पागी संगत मिले गुरमुख सवारी हर मेलो सतगुरु दया कर गुर को बलिहारी। श्लोक महला तीजा गुर सेवा ते सुख उपजे फिर दुख ना लग गया है जमन मरना मिट गया काले का किछ ना बसाए हर सेती मन रव रहा सच्चे रहा समाए नानक हों बलिहारी।

सतगुर मिले ता पूरा पाया हर रस रसन रसाई पौड़ी रैन दिनस परवात तू है ही गावना जी जंत सरबत नाव तेरा त्यावना तू दाता दातार तेरा जित्था खावना भगत जना के संग पाप गवावना जन नानक सद बलिहार है बल बल जावना। श्लोक महला चौथा। अंतर अज्ञान पई मत मद्दम सतगुर की प्रतीत नाही अंदर कपट सब कपटो कर जाने कपटे खपे कपाही सतगुर का पाना चित ना आवे अपने स्वाय फिराही कृपा करे जे अपनी ता नानक शब्द समा।

हौ मैं खपे खपाए अंतर लोभ महा गुबारा तिनके निकट न कोई जाहे। ओए आप दुखी सुख कभू न पावे जन्म मरे मर जाए नानक बख्श ले प्रभ साचा जे गुरचरणी चितलाहे पौड़ी। संत भगत परवान जो प्रभ पाया सही विचखण जंत जिन्नी हर त्याया अमृत नाम निधान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया नानक पै पुनीत हर की रचनाया। श्लोक महला चौथा। गुरुमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाए नामो चितवे नाम पढ़े नाम रहे लिवलाए नाम पदार्थ पाया चिंता गई बिलाए सतगुरु मिले नाम।

आपे सिष्ट सिंधिया आपे सुनगोई सब इको शब्द वर्तदा जो करे सो होई वड्याई गुरुमुख दे प्रभ हर पावे सोई गुरुमुख नानक आराध्या सब आखो तन तन तन गुर सोई सोदे राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद बुत पूज पूज हिंदू मुए तुर्क मुए सिरनाई ओइले जारे ओइले गाडे तेरी गत दोहू ना पाई

मरकट लो सब लोग कुटुंब भयो आगे हंस अकेला। कह कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस्त हुआ झूठी माया।

निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ कस कुंकम चंदन गारिया बिन रहनो जगत निहारिया पूत पिता इक जाया बिन ठाहर नगर बसाया जाचक जन दाता।

एक बस अगोचर लही है बस अगोचर पाई कट दीपक रहा समाए कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया मन माने लोग ना पति जय।

पया पिखारी अछत राज बिचरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राजपुर अंग प्रसंग जैसे हैं अब कछ मर्म जनाया अनिक कटक जैसे।

तीन पकरफा क्यों अर काट्यो, रांध कियो बहुबानी, खंड खंड कर भोजन कीनो, तऊ ना बिसरियो पानी। आपन बापे ना ही किसी को, पावन को हर राजा, मोह पटल सब जगत व्यापियो, भगत नहीं संतापा। कह रविदास।

नाही, ऐसी बेदन उपज खरी भई, वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल, ए औखद जग सारा, गुर प्रसाद कह जन तीखन, पावो मोख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर।

चुप चुप होए रहाओ तनाश्री मेला पहला। हम आदमी हाँ उस दमे मोलत मोत न जाना, नानक बिनवे तिसे सरेव हो जाके जी पराना। अंधे जीवना विचार देख चेते के दिना रहाओ, सास मास सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा। नानक साहिर एव कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे न देही मेरे साहिबा क्या को कड्डे गहना। नानक बिन वै सो किस पाई है पुरब लिखे का लेना। नाम खसम का चित ना किया कपटी कपट कमाना, जम द्वार जा पकड़ चलाया।

हर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे आओ जीड़ा बिल लाए, सिज सवारे साचा सोए, तिस विसरिए चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर सास मिलो मेरी माए रहाओ। वक्षर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतीन ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए। जै देखा तेरे आसमाए, तुझ बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे की तै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए। हुन उठ चलना मोहत के ताल, क्या मुंह देसा गुण नहीं नाल, जैसी नजर करे तैसा होए, विण नदरी नानक नहीं कोए। श्री महला पहला। नजर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिव लाए, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हास्यों चित लागे फिर काल न खाए रहाओ। सच सिमरिए होवे प्रगास, ताते बिखिया मह रहे उदास, सतगुर की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छा सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे। पंत नानक करे विचार, साची बाणी स्यों तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इहे शब्द है सार। तनाफरी मैला पहला। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विसर जाए, ज्यो पक्का रोगी विल लाए, बहुता बोलन चखन होए, जिन बोले जाने सब सोए रहाओ। जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राखिया अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, सबा कालक दागा दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नाही जाए, कर्म मिले आखन तेरा नाओ, जित लग तरना होर नाही थाओ, जे को डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्वदातार। तना श्री मैला पहला।

कूड़ कबाड़, पावे सब आखो संसार, तुद पावे अदि परवान, नानक जाने जान सुजान, तनाफरी मैला पहला, काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पड़े आना, दरगे करिये तीने लेख, खोटा काम ना आवे वेख, नानक जे विच रूपा होए, खरा खरा आखे सब कोई राव, कादी कूड़ बोल मल खाए,

पहला भारती एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, तूप मले आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति।

वडियाई पाए, आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साथ रते प्रभ आप मिलाए, तनासी मैला तीजा।

अपनी पथ खोई। गुरु सेवा से जन निर्मल होए, अंतर नाम वसै पथ उत्तम होए रहाओ। गुरुमुख उगरे हर शरणाई।

सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ। हम मूरख मूरख मन माहे हों मैं विच सब कार कमाहे। गुर प्रसादी हों मैं जाए आपे बख्शे ले मिलाए। बिख्या का तन बहुत अभिमान है।

जो हर सेवै संत तगत तिन के सब पाप निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी। हर गुण कहे न सको बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखण हम तारी। रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा, लग संगत साध सवारी। जो कंचन बै संतर पायो, मल काटी कटक उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती, जप हर हर हर उर्धारी। हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हो मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी। जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पै सवारी। तना श्री मैला चौथा। हर के संत जना हर जप्यो, तिनका दुख परम पौ पागी। अपनी सेवा आज कराई, गुरमत अंतर जागी। हर के नाम रता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई। गुरमत हर लिग लागी। रहाओ संत जना की जात हर स्वामी, तुम ठाकुर हम सांगी। जैसी मत देवो हर स्वामी, हम कैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नान निक कीरे, तुम वड पुरख वडागी। तुमरी गत मिस कह न सके,

नानक दासन दास करो प्रभु हम हर कथा कथा की तना श्री मेरा चौथा हर का संत सतगुरु सतपुरखा जो बोले हर हर वाणी जो जो कहे सुने सो मुक्ता हम किसके सद कुर्बानी हर के संत सुनो जस्तानी हर हर कथा सुनो एक निमक पल सब के लिए पाप लह जानी रहाओ ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरुष वडानी तिनकी तूर मंगे प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी हर हर सफल्यो बिरत प्रभ स्वामी जिन जप्यो से तृप्तानी हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूख पुकानी जिनके वड्डे पाग वड ऊचे तिन हर जप्यो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी तना श्री मैला चौथा।

पाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली राव। हर के संत सुनो जन पाई, गुर सेवियो बेग बेगाली। सतगुर सेव खर्च हर बांधो, मत जानो आज के काली। हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली। जिन हर जपिया से हर होए, हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप लोच लुचानी, हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो, हम साध जना पगराली। तनासी मेला चौथा, हर हर बूंद पे हर स्वामी, हम चात्रिक बिलल बिल लाती। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, मुख देवो हर निमखाती। हर बिन रह ना सकूं एक राती, ज्यो बिन अमले अमली मर जाई है, त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ। तुम हर सरवर अत आगा, हम ले न सके अंत माती। तू परे परे अपरंपर स्वामी, मित जानो आपन गाती। हर के संत जना हर जपियो, गुर रंग चलू ले राती। हर हर

नानक जन तुमरी शरणाई हर राखो लाज पगाती। तनाश्री मेला चौथा कल युग का धर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जपियो तरह तरह की। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी। रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी। हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साख जना की। जिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चर्यो चंद चंदा की। तुम वड पुरुष वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपा की। जन नानक को प्रभु कृपा की जय कर दासन दास दशा की। तनाश्री मेला चौथा कर पंजवा दो कदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। उर्धार विचार मुरार रमोरम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट।